0: देते हैं वही पाते हैं। अंग्रेजी में आपने कई बार सुना होगा, यू रीप व्हाट यू सो और व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें सिखाता है कि हमारे द्वारा दिए गए विचार, भावनाएं और कर्म ही हमें वापस मिलते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सकारात्मकता और प्रेम दिखाते हैं तो हमें भी वही वापस मिलता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारे विचार और कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं।
1: शुभ प्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं और इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगिल रिवा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2024 के सितंबर महीने के आज 24 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज के हमारी पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता दी नियोग। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा से।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट।

तागिन श्रोताओं का समाचार आप सुनेंगे 7:35 पर। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदा बहार। और इन सब के अलावा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित 8 बजे आप सुनेंगे समाचार।

प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर। आठ बजकर 40 मिनट पर प्रसारित होगा कार्यक्रम हेलो ईटानगर। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 9:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में जनसेवा से देश सेवा का विशेष श्रृंखला। 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड और 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो ये था आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

अंतर्गत वर्णनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कर्ग, लेकर आया हूं आस्था, संस्कृति और प्रकृति के सुंदर मेल से सजा हुआ भक्ति गीत कार्यक्रम। श्रोताओं, आज का हमारा यह विशेष भक्ति सफर समर्पित है दोनी पोलो की दिव्य शक्ति को। दोनी यानी सूर्य, जो हमें प्रकाश, ऊर्जा और जीवन जीने की प्रेरणा देता है, और पोलो यानी चंद्रमा, जो हमें शांति, संतुलन और धैर्य का संदेश देता है। हमारी परंपरा में दोनी पोलो केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, सत्य के मार्ग पर चलने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की सीख है। जब सुबह की पहली किरण धरती को छूती है तो वो नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश देती है, और जब चांदनी रात में अपनी प्रकाश बिखेरती है तो मन को शांति और सुकून का एहसास होता है। श्रोताओ, आज के इस पावन कार्यक्रम में हम सुनने जा रहे हैं मधुर दोनी पोलो भक्ति गीत, जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते को सुरों में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए मन को शांत कीजिए, प्रकृति के प्रति श्रद्धा का भाव रखिए और जुड़ जाइए भक्ति के इस खूबसूरत सफर से।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम भक्ति गीत। दोस्तों, धोनी पोलो हमें सिखाता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा है। हम जिस धरती पर रहते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस सूर्य की रोशनी से जीवन मिलता है, उसके प्रति सम्मान और आभार रखना ही सच्ची श्रद्धा है। धोनी की किरणें हमें सुबह एक नई शुरुआत का संदेश देती हैं। ये हमें मेहनत, ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। वही पोलो की शांत रोशनी हमें धैर्य, संयम और मन की शांति का एहसास कराती है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी ईटानगर हिलो हित पोल गे आलो हमनी गोला लोपिना ने मदवार होक गालो मेंकेन आगम मिलन जी दाखनांगो दाक्षा पेते प्रपोज्ड अपर सियांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट एम सियांग ओक अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट लो मोलिक दोब इतानम लगाब पी एपर सर्वे ओक कब कब अगर आना एम काकेन बे इक दोब मिलेला मलो स्टेट कैबिनेट का द Empowered High Level Committee go molindob emla resolution go pass jitu. Cabinet gadem mela siang ok upper siang district lok nilumnit gadem jijalo agomayem menjimab dola manam rumnam agomay gadem den menjemen yejela yenam legab niga delepalo jul ngala yedu egem iza committee gadde alib agomayem tarikata hila din lampo inia doba mula komiti higim molen jitu kun meke amla barok chaba mentu Arunachal Pradesh Staff Selection Board APSSB Itanagar ga office aralo ali jaba conference hall go mol gella lenam malo chief minister Pema Khandu mokok jitu Inaugural program M idatlo agom jabdula nirme kandum menla lekelo group C ok group D post M concern department gad aga aruba recruitment M igto ekna homoilo nit nigam political leaders gad department M presar jilla ngok candidate M sakori jitka M la mento agam M ba ilakuma dob M lela APSSB M Molen Gekla, Group C ok Group D recruitment idaglo, transparency ok equitable recruitment mechanism go, Purdube Dodkube Mula, Board Higi Molen Jitukun Meke Emla Mintu. Ija Nimanibur Augat Desin, Alba Puripota Mugabla Ringat de Sakoriam Pala Yeda Kunaka Emla CM Kandume, Guminhoinem, Mempajitu. Moga state hoke college lo pori layena students gisa hisa na Nigeria me ok artificial intelligence ga lamba henka ja la mula yena gaddam awareness capacity building ok innovation alib mentum mutum gala dob mudula malo it jab IIT Guwahati lo don lo yi lagab AI boot camp ok hackathon of Arunachal AI Center of Excellence Iroga Gekuba Amla Mempa Jitu. 97 Nidum go application Jiluktu, Oka Nidum Hampigo Darlengilla, Alolo Yigo training program Lodum Gatta Dunaka Amla Mentu. Bihar Legislative Council Loke, former member Devesh Kumar Ne, Ali Jab Arunachal Pradesh BJP State in Charge by appointed Jigekuba Amla Mentu. 36 states ok union territories lok party in charges ok co in charges rugadam malo BJP president Nitin Navin appointed

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह खुशियों, ताजगी और नई ऊर्जा के साथ शुरू हुई होगी। और आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना RJ कारगर। दोस्तों, सुबह का समय होता है खुद को बेहतर बनाने का, अपने तन और मन को नई शक्ति देने का और दिन भर की भागदौड़ के लिए खुद को तैयार करने का। इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा मॉर्निंग हेल्थ शो सुबह सवेरे। इस कार्यक्रम में हम करेंगे बात योग के आसान और लाभदायक आसनों की, रोजाना की सरल एक्सरसाइज और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों की। तो लीजिए एक गहरी सांस, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए और तैयार हो जाइए एक हेल्दी, हैप्पी और पॉजिटिव मॉर्निंग के लिए। सबसे पहले आइए देखते हैं आज के योग सेगमेंट की ओर। दोस्तों, आज के योग सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योगासन। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ शरीर को थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। घुटनों में दर्द, कमर की परेशानी, शरीर में अकड़न, नींद की समस्या और थकान जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोजाना कुछ आसान योगासन और प्राणायाम करके वरिष्ठ नागरिक अपने शरीर को स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज के कुछ खास योगासन वरिष्ठ नागरिकों के लिए।

सबसे पहला है तारासन। ये शरीर का संतुलन बनाने के लिए है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाए, दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शरीर को ऊपर की ओर खींचे, 10 से 15 सेकंड तक रुकें और सामान्य स्थिति में लौट आए। इसके फायदे हैं, शरीर का संतुलन बेहतर होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, शरीर में लचीलापन आता है।

अगला है ब्रिक्स आसन। ये संतुलन और एकाग्रता के लिए है। इसे करने के लिए एक पैर पर खड़े हो, दूसरे पैर को जांघ पर रखे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ ले, कुछ सेकंड तक संतुलन बनाए रखे। इसके फायदे हैं, पैरों और घुटनों को मजबूती मिलती है, साथ ही ध्यान और संतुलन बेहतर होता है। यदि आपको संतुलन बनाने में कठिनाई हो तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। अगला है वज्रासन। ये पाचन शक्ति के लिए है। इसे करने के लिए घुटनों को मोड़कर एरिया पर बैठ जाएं, हाथ घुटनों पर रखें और पीठ सीधे रखें। 5 मिनट तक इस स्थिति में बैठें। इसके फायदे हैं, पाचन बेहतर होता है, गैस और अपच में राहत मिलती है और साथ ही मानसिक शांति मिलती है।

अगला है भुजंग आसन। ये कमर और पीठ के लिए है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों कंधों के पास रखें, धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाएं, 10 सेकंड तक रुकें और वापस आ जाएं। इसके फायदे हैं कमर दर्द में राहत, रीढ़ मजबूत होती है और साथ ही शरीर में लचीलापन बढ़ता है।

अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे आप कैसे करें? आरामदायक मुद्रा में बैठे, एक नथुने से सांस ले और दूसरे से छोड़े, और इसे आप उल्टी दिशा में

अंतिम आसन है सवासन। इसे करने के लिए पीठ के बल आराम से लेट जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। 5 से 10 मिनट तक आराम करें। इसके फायदे हैं, शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है, थकान और तनाव दूर होता है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष सलाह है, योग हमेशा धीरे धीरे करें। किसी भी आसन में दर्द महसूस हो तो तुरंत रुक जाए। जरूरत पड़ने पर कुर्सी या दीवार का सहारा लें। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है, रोज 20 से 30 मिनट योग करें। याद रखिए दोस्तों, उम्र भरना स्वाभाविक है, लेकिन स्वस्थ और सक्रिय रहना हमारे हाथ में है। रोज थोड़ा सा योग, थोड़ी सी सैर और सकारात्मक सोच जीवन को खुशहाल बना सकती है। इसी संदेश के साथ आज का योग सेगमेंट यही समाप्त होता है। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, स्वच्छता ही स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। हम चाहे कितना भी अच्छा भोजन करें, योग करें या व्यायाम करें, लेकिन अगर हम अपनी और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारियों का खतरा बना रहेगा। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करते हैं व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता यानी पर्सनल और एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस के बारे में। सबसे पहला है, रोजाना स्नान करना क्यों जरूरी है? दिन भर शरीर पर धूल, पसीना और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, इसलिए हमें रोजाना स्नान करना चाहिए। इसके फायदे हैं, त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है, शरीर से दुर्गंध नहीं आती, संक्रमण और त्वचा रोगों का खतरा कम होता है, साथ ही शरीर में ताजगी और ऊर्जा बनी रहती है। अगला है, हाथों की सफाई सबसे महत्वपूर्ण। हमारे हाथ दिन भर कई चीजों को छूते हैं जिन पर कीटाणु हो सकते हैं, तो कब हमें हाथ धोना चाहिए? भोजन से पहले और बाद में, शौचालय के बाद, बाहर से घर आने पर और खांसने या छींकने के बाद। अगला है, दांतों और मुंह की स्वच्छता। हम क्या कर सकते हैं? दिन में 2 बार ब्रश करें, जीभ की सफाई करें, भोजन के बाद खुला करें। इससे दांत मजबूत रहते हैं, मुंह की दुर्गंध से बचाव मिलता है और मसूड़ों की बीमारियां कम होती है।

अगला है साफ कपड़े पहनने की आदत। ध्यान रखें, रोज साफ कपड़ा पहने, अंडरगारमेंट्स नियमित बदलें, पसीने वाले कपड़े लंबे समय तक ना पहने। इससे त्वचा संक्रमण से बचाव मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला है नाखूनों की सफाई। लंबे और गंदे नाखूनों से सबसे अधिक कीटाणु छिपे होते हैं, इसलिए नियमित रूप से नाखून काटें, उन्हें साफ रखें। घर और आसपास की सफाई। ध्यान रखें, घर में कूड़ा जमा ना होने दें, पानी जमा ना रहने दें, रसोई और बाथरूम साफ रखें। इससे मच्छरों और कीड़ों से बचाव मिलता है, डेंगू मलेरिया और अन्य बीमारियों का खतरा कम होता है। भोजन की स्वच्छता क्या करें आप? ताजा और ढका हुआ भोजन खाएं, फल और सब्जियां धोकर खाएं, साफ पानी का उपयोग करें। तो दोस्तों, आज का स्वास्थ्य संदेश है, जहां स्वच्छता होती है वहां स्वास्थ्य, खुशहाली और सकारात्मकता अपनी आप आ जाती है। तो दोस्तों, रोज की छोटी छोटी सफाई की आदतों को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। इसी के साथ आज का हेल्थ सेगमेंट यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे में एक और नई स्वस्थ जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ये आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

0: ayatola HIV ka pogomi ching to la do ne molanja pa ayado
1: HIV ayo ko inchi medu yimiloko imido basako bejine ne mimi wa komi ne lala mi wa komi hiran ne nanko inchi du o an HIV gu do koda ngami aniya sinkotro inchi du
0: ho jalo hendel gu to dubasako alaga lasako pobasilyo dubata masuli ho taru asujalo hukoku inchi madu
1: HIV mi tesmu ko kendo myo du to rampa chimpa do pa o treatment mu do pa o sango aya san do pa
0: HIV me busoma pa lukas kendo tes mu ko kendo en hemala bukima sime aya pa ka chinambo national aids helpline number 1097 ho call mu kendo sikapugomi public interest ho arunachal pradesh state aids control society dhs nar lagano ku mulimbu do
2: दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नई सुबह की ताजगी, सुनहरी किरणों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उम्मीदें, नए अवसर और नई जानकारियां। इसलिए हम भी हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा और भरोसेमंद खबरें और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय दैनिक समाचार और दिन भर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले आइए देखते हैं आज के राष्ट्रीय ताजा खबरें। भारत अमेरिका के बीच रूस और ईरान पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा। न्यूयॉर्क में यूएन जनरल सेक्रेटरी के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने रूस और ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले देशों पर संभावित प्रतिबंधों पर चर्चा की। जयशंकर ने भारत के ऊर्जा सुरक्षा हितों और अमेरिका के लिए नए रशिया ईरान सैंक्शन लॉ को लेकर भारत की चिंताओं को दोहराया। ओमान के पास जहाज पर हमला, एक भारतीय नागरिक की मौत। ओमान के तट के पास एमवी केप डाउ नामक कमर्शियल वेसल पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। जहाज पर कुल 19 भारतीय नागरिक सवार थे। ओमान के मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने क्रू को सुरक्षित निकालने के लिए इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाया, जिसमें 27 क्रू मेंबर्स को निकाला गया। भारत ने घटना पर चिंता जताई और भारतीय अधिकारियों ने ओमानी अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा है। भारत ने 810 करोड़ से अधिक का रक्षा समझौता किया। रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के लिए 107 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम और संबंधित इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। ये भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रोक्योरमेंट है। पैकेज पुट फॉर फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन वार्निंग का प्रस्ताव। FSSAI ने पैकेज फूड में ज्यादा सॉल्ट, सुगर या पेट वाले उत्पादों के लिए फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेवलिंग लागू करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित व्यवस्था में पैकेट के सामने स्पष्ट वार्निंग लेवल देने की बात है, ताकि उपभोक्ता खरीदारी के समय पोषण संबंधी जानकारी आसानी से समझ सके। बैंक हड़ताल से पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए विशेष व्यवस्था। देश में प्रस्तावित 3 दिवसीय नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक से पहले RBI ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रविवार 27 सितंबर को

पूरी तरह ऑपरेशनल रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं में संभावित व्यवधान के बीच अतिरिक्त सेवाएं देना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी के अनुसार बे ऑफ बंगाल में बना डीप डिप्रेशन वेस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में बढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट को पार कर सकता है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और हवाओं की गति लगभग 75 किलोमीटर तक पहुंचने की संभावना बताई गई है। एल नीनो के कारण भारत में गर्मी से जुड़ी जोखिम की चिंता। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 से फरवरी 2027 के बीच मजबूत हेतु एल नीनो के कारण भारत में लगभग 15,800 अतिरिक्त हीट रिलेटेड डेथ्स का जोखिम हो सकता है। ये एक अनुमान मॉडल आधारित आकलन है, वास्तविक आंकड़ा अलग हो सकता है। आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। यूएससीएम ट्रंप और सी जिनपिंग की आज अहम मुलाकात। आज वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, टैरिफ, टेक्नोलॉजी और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूएससीएन सी जिनपिंग का वाशिंगटन दौरा। सी जिनपिंग का ये वाशिंगटन दौरा खास है क्योंकि वो एक दशक से अधिक समय बाद अमेरिकी राजधानी पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन को लेकर तनाव के बीच यह बैठक बायलेटरल रिलेशन को संभालने की कोशिश के रूप में भी देखी जा रही है। यूए रूस का कीव पर ड्रोन हमला। रूस ने बुधवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक किए। रिपोर्ट के अनुसार 2 लोगों की मौत हुई और 41 लोग घायल हुए। यह हमला यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की के यूएन जनरल असेंबली में संबोधन से कुछ घंटे पहले हुआ। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस की ऑयल रेवेन्यू को सीमित करने की अपील की। दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। हाईकोर्ट इशूज नोटिस टू अरुणाचल एपीपीएससी ओवर जॉब क्राइटेरिया। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन अपसू ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को चेतावनी दी है कि वे राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए नए योग्यता मानदंडों को लागू किए बिना कोई नई भर्ती शुरू न करे। साथ ही यूनियन ने 17 अगस्त को प्रस्तावित बंद को भी वापस ले लिया। टेंशन ग्रिप्स अपर सियांग एज विलेजर्स ब्लॉक उगिंग ओवर SUMPFR सर्वे। गेकू और कोमकर में तनाव साफ दिख रहा है क्योंकि राज्य सरकार प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। विलेज वुमेन रिज्यूम मटेरियल ब्लॉकेड अगेंस्ट सिलिकॉन इंडस्ट्री। मंगलवार को स्थित सियांग जिले के रुक्सिन सर्कल में आने वाले मोरलुंग, रालुंग और निगलोक गांव के कई महिलाओं ने निगलोक में सिलिकॉन इंडस्ट्री के खिलाफ अपना आंदोलन फिर से शुरू किया। उन्होंने फैक्ट्री के सामने सामान की आवाजाही रोककर विरोध जताया। पुलिस अरेस्ट वन इन रेफर असोल्ट केस। लोअर दिबांग वैली पुलिस ने सिक्किम के रेफर उगेन नामग्याल बुटिया पर हुए हमले के सिलसिले में नबम तपंग नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अफू पीएमसी क्लियर 5.6 टन्स ऑफ वेस्ट फ्रॉम शिवकोरोंग। इस सियांग जिले के गुदु नोतको में शिवकोरोंग नदी के किनारे पर बड़े पैमाने पर चलाए गए नदी सफाई अभियान के दौरान लगभग 5.6 टन कचरा हटाया गया। स्वच्छ नदी स्वच्छ भारत टीम वाले इस अभियान का आयोजन अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन विभाग ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया था। एपीएसएसबी क्रिएशन ए मेजर रिफॉर्म इन पब्लिक रिक्रूटमेंट। सीएम
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के गठन को अपनी सरकार द्वारा सार्वजनिक भर्ती के क्षेत्र में किए गए सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधारों में से एक बताया। वांगसू ऑर्डर्स इमीडिएट एफएमडी कंटेनमेंट मेजर्स। पशुपालन, पशु चिकित्सा और डेयरी विभाग मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने दिवांग घाटी जिले में मिथुन पशुओं में फैल रही कुरफका मुंहफका बीमारी यानी एफएमडी की स्थिति का जायजा लिया। बीकेएस अरुणाचल कमेटी डिमांड्स एनहेंस बजट एलोकेशन फॉर एग्री एंड अलाइड सेक्टर। अरुणाचल प्रदेश राज्य समिति के भारतीय किसान संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री चाउना मेन से मुलाकात की और 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन बढ़ाने, आत्मनिर्भर योजनाओं को ठीक से लागू करने और बैंक लोन को समय पर मंजूरी देने जैसी मांगे शामिल की। 11th आयुर्वेद डे सेलिब्रेटेड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बुधवार को यहां जू रोड स्थित आयुर्वेद और पंचकर्म पॉलिक्लिनिक में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया। गवर्नर मीट्स पीपल ऑन के मेहा। गवर्नर केटी फरनायक ने केमेहा की खुशी के मौके पर राज्य के लोगों, खासकर इदुमिश्मी समुदायों के लोगों को बधाई दी। अपने संदेश में गवर्नर ने कहा कि केमेहा प्रकृति, खेती और सामुदायिक जीवन के साथ गहरे और स्थायी रिश्ते का उत्सव है। तो दोस्तों, आज के लोकल न्यूज में बस इतना ही। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म प्यार में कभी कभी से।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग एंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: ఏషియా గేమ్స్ జపాన్ లో అచీలు లిక్షుకులు 3-1 లోక యాన్యుకుమార్ నమ్ లక్కంబ ఇండియా టీమ్ బ్రోంజ్ మెడల్ యామంగ్దుకులా మిఫాలిందుకు సొంబెన్ తగ్లా ఇండియా టీమ్ గోల్డ్ మెడల్ తక్కిన్ గులా సిల్వర్ మెడల్ తంగు గులా బ్రోంజ్ మెడల్ తక్కు యాపుకులా మిఫాలిందుకు మెట్రోలాజికల్ సెంటర్ ఇటానగర్ లోక విఫాకునం పంపారే డిస్ట్రిక్ట్ బెన్ తగ్లా స్టేట్ లో రింగుల అక్క డిస్ట్రిక్ట్ గులు ఎలో అలర్ట్ గు కాతంలా నిదోంగ అచల బహోల కెంపేలా విఫాలిందుకు సోగ డిస్ట్రిక్ట్ దెదలో మోక గునలు దోగం దోడక్ అంగ్ తగ్లా నిదోంగ అచల బహోల నిదికేలా విఫాదదుకు సరుగ తాగిన్ గాంబ ఇన్యుంగ్ బితం సంకా హేబో
1: Manang manang nga si tegap se gam go aku tepay. Si ale manele ma aku HIV oi loke yonam chonam la. Ane loke kulo aduku alabim palinduku. Abarito la lako ba dung la achin ugumala donang tengnam loke so HIV si ni nga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so le ma nga pamu madu ba atuboga ayag nga ale ba Nichiko hospital lo check laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Nahalagan lo ke bimpalinduku.
2: Dosto is waqt aap bane hue hain Akashvani Itanagar ke Arun FM 103.1 MHz par. Ab se thodi der baad aap sun rahe the Tagin Shrotao ka samachar. हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद
3: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV Dolby Atmos 5.7 surround sound yes advanced level 2 ADAS yes smart power tailgate with gesture control yes 5 star safety rating yes yes It's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
4: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दोस्तों हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और अगर उस सुबह की शुरुआत हो ताजा मौसम की जानकारी और मधुर संगीत के साथ तो पूरा दिन और भी खूबसूरत बन जाता है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के मौसम का बिल्कुल ताजा हाल आज धूप कितनी रहेगी बादल क्या कह रहे हैं बारिश की संभावना है या नहीं तापमान कितना रहेगा और पूरे दिन मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है इन सभी बातों की पूरी जानकारी हम आपको पहुंचाएंगे बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर तो दोस्तों आज ईटानगर में मौसम का मिजाज आंशिक रूप से बादल वाला रहने वाला है आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और दिन के दौरान एक दो दौर बारिश का गरज के साथ बौछार पड़ने की भी संभावना है सुबह का मौसम सुबह तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है आसमान में बादल रहेंगे और वातावरण में नमी महसूस हो सकती है दोपहर का हाल दोपहर के समय तापमान बढ़कर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है कुछ समय के लिए धूप निकल सकती है लेकिन आसमान पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है बादलों की आवाजाही बनी रहेगी आज बारिश की संभावना भी हो सकती है खासकर बादल घने होने पर हल्की से मध्यम बौछार और गरज के साथ बारिश हो सकती है IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश के लिए थंडर स्ट्रॉम और लाइटनिंग की चेतावनी भी दी है शाम के समय फिर से बादल बढ़ सकते हैं और बारिश या थंडर स्ट्रॉम की संभावना बनी रह सकती है इसलिए बाहर निकलते समय मौसम पर नजर जरूर रखिए और छाता साथ रखना बेहतर रहेगा और अब मौसम के इस ताजा अपडेट के बाद चलिए बढ़ते हैं म्यूजिकल ब्रेक की ओर तो दोस्तों मौसम की खूबसूरती का जिक्र हो और बात हो जाए एक ऐसे गीत की जिसमें प्यार भी है, एहसास भी है और

मौसम की एक प्यारी सी करवट भी, तो फिर क्या कहना। कभी कभी बदलता हुआ मौसम अपने कुछ पुरानी यादें भी ले आते हैं। हवाओं में एक अलग सी मिठास महसूस होती है, दिल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और मन करता है बस कोई खूबसूरत सा गीत सुना जाए। तो चलिए सदाबहार में आज के पहले गीत के साथ इसी सुहाने एहसास को महसूस करते हैं। फिल्म आक्रमण का बेहद खूबसूरत गीत ये मौसम आया है, जिसे अपनी जादुई आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम लौटेंगे एक और खूबसूरत सदाबहार गीत के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सदा बहार में। और अब दोस्तों, मौसम की जानकारी के बाद अब रुक करते हैं एक खुशनुमा बनाने वाले एक ऐसे गीत के साथ जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अलबेला मौसम। मौसम जब सुहाना हो, हवाओं में हल्की सी मस्ती हो और दिल में खुशियों की एक नई तरंग हो, तो बस मन करता है कि इस पल को थोड़ा तहर कर महसूस किया जाए। तो आइए सदाबहार में सुनते हैं 1944 की फिल्म तोहफा का बेहद प्यारा गीत अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। इस खूबसूरत गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: तथा शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशू में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
3: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
4: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
3: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
5: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
3: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभार मॉर्निंग।

0: रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
1: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
2: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में

0: से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमड ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नव भारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks including regional rural banks to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshibina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And India beat England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. A report.
6: The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition, but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different locations along the route. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras between Vadnagar and Varanasi involve young participants traveling across multiple states, districts and villages. During the journey, the Seva Yatris have engaged with local communities and participated in service-oriented activities. These include cleanliness drives and interactions with beneficiaries and residents, as well as activities at schools, hospitals, nursing homes and other community locations. The journey is scheduled to continue until October 7. Harshita Ojha, Akashwani News, Delhi.
5: The Delhi Cabinet has approved the Durga e-auto scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the national capital. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. More details in this report.
7: This scheme was approved in the cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi yesterday. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. Of these, 1,170 autos will be reserved for women and 130 for transgender beneficiaries. The Chief Minister said the scheme will give women and transgender persons an opportunity to become owners and drivers of electric autos. She said that a maximum of 90 electric autos for women and up to 10 electric autos for transgender beneficiaries will be allocated in each revenue district. Ms. Gupta said the scheme is an initiative towards making Delhi a safer, greener and more inclusive city. With Akshit Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
5: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched Bharat Taxi and Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana, taking two major steps for taxi drivers and farmers. More details from our correspondent.
8: Through Bharat Taxi, two-wheelers, taxi and three-wheeler drivers will be able to join on zero commission upon registration. They will also receive social security of 5 lakh rupees. Its operations have started in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi and Prayagraj. MOUs have also been signed with various institutions including Lucknow Airport, Lucknow Metro and Lucknow Police. Referring to Prayagraj Mahakumbh 2025, CM

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग, प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर। दोस्तों आज का यह सफर होने वाला है जानकारी, इतिहास और मधुर संगीत से भरपूर। देखेंगे टुडे इन हिस्ट्री में, खोलेंगे इतिहास के पन्ने और जानेंगे कि आज के दिन भारत और दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। साथ ही मिलेंगे कुछ दिलचस्प बातें और ऐसी तथ्य जो आपके ज्ञान में एक नया पन्ना जोड़ेंगे और साथ ही सुनवाएंगे कुछ बेहतरीन गीतों को। तो बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। सबसे पहले आइए देखते हैं 24 सितंबर को इतिहास के पन्नों में क्या क्या घटनाएं घटी थी। फिलहाल देखते हैं भारत के नजरिए से। वर्ष 1932, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना फैक्ट। 24 सितंबर 1932 को भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक घटनाओं में से एक है। इसी दिन पुणे के यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित दलित वर्गों के प्रतिनिधियों के बीच पूना फैक्ट पर समझौता हुआ। इस समझौते की पृष्ठभूमि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड के कम्युनल अवार्ड से जुड़ी थी, जिसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। समझौते के तहत अलग निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटों की व्यवस्था स्वीकार की गई। 2014 मंगलयान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। 24 सितंबर 2014 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में

0: स्वर्णिम दिन बन गया। इस दिन इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। ये भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। इसरो के अनुसार मंगलयान को 6 महीने के मिशन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उसने 8 वर्ष से अधिक समय तक काम किया। इस मिशन के साथ भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना और पहली कोशिश में मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला पहला देश बना। वर्ष 1861 मैडम भिकाजी कामा का जन्म। 24 सितंबर 1861 को मुंबई में भिकाजी रुस्तम कामा का जन्म हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में शामिल थी। उन्होंने विदेश में रहते हुए भारत की स्वतंत्रता के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई। वर्ष 1925 डॉक्टर औथार सिंह पेंटल का जन्म। 24 सितंबर 1925 को प्रसिद्ध भारतीय शरीर विज्ञानी डॉक्टर औथार सिंह पेंटल का जन्म हुआ। उन्होंने शरीर की संवेदात्मक और शारीरिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान किया। उन्हें वर्ष 1981 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वर्ष 1940 आरती साहा का जन्म। 24 सितंबर 1940 को भारत के प्रसिद्ध तैराक आरती साहा का जन्म हुआ। वे लंबी दूरी की तैराकी के लिए जानी गई और बाद में इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी। 24 सितंबर उनकी जन्मतिथि के रूप में भारतीय खेल इतिहास में दर्ज है। आइए रुक करते हैं विश्व इतिहास पर। 24 सितंबर को कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी? वर्ष 1789 अमेरिका में संघीय न्याय व्यवस्था की नींव। 24 सितंबर 1789 को अमेरिकी कांग्रेस ने जुडिशियरी एक्ट में पारित किया। इस कानून ने अमेरिका की संघीय न्यायपालिका की संरचना स्थापित की और अटॉर्नी जनरल के पद का भी प्रावधान किया। वर्ष 1852 पहली भाप से चलने वाली यात्री एयरशिप की उड़ान। 24 सितंबर 1852 को फ्रांसीसी इंजीनियर हेनरी गिफर्ट ने भाप से चलने वाली एक एयरशिप का उड़ाया। ये एयरशिप लगभग 27 किलोमीटर यानी करीब 17 मील पेरिस से ट्रैम्प तक गई। इसे नियंत्रित और संचालित शक्ति से भरने वाले शुरुआती एयरशिप प्रयोगों में महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 1906 डेविल्स टावर अमेरिका का पहला नेशनल मॉन्यूमेंट बना। 24 सितंबर 1906 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्यूडर रोजवेल्ट ने योमिंग स्थित डेविल्स टावर को अमेरिका का पहला नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया। तो दोस्तों, 24 सितंबर का इतिहास अपने आप में कई महत्वपूर्ण अध्याय समेत हुए हैं। भारत में पूना पैक्ट, मैडम भिकाजी कामा का जन्म और सबसे खास 2014 में मंगलयान का मंगल की कक्षा में पहुंचना आज की तारीख को हमारे इतिहास में खास बनाते हैं। और दोस्तों, मंगलयान की कहानी तो खास तौर पर हमें याद दिलाती है कि कभी कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला एक क्षण वर्षों के मेहनत का परिणाम होता है। तो यही था आज का टुडे इन हिस्ट्री। इतिहास के पन्नों से कुछ यादें हमने आपके साथ साझा की। अब इन यादों को थोड़ा संगीत की मिठास में घोलते हैं। बने रहिए हेलो ईटानगर के साथ सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टुडे इन

इस साल यानी 2026-27 के लिए वर्ल्ड मैरिटाइम डे की टीम है फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस पावरिंग मैरिटाइम एक्सीलेंस। इस टीम का मुख्य संदेश यह है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय नियम और नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है, उन नियमों को वास्तविक दुनिया से सही तरीके से लागू करना, समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, कर्मचारियों की प्रशिक्षण देना और समुद्री क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ तथा खुशहाल बनाना भी उतना ही आवश्यक है। तो ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समुद्र के रास्ते दुनिया के देशों के बीच भोजन, ईंधन, कच्चा माल, मशीनरी और दूसरी अनेक आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही होती है, इसलिए वर्ल्ड मैरिटाइम डे हमें मुख्य रूप से इन विषयों पर ध्यान देने का अवसर देता है। तो दोस्तों, आज के हेलो ईटानगर कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत। फिल्म सिलसिला है प्यार का ये टाइटल ट्रैक अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से इस समय संवाद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संवाद।
1: हमारे सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच है। हम करतल ध्वनि से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बीच में 10 अलग अलग जगहों के राजस्थान और मध्य प्रदेश जहां से हमारा रूट अभी पहुंचा है वहां पे सभी सेवा यात्री मौजूद है। वहां के गांव के जो वहां के नागरिक है वह कोई कुछ लाभार्थी भी मौजूद है और साथ में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी भी अलग अलग जगहों पे यहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति से मैं संक्षेप में इस पूरी यात्रा का अब तक का ब्यौरा आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत चल रही इस यात्रा के हर सेवा यात्री की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। 2001 से आज तक आपके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष देश के युवाओं को एक नई सीख देते हैं। पद कोई भी हो, सेवा का संकल्प सबसे बड़ा होता है। इसी प्रेरणा से युवा मोर्चा ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यह यात्रा आरंभ की है जो चार भावों पर चल रही है। जल, पवित्र नदियों का जल, हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ाव। जन, हर गांव, हर वर्ग से सीधा संवाद और संपर्क। सेवा, इस यात्रा का केंद्र बिंदु, हर पड़ाव पर सेवा कार्य। और संकल्प, सेवा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प जिस पर आप खुद चल रहे हैं। 17 सितंबर को यात्रा वडनगर और काशी से एक साथ आरंभ हुई। भारत की पवित्र नदियों के नाम पर बनी 20 टोलियां 10 राज्यों के 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1159 गांवों से होकर यह यात्रा गुजर रही है। वडनगर से चले यात्री गुजरात की नदियों का जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे और श्री काशी से चले यात्री उत्तर प्रदेश की नदियों का जल लेकर श्री हाटकेश्वर महादेव वडनगर में जलाभिषेक करेंगे। हर पड़ाव पर लगभग 25 प्रकार के सेवा कार्य हो रहे हैं जिसमें वृक्षारोपण, स्वच्छता, फल वितरण, मेडिकल।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। कई अन्य यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस स्टेशन इलाके के दयानाथपुर गांव के पास हुई। ये स्लीपर बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस में आग लगने से मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना तथा लागत में कमी लाना है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए 2 बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन की राजकीय यात्रा पर कल अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक और सतनाम सिंह तथा सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi to interact via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17th.

0: आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता फरत नाज।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे। और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
2: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया के सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ। ये एक नए गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्रियां आते हैं, मुख्यमंत्रियां आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है। लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम करने की तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहाँ भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया। और आपने स्वच्छता की जिक्र किया, वहां जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का, वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनके बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं ले लेता है, उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं। और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके, स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया पूरा 6.5 लाख, उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया। 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है। तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज, ये दोनों मूल मुद्दे थे और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे। ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं सेकेंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में। लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था, उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताजुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे, जो कि पूरे दुनिया की खुले शौच करने वाले लोगों के 60% था। और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया, सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2, 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है। लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
1: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
3: देखिए, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और उन्होंने जो निर्मल गुजरात की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया। और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला, पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से थी। और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है, वहां से शुरुआत हुई।
1: जी, तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
4: श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता कचरा प्रबंधन लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज
1: अक्षय जी आपसे इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना कैसे बना
2: देखिए उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ मैं इंदौर बार बार गया हूँ बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को
1: अच्छा।
2: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहां से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा कुछ छिलके निकले तो उसको झोला में लेके घर में आएगा उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग अर्बन लोकल बॉडीज हो पंचायत हो वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला एक सूखा और गीला कचड़े अलग अलग रखो जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो वेट या ड्राई हो
1: जी।
2: अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक 4 अनिवार्य कर लिया
1: जी।
2: 2 से नहीं चलेगा 4 करना पड़ेगा जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना उसके लिए समय लगाना पड़ता है दिमाग लगाना पड़ता है रिसोर्स लगाना पड़ता है लेकिन करते हैं लोग और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है जब तक हम लोग चाहे जो सोर्स है जो कचरे का सोर्स है चाहे घर हो फैक्ट्री हो कॉलेज हो मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो जहां अगर जहां से निकलता है कचरा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है तो इंदौर में वो होता है इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है यहाँ तक वहाँ सफाई टूरिज्म होता है लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ कैसे हुआ वहाँ पार्क बने हैं सफाई की जो कचड़े की जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा उसको निकालकर एकर्स जमीन निकाल के वहाँ पार्क बना जाता है और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहाँ प्लांट भी बना है क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है और ये एक देखने की जगह है एक जगह में तो वहाँ एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है जो कि कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है और वहाँ की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है लाइफ कंडीशन है उनको जो फैसिलिटी है उनका जो तरीके है वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं जो तीर्थ में जाते हैं अलग अलग जगह जाते हैं उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसको समझते हैं इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए जैसे सूरत नवी मुंबई दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ जो गुजरात से गवर्नेंस और स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है पानी के पर भी है और पंचायती सिस्टम पर भी है और जीएसटी सिस्टम पर भी है वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है हेल्थ डिलीवरी पर है बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं उसका एक तरीका है काम करने का उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा भाई आपका पॉलिसी लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है ये भाई खाली पॉलिसी नहीं पूरा देश में होगा सब जगह होगा और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा इस तरह से चल रहा है इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है
1: बिल्कुल आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा
2: सिविक सेंस ना ये जो लोगों ने अगर शहर की या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए मेरा घर की मेरा टोली की मेरा कॉलोनी की मेरा आरडब्ल्यूए की सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं इसे और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रेस्पॉन्स जो है ना बहुत अच्छा रहा है लेकिन बात है कि ये जो चीज है ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है लेकिन जितना जल्दी होके लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई है और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर मंत्रालय के अंदर ये

0: काम तो जारी है, लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारे शहर भी
1: जी
0: आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
2: जो सर ने भी बात कही है,
1: जी
2: इंदौर से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए, और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में, और 2017 में नंबर एक पर आ गया। और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है। तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया, और उसमें उन्होंने जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया। तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ। तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है वहां हमने देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने के से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया। तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए, और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
0: आप दूसरी बात पर अभी चले गए हैं लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था, और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था। कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है। हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो 6 है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था। करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें, और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम फ्लड मैनेज वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत के निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है, जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे, और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया सूरत वगैरह से, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है। तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना, और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे, बहुत बड़ा भूमिका रहा है। उससे सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई। इसीलिए बहुत अचंभा की बात है, और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहाँ प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है। और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ, ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ। वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदान पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं। इंदौर पहले आया, लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होगी कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बोला जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई सौ हैं, हजार तक भी नहीं है।

0: तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है, रास्ता सही है लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है,
1: दूर
0: लेकिन
1: है।
0: इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचड़े से भी मुक्त होगा, क्योंकि नियत और जो मेहनत वो
1: जी
0: दोनों चल रहा है। लोगों को थोड़ी सी और जुड़ना है, और भी जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन
1: हाँ
0: में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना
1: वापस
0: पड़ेगा,
1: लाना बिल्कुल।
0: चाहेंगे।
1: और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है
0: बिल्कुल
1: कि स्वच्छ
0: बिल्कुल,
1: रहना है।
0: क्योंकि एक चीज आप देखिए,
1: जी
0: जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये
1: जी
0: कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा,
1: हाँ
0: सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है,
1: नहीं
0: सफाई शिक्षा से आता है।
1: जी
0: घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी
1: बिल्कुल
0: हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में, सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। तो हमारे परिवार, ये जो, क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है, इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार, कभी ऑफिशियली इसका नाम है
1: जी
0: स्वच्छ भारत मिशन,
1: जी
0: लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है,
1: कैंपेन
0: निरंतर चलता रहेगा, लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, 4 P, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, सबको, वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे
1: जी
0: मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉरपोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। और चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें दो तीन बातें समझनी जरूरी है।
1: जी
2: पहले, हम, चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे,
1: जी
2: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे,
1: जी
2: इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना
1: अर्ली
2: पड़ता है
1: मॉर्निंग
2: और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं,
1: जी
2: उनकी बीमारियां दूर हुई हैं, और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी,
1: जी
2: जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है, उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस जा रहा है।
1: जी
2: तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस प्लस जो चल रहा है,
1: जी
2: तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सकें। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है
1: जी
2: और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है,
1: जी
2: तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती है, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 1,58,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 1,31,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो आप सोचे कि हम फिर जो हमारा कचरा है, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं।
2: जी
1: तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस प्लस है,
1: जी
2: उसमें ये अलग है कि आप
1: अच्छा
2: सैनिटेशन, जो पैड वगैरह है,
1: जी
2: इनके लिए इनको इनका जो इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए, और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई, सफाई केवल ऐसा नहीं

0: ये आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए, घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं
1: जी
0: कि लोगों की जो बीमारियां होती थी उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है,
1: जी
0: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सारों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने
1: जी
0: केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
2: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा
1: जी
2: हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उन्होंने कहा है, और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में शौच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो उस चीज के जरिए से, पानी के जरिए से
1: जी
2: इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टेब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है। गंदगी रहने की या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें भी
2: हाइजीन का
1: स्वच्छता में
2: कॉन्सेप्ट
1: आती
2: है,
1: है,
2: इसको इसलिए
1: हाइजीन।
2: वॉश बोलते हैं। वॉश को एक सेक्टर माना जाता है,
1: जी
2: वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है, तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है।
1: जी
2: तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगेगा। और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ
1: जी
2: धोना है,
1: जी
2: नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जो आप जानते हैं शौचालय, शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला
1: जी
2: 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है।
1: जी
2: तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए, ये सब चीजों को मानना पड़े। तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि
1: जी
2: सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा,
1: जी
2: खाली एक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
2: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए, स्पॉटलेस, जैसे आप जाते हैं ना,
1: जी
2: आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं,
1: जी
2: बड़े बड़े अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना, ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जैसे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं अर्थ, एयर, वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से, एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गांव, हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपी किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है, तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
0: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती
1: है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
0: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपीई किट मिलना चाहिए, और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, और गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिए मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा, कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके सब, जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितने उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था। एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना है, लेकिन असल में हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करे, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ दंड और डर दोनों, भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गांव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीवी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी, जैसे लाल किला को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
2: काम तो बहुत हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है
1: जी।
2: और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि पनिशेबल क्या जाना चाहिए एजुकेशनली। जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारी चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है। हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा। हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, कुछ हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
1: बिल्कुल लक्ष्य जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए।
2: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों, खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है, सोने कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूँ। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें, हमारा घर, हमारा दफ्तर, हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा। जितना निकले कम निकले, और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
1: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
0: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो। और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गाँव के लिए नहीं, मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
2: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर के कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
1: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नियत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा की 7वीं संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित जन सेवा से देश सेवा का विशेष श्रृंखला। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म जब प्यार किसी से होता है से आवाज है उदित नारायण और लता मंगेशकर की।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन के मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। श्री मोदी ने ये बात गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है।
1: हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर

0: विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। उन्होंने कहा, सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी नाओ रेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक और सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सलमान सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से भारत को एक और पदक दिलाया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि टीम की ये उपलब्धि उसके दृढ़ संकल्प, संघर्ष और जुझारू भावना को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi today said that service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Parmo Dharm, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: During the interaction, Seva Yatri shared their experiences with the Prime Minister. They said that they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the

0: Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. President Draupadi Murmu inaugurated the Global Spiritual Palace Retreat Center of Brahmakumaris in Vadodara, Gujarat today. During the event, the President launched the Spiritual Awakening for World Renewal Project. She virtually launched the Youth for Vikasit Bharat Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. On this occasion, she said that we need such youth power that is inspired by honesty, responsibility, compassion, coexistence, and patriotism. The Delhi Cabinet has approved the Durga e-Auto scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the national capital. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched Bharat Taxi and Mukhya Mantri Krishak Samriddhi Yojana, taking two major steps for taxi drivers and farmers. Through Bharat Taxi, two-wheeler, taxi and three-wheeler drivers will be able to join on zero commission upon registration. They will also receive social security of 5 lakh rupees. Its operations have started in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi and Prayagraj. At least 9 passengers were burned to death after a sleeper bus caught fire on the Yamuna Expressway in Greater Noida late last night. Several other passengers managed to escape by jumping out through the windows. According to police, the incident took place around midnight near Dayanathpur village under the Jewar police station area. Police said that the identities of the 9 deceased passengers have not yet been ascertained. The deep depression over the Bay of Bengal has crossed the north Andhra Pradesh, south Odisha coast near Kalingapatnam and is now moving further inland. The system is continuing to trigger heavy to extremely heavy rainfall over several parts of Odisha, particularly the southern districts. In Odisha, incessant rain has disrupted normal life in several districts with reports of waterlogging, landslides and disruption of road connectivity in vulnerable areas, while in West Bengal, rain is likely to lash most parts of the city today. Heavy rain is also expected in Kolkata and several southern districts including North and South 24 Parganas, Havra, Bankura, Purulia, Paschim Bardhaman and Birbhum. Foreign ministers of the G4 countries, India, Brazil, Germany and Japan have called for early reform of the United Nations Security Council, UNSC. In a joint ministerial statement, they emphasized that expansion of the council in both permanent and non-permanent categories is central to the reform. Indian Wushu player Roshibina Devi Naorem signed off with a silver medal in the women's 60 kg Sanda event at the Asian Games after losing 0-2 to China Zhang Xiao in the final at Nagoya in Japan. Indian rowers Satnam Singh and Salman Khan won bronze medal in the men's double sculls event this morning. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Satnam Singh and Salman Khan on winning the medal. In a social media post, he said that the performance by both the athletes had earned India a well-deserved medal. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों हम लौटेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
2: डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक बहुत ही जरूरी सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश भूकंप या अर्थक्वेक और मल्टी हैजर्ड इमरजेंसी सिनेरियो पर आधारित एक हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगन के कुछ अस्पतालों में। इस मॉक एक्सरसाइज में आपदा की तैयारी, इमरजेंसी रिस्पांस और डिजास्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और अन्य इमरजेंसी एजेंसियों से कैसे संपर्क करना है या कैसे तालमेल रखना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ये मॉक एक्सरसाइज कब और कहाँ होंगे? ये होंगे 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे आरके मिशन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे हीमा हॉस्पिटल में, 25 सितंबर 2026 को यानी 25 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे हॉर्मिन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे नीबा हॉस्पिटल में, और 26 सितंबर 2026 यानी 26 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रीम्स नाहरलगन में। इस मॉक एक्सरसाइज में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश की देखरेख में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हेल्थ डिपार्टमेंट भाग लेंगे, क्योंकि इस दौरान भूकंप आने से, आग लगने से या अन्य आपदा में जिस प्रकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसी प्रकार से ही की जाएगी। इसीलिए सभी जनरल पब्लिक से ये अनुरोध करते हैं कि वे इस मॉक एक्सरसाइज को असली समझकर घबराए नहीं, और हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स और अटेंडेंट से भी निवेदन करते हैं कि वे हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब शुरू हो रही है वो म्यूजिकल महफिल जिसका इंतजार रहता है हमारे सभी म्यूजिक लवर्स को, क्योंकि यहां गाने हम नहीं आप चुनते हैं। जी हां दोस्तों, शुरू हो चुका है आपका अपना रेडियो ऑन डिमांड। इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यही है कि आपकी पसंद सीधे पहुंचती है हमारे स्टूडियो तक। आप भेजते हैं टेक्स्ट मैसेज और हम आपकी फरमाइश को लेकर आते हैं रेडियो की इस खूबसूरत महफिल में। तो मैसेज भेजते समय हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, किस सिंगर की आवाज में किस फिल्म का सॉन्ग है, अपना नाम और आप कहां से सुन रहे हैं। तो देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला मैसेज, और ये मैसेज हमें आया है एक साथ कई प्यारे दोस्तों की तरफ से, शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप, जो हमसे जुड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों पहली ही फरमाइश है एकदम मस्ती और दोस्ती के रंग में रंगा हुआ खूबसूरत सा गाना मेरी यार की शादी है, फिल्म मेरी यार की शादी है से, और जिसे अपनी आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो चलिए दोस्ती, मस्ती और शादी के जश्न से भरे इस खूबसूरत गीत के साथ करते हैं आज का रेडियो ऑन डिमांड का सांधा रागाज। लीजिए पेश है आपकी पसंद का गाना मेरे यार की शादी है।

से जो हमसे जुड़ रही है आसाम से। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। सुनीता जी ने एक फरमाइश की है, आजा मेरी जान गीत को सुनने का, फिल्म आजा सनम। फिर से सुनिए, आजा सनम फिल्म से आपने गीत चुनी है आजा मेरी जान, और इस गीत को गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल ने। और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है अमाल, बिमल, रमेश, लक्की और देवाशीष जी को। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए सुनते हैं सुनीता जी की पसंद का ये प्यारा गीत।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: देखा, मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: और दोस्तों, रेडियो डिमांड कार्यक्रम का अगला मैसेज आया है हमारे प्यारे लिसनर्स अमाल बासुमातारी जी को तरफ से, जो हमसे जुड़ रहे हैं रांगाफारा सोनितपुर असम से। अमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों, अमाल जी ने आज अपनी फरमाइश में चुना है कि फिल्म मोहरा का बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला गीत दिल हर कोई, जिसे अपनी आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। और इस खूबसूरत गीत को अमर जी ने डेडिकेट किया है अपने खास लोगों के नाम, अस्मिता, अंजलि, सुनीता, कविता, मनोई, विमल, रूपाली, पूजा, सुजीता, रमेश, लक्की, देवाशीष और जोगेंद्र के नाम। तो चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं अमाल बासुमात्री जी की पसंद और उनकी प्यारे से डेडिकेशन फिल्म मोहरा से दिल हर कोई गीत को।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और अगला मैसेज हमें आया है टेंशन क्रो और सरलो क्रो जी का तरफ से, जो हमसे जुड़ रहे हैं लंकमशम डिस्ट्रिक्ट कार्बेंगलोंग से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, टेंशन क्रो और सरलो क्रो जी ने आज अपनी फरमाइश में चुना है फिल्म पापा कहते हैं का बेहद खूबसूरत गीत पहली प्यार का पहला गम, जिसे अपनी मधुर आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने। प्यार की पहली यादें, पहला एहसास और दिल में बसी वो मासूम सी कहानी इस गीत की धुन में कुछ ऐसा ही खूबसूरत एहसास है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

और दोस्तों अब अगला मैसेज आया है हमारे प्यारे लिसनर्स रमेश पात्रो, रुनु पात्रो और लक्की जी का, जो हमसे जुड़ रहे हैं गोलाघाट आसाम से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों आज की इनकी फरमाइश है फिल्म जख्मी दिल का खूबसूरत गीत खुशियों का मौसम, जिसे अपनी आवाज दी है कुमार शानू ने, और इस प्यारे से गीत को डेडिकेट किया गया है इनके खास दोस्तों और अपने लोगों के नाम बाइकॉन अमोल, बिमोल, देवाशीष, हितेंद्र, जोगिंद्र, सोनाली, अंजलि और सुनीता जी को। तो रमेश, रुनु, लक्की जी, आपकी तरफ से आपकी सभी खास दोस्तों के लिए पेश है ये खूबसूरत म्यूजिकल डेडिकेशन।

दोस्तों बढ़ती है रेडियो डिमांड कार्यक्रम का अगला मैसेज की ओर और ये मैसेज हमें आया है हमारे प्यारे लिसनर्स बिमल बसुमतारी जी का तरफ से जो हमसे जुड़ रहे हैं मैसाखी सापुरी धेमाजी डिस्ट्रिक्ट असम से। बिमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों बिमल जी ने आज अपनी फरमाइश में चुना है फिल्म आरजू का खूबसूरत गीत दोस्ती करते नहीं। इस गीत को बिमल जी ने डेडिकेट किया है अपने खास दोस्तों और अपनेपन से जुड़े सभी लोगों के नाम अमाल गागी रेहवा रमेश रूनू लक्की रोको और बाइकॉन जोगेंद्र देवासी सीतेंद्र वीरन चवाके कसीम और सुनीता जी को। तो दोस्तों जब बात हो दोस्ती की तो एक गाना भी सिर्फ गाना नहीं रहता, बस उसमें दोस्तों के साथ बिठाए पल हंसी मजाक और ढेर सारी यादें जुड़ जाती है। लीजिए दोस्तों आवाज बढ़ाइए और इस गीत के साथ महसूस कीजिए दोस्ती और अपनेपन का ये खूबसूरत रंग।

दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर और ये मैसेज हमें आया है ज्योति सुरेन जी का, जो हमसे जुड़ रही है हेलम आसाम से। ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों ज्योति जी ने आज अपनी फरमाइश में चुना है फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज का खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला गीत ओ जाना, जैसे अपनी आवाज दी है राजू सिंह और केके ने। तो ज्योति जी आपकी इस खूबसूरत पसंद को अब हमारी इस म्यूजिकल महफिल में शामिल करते हैं। लीजिए दोस्तों सुनते हैं ज्योति सुरेन जी का फरमाइश पर ओ जाना गीत।

तो दोस्तों वक्त हो चला है आज के रेडियो निर्माण कार्यक्रम का अगला और अंतिम मैसेज को लेने का। और ये मैसेज हमें आया है जोरहाट असम से। भेजने वाले हैं प्रांजल, प्रतिम गोगोई, उर्मिला और माउनी जी की तरफ से। और आप लोगों ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है गैंगस्टर फिल्म का या आली गीत को। इस गीत को गाया है जुबिन गर्ग ने। तो हमसे जुड़ने के लिए प्रांजल, प्रतिम, उर्मिला और मोहिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत को।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज की पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तेज स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता दीन योग। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आरजे दांपक जी। और अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी कारगर रिबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। यात्रियों ने लोगों से संवाद किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। ये बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख

0: व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतरक्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता और सतनाम सिंह तथा सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबीना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियाओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today said that service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanagar to Varanasi. The Prime Minister said, Seva Parmo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said that they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. The Delhi Cabinet has approved the Durga e-Auto scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the national capital. Under the scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched Bharat Taxi and Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana, taking two major steps for taxi drivers and farmers. Through Bharat Taxi, two-wheeler taxi and three-wheeler drivers will be able to join on zero commission upon registration. They will also receive

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और बहुत बहुत धन्यवाद आरजे कारगे जी, मुझे आगे के कारोबार और आप सभी के साथ जुड़ने का मौका प्रदान किया आपने। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस वक्त 11:11 हो रहे हैं। इसके साथ अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। इससे पहले पहली प्रसारण सभा में आप जुड़े हुए थे आरजे कारगे जी के साथ, और अब आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी अपने आरजे साथी दंपा के साथ। दोस्तों हमारे इस दूसरी प्रसारण सभा में साथ दे रहे हैं प्रसारण निष्पादक गैर अत तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। तब चलिए श्रोता, दूसरी प्रसारण सभा की आरंभ करते हुए पेश कार्यक्रम फिल्मी लहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आशा है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देर किस बात की पेश कर रहे हैं कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म रमैया वसवैया फिल्म से। गीत के बोल है बेरिया और इस गीत को आवाज दी है अतिब असलम और श्रेया घोषाल ने।

Dans Hobson Radio ये गीत केके के आवाज में फिल्म कैद से। आपको बता दो कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी लहर में और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत फैनी खान फिल्म से। गीत के बोल है हल्का हल्का और इस गीत को आवाज दी है सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार ने और इस गीत के लिरिक्स लिखे है इशार कामिल ने और म्यूजिक डायरेक्ट किया है अमित त्रिवेदी ने।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
0: डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक बहुत ही जरूरी सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश भूकंप या अर्थक्वेक और मल्टी हैजर्ड इमरजेंसी सिनेरियो पर आधारित एक हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगुन के कुछ अस्पतालों में। इस मॉक एक्सरसाइज में आपदा की तैयारी, इमरजेंसी रेस्पॉन्स और डिजास्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और अन्य इमरजेंसी एजेंसियों से कैसे संपर्क करना है या कैसे तालमेल रखना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ये मॉक एक्सरसाइज कब और कहाँ होंगे? ये होंगे 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे आरके मिशन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे हीमा हॉस्पिटल में, 25 सितंबर 2026 को यानी 25 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे हॉर्मिन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे नीबा हॉस्पिटल में, और 26 सितंबर 2026 यानी 26 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे तोमोरेबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ट्रीम्स नाहरलगुन में। इस मॉक एक्सरसाइज में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश की देखरेख में NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हेल्थ डिपार्टमेंट भाग लेंगे, क्योंकि इस दौरान भूकंप आने से, आग लगने से या अन्य आपदा में जिस प्रकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, उसी प्रकार से ही की जाएगी। इसीलिए सभी जनरल पब्लिक से ये अनुरोध करते हैं कि वे इस मॉक एक्सरसाइज को असली समझकर घबराएं नहीं, और हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स और अटेंडेंट से भी निवेदन करते हैं कि वे हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में, और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र फिल्म से गीत के बोल है केसरिया, और इस गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। आपको बता दो कि अब से कुछ ही पलों में यानी 12 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे।

0: मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode, which will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chaired a meeting of the foreign ministers of the Forum for Indo-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York yesterday. The meeting reaffirmed the commitment to further strengthen the FIPIC partnership and cooperation in regional and multilateral fora. It was the second foreign ministers' meeting held under the FIPIC framework. Meanwhile, the foreign ministers of the G4 countries, India, Brazil, Germany and Japan, have called for early reform of the United Nations Security Council, UNSC. In a joint ministerial statement, they emphasized that expansion of the Council in both permanent and non-permanent categories is central to the reform. At least 9 passengers were burnt to death after a sleeper bus caught fire on the Yamuna Expressway in Greater Noida late last night. Several other passengers managed to escape by jumping out through the windows. According to police, the incident took place around midnight near Dayanathpur village under the Jewar police station area. Police said identities of the 9 deceased passengers have not yet been ascertained. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives. The Prime Minister has also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. The United States has said it is willing to explore a limited ceasefire between Russia and Ukraine, covering energy and grain. U.S. Secretary of State Marco Rubio said both sides have expressed interest in such an arrangement while stressing that no formal proposal or agreement has been reached. Pune will host the UCI Road World Championships in 2032, marking the first time cycling's prestigious global road championships would be held in India. The decision was announced at the UCI Congress in Montreal following Pune's final candidature presentation. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in the forenoon session today. The Sensex declined 704 points to 74,124, while the Nifty fell 235 points to 23,212 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: गीत संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताभ्याम सुन रहे थे दिल्ली के केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत एल्बम उस्ताद एंड द डीवा से। जी हाँ, के बोल है ले जा। और इस गीत को आवाज दी है श्रेया घोषाल और उस्ताद सुल्तान खान ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत आया नाम जी हाँ, और इस गीत का आवाज दी है ऋतु रिबा, हंसिका पारिक और साहिल ने।

दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत रिजा की आवाज में, और अब कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत छुरी, और इस गीत को आवाज दी है फाल्गुनी पाठक ने।

दस फीसदी के बाद अब कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत सफायर, और इस गीत को कोलैब किया है एड शीरान और अरिजीत सिंह ने।

दोस्त सगीर के साथ ही कार्यक्रम नौ है जो फिल्म सॉन्ग से ही पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप जुड़ेंगे मेरे साथ फौजी भाइयों और बहनों के कार्यक्रम में गीत माला।

दोस्तों कार्यक्रम गीत माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, ये सेगमेंट है हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पेश कर रहे हैं आपके लिए पहला गीत फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से, और गीत के बोल है बंदे में था गम, और इस गीत को आवाज दी है प्रणब विश्वास, श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: हैप्पी बर्थडे भाई
3: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है
6: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
4: आई नो ना
6: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है
9: एचआईवी संक्रमित खून असुरक्षित यौन संबंध संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है
8: लेकिन याद रखें साथ बैठने हाथ मिलाने गले लगाने साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता
9: एचआईवी की जांच कराएं समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है
8: एचआईवी से डरे नहीं जानकारी बढ़ाए जांच कराए भेदभाव मिटाए
9: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी
10: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम गीत माला में और इससे पहले आप सुन रहे थे गीत लक्ष्य फिल्म से जी हाँ और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत बाघ मिल्खा बाघ फिल्म से गीत के बोल है स्लो मोशन और इस गीत को आवाज दी है शंकर एहसान लोई सुखविंदर सिंह और लोई मेनलसानी

0: डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक बहुत ही जरूरी सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश भूकंप या अर्थक्वेक और मल्टी हैजर्ड इमरजेंसी सिनेरियो पर आधारित एक हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगन के कुछ अस्पतालों में। इस मॉक एक्सरसाइज में आपदा की तैयारी, इमरजेंसी रिस्पांस और डिजास्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और अन्य इमरजेंसी एजेंसियों से कैसे संपर्क करना है या कैसे तालमेल रखना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ये मॉक एक्सरसाइज कब और कहाँ होंगे? ये होंगे 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे आरके मिशन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे हीमा हॉस्पिटल में, 25 सितंबर 2026 को यानी 25 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे हॉर्मिन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे नीबा हॉस्पिटल में, और 26 सितंबर 2026 यानी 26 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ट्रीम्स नाहरलगन में। इस मॉक एक्सरसाइज में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश की देखरेख में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हेल्थ डिपार्टमेंट भाग लेंगे, क्योंकि इस दौरान भूकंप आने से, आग लगने से या अन्य आपदा में जिस प्रकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसी प्रकार से ही की जाएगी। इसीलिए सभी जनरल पब्लिक से ये अनुरोध करते हैं कि वे इस मॉक एक्सरसाइज को असली समझकर घबराए नहीं, और हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स और अटेंडेंट से भी निवेदन करते हैं कि वे हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Work from home? हाय सैलरी बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गीत माला में। जी हाँ, और गीतमाला में इससे पहले ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे गीत फिल्म बाग मिल्खा बाग से, और आप सुनेंगे गीत फिल्म ट्रैफिक से। गीत के बोल है नेकी किला और इस गीत का आवाज दी है अरिजीत सिंह और मिथुन ने।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV.
1: दोस्तों आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार.
0: Yes, 5-star safety rating. Yes, yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
2: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए. श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही.
4: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे. हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा. कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे.
3: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए. भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई. इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए. संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है. डॉ एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई. बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई. भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था. वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे. मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई. कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई. पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई. बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे. जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के

प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपके लिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश
2: जी। नमस्ते।
1: नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
2: जी हाँ, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी प्रेम सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
2: थैंक यू सो मच। आपको भी कॉल उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
1: जी हम भी बहुत ही अच्छे हैं, और आपसे बात करके हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: जी आपको बताना चाहेंगे, अभी अगले हफ्ते से हमारे यहाँ पे सोयाबीन की कटाई शुरू हो जाएगी।
1: अच्छा जी।
2: हाँ जी, अभी पक के तैयार हो गई है, लेकिन दो चार दिन इसलिए हम रुक रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा बरसात का पानी बहुत बताया जा रहा है।
1: अच्छा जी।
2: तो हाँ, अभी दो चार दिन में मतलब मौसम साफ हो जाएगा तो फिर कटाई शुरू हो जाएगी।
1: ओके। और फसल कैसा हुआ है इस बार?
2: हाँ जी, काफी अच्छी फसल खड़ी है अभी तो हमारी।
1: ओके।
2: और यू समझिए कि एक बार फिर सब मालामाल होने वाले हैं।
1: मालामाल होने वाले, क्या बात है।
2: जी
1: जी, बहुत बहुत बधाई आपको जी।
2: क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, सोयाबीन की फसल हमारे 3 महीने में पक के तैयार हो जाती है।
1: अच्छा जी।
2: और हाँ जी, फिर इसकी कटाई के बाद में फिर लहसुन और गेहूँ की फसल फिर से लगाएंगे हम।
1: ओके। और ये
2: तो इतना अच्छा लग रहा है खेती किसानी में काम करते हुए हमें, और साथ में आकाशवाणी का साथ मिला है ना। तो यूँ समझे कि बहुत खुशहाल जिंदगी व्यतीत हो रही है हमारी।
1: जी आप तो अन्नदाता है, आपके बगैर तो हमारा पेट भरेगा नहीं।
2: जी ऐसे कहा जाता है ना कि जय जवान जय किसान।
1: जय किसान।
2: बॉर्डर पर जवान अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, और खेतों में हल चलाकर ट्रैक्टर चलाकर मतलब किसान अन्नदा करके देशवासियों की सेवा कर रहे हैं।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा, सभी अन्नदाताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत नमन सलाम करते हैं हम। जी तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही।
2: नाम तो पक्का याद नहीं, लेकिन गाने के बोल बता दूं।
1: जी जी जरूर जरूर।
2: गाने के बोल है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं।
1: ओके जी। हाँ जरूर सुनाएंगे।
2: हाँ जी, काफी अच्छा गाना है ये
1: जी,
2: और
1: जी।
2: मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगता है। और मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और हमारे दोस्त है लोकेंद्र वर्मा, भगवान सिंह परमार, संगीता जी, आशुतोष अविनाश जी, भगवान सिंह परमार, रमेश टेलर और रानू गुप्ता।
1: ओके। इन सभी साथियों के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को?
2: हाँ, और आपके लिए भी सर ये गाना डेडिकेट रहेगा।
1: जी हम भी जरूर सुनेंगे आपके साथ। तो प्रेम सिंह जी कॉल करने के लिए जी।
2: मैं बताना चाहूंगा, मुझे आपसे बात करना बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं तो उसके बात करता जाऊँ आपसे और कार्यक्रम ऐसे चलता रहे।
1: जी लेकिन दूसरे श्रोताओं को भी मौका देना है।
2: जी बिल्कुल, मौका देते हुए आप कॉल समाप्त करिए और अगले श्रोता को जल्दी से लीजिएगा।
1: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
2: जी थैंक यू।

0: हेलो, फरमाइश
1: सर जी। जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल।
1: शिवालोहट MP विदिशा से आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ सर।
0: जी शिवालोहट जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ सर जी, आप कैसे हैं और आपकी टीम कैसी है?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ और हमारा पूरा टीम भी बहुत ही बढ़िया है
1: जी सर।
0: और जब आप लोगों का कॉल आता है तो और भी बढ़िया हो जाते हैं हम।
1: जी बिल्कुल सर।
0: और आपके वहाँ मौसम कैसा है आज?
1: सर जी धूप निकल रही है बढ़िया, कभी कभी भगवान को याद आ जाता है तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है।
0: भगवान को याद आती है तो
1: जी
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: क्या है, अभी तो गर्मी वाला माहौल है पर ये है, उम्मीद जरूर है 10-20 दिन बाद थोड़ी सुबह शाम में ठंडक आ जाएगी
0: जी
1: सर।
0: जी जी जी हाँ जी हाँ जी, ठंडी का मौसम भी आ गया है लगभग
1: जी
0: जी। तो और अभी क्या कर रहे हैं आप?
1: बस सर जी कॉल मिला रहा था
0: अच्छा
1: और जल्दी से कॉल मिल गया है, बहुत खुशी हो रही है सर
0: जी।
1: जी।
0: और कौन कौन से केंद्र में आपने कॉल लगाया आज?
1: जी सर जी अभी देखिए मैंने आज लगाया है, मथुरा में लगाया है, कुरुक्षेत्र में लगाया है, इंदौर में लगाया है। और सर जी अब आपसे बात हो रही है।
0: अच्छा, हमारा चौथा नंबर है।
1: जी अभी
0: ओके
1: थोड़ी देर बाद लखनऊ ट्राई करूंगा सर जी।
0: अच्छा, जी सभी केंद्रों में आप
1: और
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में ही कॉल लगाते हैं?
1: जी सर मैं सभी जगह पे पार्टिसिपेट करता हूँ जी, और जहाँ पे एक नंबर चलता है सर मैं वही आकाशवाणी पे जाता हूँ, जहाँ 2-3 नंबर चलते हैं वहाँ मैं नहीं जाता।
0: अच्छा, ओके ओके। ओ,
1: जी
0: कई कई केंद्रों में 2-3 नंबर होते हैं।
1: जी जी सर। और
0: अच्छा
1: फिर उसमें परेशानी वाली बात रहती है, घंटी जा रही है, पता पड़ रहा है दूसरे नंबर उठ गया है,
0: ओ
1: वो
0: अच्छा
1: मतलब फिर ये रहता है, समय खराब होता है,
0: हाँ जी
1: अपना
0: हाँ जी हाँ
1: माइंड भी
0: जी,
1: डिस्टर्ब होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे
1: जी
0: यहाँ तो
1: सर
0: एक ही
1: जी
0: नंबर है और इस पे आप लगाते रहिए जब भी आपका जी चाहे।
1: जी सर
0: जी
1: ये इसीलिए तो ईटानगर मुझे बहुत बढ़िया लगता है सर जी।
0: ओके
1: और पर ये रहता है कभी कभी लाइन इतनी बिजी आ जाती है कि पूरे टाइम
0: हाँ
1: तक हम प्रयास ही करते रह जाते
0: जी
1: हैं
0: जी
1: और बात नहीं हो पाती
0: ये
1: सर
0: तो
1: जी।
0: बात
1: जी
0: सही है। अब क्या करें, इतने
1: जी
0: सारे श्रोता हमसे प्रेम करते प्यार करते हैं तो सभी का
1: बिल्कुल
0: कॉल
1: सर।
0: लेना तो बनता ही है जी।
1: जी।
0: तो
1: सर
0: शिवा लोहर जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी एक मूवी रहेगी दो जिस्म एक जान, उसमें एक गाना है हाय और अब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिल आते हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं।
0: ओ, और किन साथियों को
1: जी
0: सुनाना चाहेंगे आप?
1: सर जी हमारे परम प्रिय मित्र हैं पूरन वर्मा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, अविनाश जी, अमल जी, विमल जी, रमेश प्रजापति जी और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सर, सबके लिए डेडिकेट रहेगा और इसके लिए सर जी।
0: ओके, मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवा

0: हेलो फरमाइश
1: दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ईटानगर चलन और प्रोग्राम जारी है हेलो फरमाइश। और आपके साथ प्यारी प्यारी बातचीत करने के लिए आज आपके साथ आरजे हैं, आरजे बोकेबारा सर। और मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बगुला से। जय माता दी,
0: जय माता दी, हमारा प्यारा सा छोटा आरजे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हो आप
0: जी? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप इसी तरह से प्यार बनाए रखिए हमारे साथ।
1: जी सर, तभी आपका ये सब कुछ है सर, आपके माध्यम से हम तो सीखे हुए सर।
0: जी, और कितने स्टेशनों में आपने कॉल लगाया आज, या ये फिर पहला है?
1: जी सर, आज तो पहला है, आकाशवाणी लखनऊ लगा था, पर वो क्या है, उधर से दिल्ली से कार्यक्रम आ रहा है।
0: अच्छा अच्छा जी, ओके।
1: तो 11:30 बजे के बाद में लगाऊंगा, फ्री लोगों को लगाऊंगा।
0: अच्छा,
1: तो कई कई जगह लगाते हैं अपन, तो इंदौर भी लगा देते हैं, लगाते रहते हैं, कम से कम दिन में अपना 12-13 कॉल हो जाता है।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: जी,
0: और सभी केंद्रों से आप हेलो फरमाइशी सुनते हैं या फिर कोई और कार्यक्रम?
1: जैसे हेलो ज्यादा कर तो फोन इन कार्यक्रम में सुनते हैं, पर जैसे मान लो कोई कार्यक्रम अपना खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ तो वो
0: अच्छा,
1: भी सुन लेते हैं।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी
1: और जो भी डॉक्टर वाली बात होती, जो भी आता है अपना कार्यक्रम, तो हम सुनते रहते रेडियो।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी जी, ठीक है, बढ़िया है। तो आज कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: जी सर, अगर फिल्म का नाम मालूम नहीं और गाने के बोल से मैं बता दूं तो आप?
0: जी जी जी, हाँ जी।
1: बेबपा प्यार के राहों में मुझे छोड़ दिया, इतना नाजुक है मेरा दिल, उसे क्यों तोड़ दिया। ये गाना
0: हाय ओ रब्बा, हमारे छोटे आरजे का दिल किसने तोड़ दिया। जी, बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है।
1: जी, मिल जाएगा ना सर ये गाना?
0: हाँ, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा जी।
1: और सर,
0: किन
1: आपके केंद्र, आपके केंद्र पे तो गाने अगर ना भी मिलो ना तो भी आप ढूंढ निकाल लेते हो कहीं
0: जी,
1: से।
0: जी जी जी, हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो फरमाइश है उसी को पेश करो।
1: जी सर, तो आज कौन सा नंबर पे आ गया हूँ सर मैं?
0: तीसरे नंबर।
1: जी,
0: और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी, सबसे पहले तो आप है,
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: ओ नूरा मैडम है, कविता मैडम है, और आप तो है ही। ओ मेरा दोस्त है भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति, रमेश पात्रे, अमल बिमल, गोल्डी भाई शिमला से, राकेश है, और देपाली जी है महाराष्ट्र से, और स्वाति जी है, और जितने भी लाइव आपके कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए उनको तक।
0: ओके, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, मैं असम से बात कर रहा हूँ, सुतपा भट्टाचार्या
0: जी। सुतपा दी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप?
1: मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। आपके वहाँ मौसम कैसा है सुतपा दी?
1: मौसम तो अच्छा है, धूप उठा है,
0: अच्छा धूप उठा है ना, ओके।
1: गर्मी बढ़ रहा है।
0: कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद तो ठंडी का मौसम आ जाएगा।
1: जी।
0: तो
1: आज हम बाहर जा रहा हूँ, मैं भी भैया को गुजर गए,
0: ओहो
1: बड़ा भैया।
0: बड़ा भैया गुजर गया। ओहो
1: जी।
0: जी, सुनकर बहुत ही दुख हो रहा है। जी उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। जी। तो इस दुख के घड़ी में आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे श्रोता जी?
1: हाँ, तो गाना सुना दीजिए। तो फिल्म का नाम तो पता नहीं करने का, वो जैसे है मौसम मौसम लव मौसम, ये गाना सुना दीजिए।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
1: कहना था आपके लिए,
0: थैंक यू।
1: मनोज कुमार भट्टाचार्य, प्रमोदी चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, लुकेंद्र वर्मा, श्रीकांत जोशी, अविनाश तेली, सबके लिए।
0: ओके, तो श्रोतापति कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर
1: जी। नमस्कार सर जी,
0: जी। नमस्कार
1: सतीश रघुवंशी बोल रहा हूँ सर, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से जी।
0: जी। सतीश रघुवंशी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो, सुनाइए आप।
1: बिल्कुल बढ़िया है सर जी। और जब हमारी आपसे और बातें हो जाती तो ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा दिन हमारा अच्छा खुशनुमा हो जाता है
0: क्या बात है, क्या बात है। तो हमेशा हमसे जुड़ते रहिए जब भी प्रोग्राम बजेगा
1: जी। बिल्कुल
0: जी।
1: सर जी, दिल मानता है नहीं ना सर, सोमवार या गुरुवार यदि आता है तो ऐसा लगता है सुबह से कि हमारा फोन कब लग जाए, बस भगवान से अर्जी करते हैं और भगवान हमारी पुकार जरूर सुन लेता है
0: जी, सच्चे दिल से आप दुआ करेंगे तो जरूर सुनेगी भगवान जी
1: बिल्कुल सर
0: जी और मौसम कैसा है आज आपके वहाँ?
1: जी। अभी तो कल सर हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुई रात को थोड़ी, और
0: अच्छा।
1: बिजली कड़क के साथ, और अभी सर मौसम खुला है, धूप निकली है
0: अच्छा, तो बढ़िया
1: जी।
0: मौसम है अभी तो
1: जी बिल्कुल सर।
0: जी। और क्या कर रहे हैं अभी?
1: बस सर जी, अभी हमारे यहाँ पे हवन होने वाली है, बस पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं, तो समय मिल गया तो उनको कॉल मिला लूँ थोड़ा।
0: अच्छा, क्या चीज़ का हवन?
1: सर गणेश जी हैं सर घर पे,
0: अच्छा,
1: तो
0: ओके ओके जी,
1: आज
0: ओके।
1: हवन है सर जी, तो बस अभी ड्यूटी से आके बस हवन की तैयारी में लगा था, अभी टाइम था थोड़ा, तो मैंने कहा यार लगा के देखूँ, लग जाएगा, लग ही जाएगा कॉल, लग गया सर किस्मत से
0: जी, गणेश जी की कृपा से फोन लगी गया आपका
1: बिल्कुल सर
0: जी।
1: जी। मैं गणेश भगवान के पास बैठा था अकेला, और मोबाइल में डायल कर रहा था और बोला था भगवान जी मेरा फोन लग जाएगा, किस्मत से लग गया
0: जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: सर जी। आप मुझे सुनो दीजिए, फिल्म का नाम रहेगा हमराज, और गीत के बोल रहेंगे सर जी, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगे में लुटाता रहूं, ये वाला गीत
0: वाह
1: सुनना
0: वाह
1: सर
0: वाह, बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है। बहुत दिनों के बाद मैं भी सुनूंगा आपके साथ
1: जी। बिल्कुल सर जी,
0: जी
1: ये गीत बहुत ही प्यारा है और
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: दिन बाद सर रेडियो में सुनने को मिलेगा सर मेरे को
0: सही
1: भी।
0: कहा, बिल्कुल जी। और किन साथियों को
1: और
0: सुनाना चाहेंगे आप?
1: जी बिल्कुल सर जी, सबसे पहले तो डेडिकेट आपको रहेगा सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: क्यों से कि ये गीत ऐसा है सर जी कि आप भी बहुत आनंद से सुनोगे, मैं भी
0: हाँ
1: बहुत
0: जी
1: आनंद से सुनूंगा
0: जी जी जी
1: सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और हमारे सर जी गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, आत्मराम पाटिल जी हैं, नारायण प्रधान जी हैं, राजू यादव जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, सुनील झा जी हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, राजू यादव जी हैं और राजेंद्र गंगवार जी हैं सर
0: ओके, इन साथियों के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को
1: जी।
0: जी?
1: थैंक यू
0: तो
1: सर।
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हो आप?
1: बस बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
0: ओह क्या बात है जी। बारिश
1: जी।
0: बारिश हुई है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, बारिश नहीं। हमारे जैसे पहाड़ों में जो है साफ मौसम में जो है पंखे की तरह हवा आती है दिन को और शाम को।
0: अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। जी जी जी
1: जी जी तो हम... ये है कि बारिश तो अभी धीरे धीरे ठंड भी बनने लगी।
0: जी जी जी, ठंडी का मौसम आ ही गया। जी
1: जी जी, जी।
0: तो कहिए आज राकेश जी, कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: फिल्म का नाम है बेवफा सनम।
0: बेवफा सनम, ओके।
1: हाँ जी, तो उसमें एक गाना है, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भूला ना पाए।
0: जी जरूर सुनाएंगे। और कोई खास वजह इस गीत को चुनने का?
1: नहीं नहीं, गाना तो ये बहुत अच्छा लगता है।
0: ओके जी, हाँ जी जरूर सुनाएंगे, हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है ये गीत। और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे आप?
1: सबसे पहले तो ये आपको डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पूरन वर्मा है, गजराज लोधी है, भगवान सिंह परमार है, रमेश प्रजापति है, और मांगीलाल चंदेल है, और तनुश्री है महाराष्ट्र से, और तमाम सुनने वाले श्रोता है, सब के लिए गाना डेडिकेट।
0: सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: जी जी धन्यवाद।
0: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा हूँ सर, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी। टेकचंद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। मौसम कैसा है आपके वहाँ?
1: सर मौसम का तो कुछ पूछ ही नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत कम हुई है, तो उसके कारण सर जो गर्मी का जो असर है वो पूर्ण रूप से जा नहीं पा रहा है।
0: ओके। जी।
1: और साथ में सर जब हम लोग कॉल लगाते हैं तो इतना मतलब प्रयास करना पड़ता है कि दिल दिमाग और मोबाइल अलग गर्म हो जा रहा है।
0: क्या करें, इतने सारे श्रोता कॉल करते हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: लाइन बिजी ही रहता है। जी जी जी
1: जी जी लेकिन
0: जी
1: सर प्रयास हम लोग छोड़ते नहीं है।
0: ओके।

0: जी
1: और सफलता तो जरूर मिलती है, तो आप भी जानते हैं।
0: जी जी जी जी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: सर।
0: जी जी तो इस जीत की खुशी में आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर मुझे सुनवा दीजिएगा, फिल्म है पिया का घर।
0: पिया का घर। ओके।
1: हाँ, मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाज है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो
0: ओके।
1: कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है।
0: ओहो, वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो शायरी हो गई।
1: जी जी
0: जी, और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: सर हमारे साथ में है सतीश रघुवंशी जी है, राजू यादव जी है, और सुरेश वर्मा जी है, और रेडियो एकता श्रोता संघ के हमारे कुछ मित्र हैं, गौतम राय बोले जी है, लोकेंद्र वर्मा जी है, तो सभी श्रोता मित्र के साथ आप भी इसका आनंद लीजिएगा सर।
0: जी जी जरूर, हम भी सुनेंगे आपके साथ। तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो हेलो फरमाइश जी।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे यार, कैसे
0: जी
1: हो?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो, सुनाइए आप।
1: अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो। लेकिन
0: जी
1: मतलब क्या हुआ, अभी तो बहुत गर्मी है
0: ओके
1: हमारे यहाँ पे, और 36 से लगभग 36 हो
0: ओके
1: जाएगा,
0: बाप रे।
1: इतना गर्मी।
0: अभी तो ठंडी का
1: तो
0: मौसम धीरे धीरे आ ही रहा है।
1: जी,
0: जी
1: और तो चलिए, मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट से श्री भूमि, आसाम से ताल्लुकात है।
0: जी
1: और मेरे दोस्त, एक बात कहूँ आपको,
0: हाँ जी जरूर।
1: कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं, है
0: तकलीफ
1: ना?
0: देने वाले ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने अनुप जी। और अनुप दा,
1: जी
0: आप इतने प्यारे प्यारे शायरी कहाँ से लेके आते हैं। जी सही में बहुत ही अच्छा लगता है।
1: मैंने सोच लिया, एक दिन मैंने, मेरा मन में आया,
0: अच्छा
1: हमारे फ्रेंड ने से क्वेश्चन छोड़ेगा, तो
0: अच्छा ओके ओके
1: क्या
0: हाँ।
1: हुआ, मैं आपको एकदम चुपी चुपी छुपा
0: जी जी जी
1: चुप में कह रहा हूँ। ये
0: ओके
1: तो
0: अच्छा
1: जो है मोबाइल का देन है ना?
0: हाँ बात तो सही है।
1: मोबाइल का देन है, मॉल में तो अवेलेबल होता है
0: जी
1: सब
0: जी जी
1: कुछ, जो भी क्या बोलो, मतलब अच्छे लगेगा वो तो एकदम खींच के चले आते हैं मेरे
0: जी।
1: पास।
0: लेकिन अनुपदा, उसको बोलने का भी एक ढंग होता है ना आपका, बहुत ही बढ़िया है। जी
1: क्या बात, क्या बात,
0: एकदम
1: क्या
0: रियली
1: बात,
0: सही में
1: हमारे
0: बहुत ही अच्छा
1: दोस्त को क्या बोलो,
0: लगता
1: एकदम सराखोपन।
0: है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आज इसी प्लेटफॉर्म में गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: फिल्म का नाम है फरार,
0: फरार
1: और है फरार, और
0: ओके
1: गाने का बोले से, मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, हो ना हो तो, ऐसे करके गाने
0: वाह
1: हैं।
0: वाह वाह। जी जी
1: हाँ जी,
0: जी
1: बहुत
0: शायरी भी
1: अच्छे
0: बहुत ही
1: गाने,
0: बढ़िया और गाना भी बहुत
1: बढ़िया
0: बढ़िया
1: गाने
0: चुना।
1: हैं,
0: जी
1: किशोर कुमार जी ने गाए हैं,
0: जी
1: और साथ में शायद लता जी है। और तो आज कुछ डेडिकेशन है मेरा।
0: जी जी जरूर।
1: पहले है हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे जिसका नाम है लोकेंद्र वर्मा जी, फ्रॉम उज्जैन मध्य प्रदेश, और है हमारे छोटे भाई अविनाश जी है, और अमर सिंह साहू, विजय सिंह लखेरा, और कश्मीर से हमारे पुरुषोत्तम कुमार जी, और है देवजीत दास, और हमारे सहधर्मिणी सुष्पा भट्टाचार्य, और हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे जिससे मेरा बातचीत हो रहा है, उसका नाम बोके बागरा जी, और कविता जी, और नूरी मैडम के लिए। तो
0: ओके
1: चलिए दोस्त, बातचीत को यही पे विराम देता हूँ। बहरहाल आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और इतना मजेदार प्लेटफॉर्म में आपसे मेरा, हमारा बातचीत हो जाए, है ना?
0: जी। तो अनुपदा,
1: थैंक
0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
2: ये देख कैसे।
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दीखा?
4: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो ना।
7: आरबीआई कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक बहुत ही जरूरी सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश भूकंप या अर्थक्वेक और मल्टी हैजर्ड इमरजेंसी सिनेरियो पर आधारित एक हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगन के कुछ अस्पतालों में। इस मॉक एक्सरसाइज में आपदा की तैयारी, इमरजेंसी रेस्पॉन्स और डिजास्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और अन्य इमरजेंसी एजेंसियों से कैसे संपर्क करना है या कैसे तालमेल रखना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ये मॉक एक्सरसाइज कब और कहाँ होंगे? ये होंगे 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे आरके मिशन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे हीमा हॉस्पिटल में, 25 सितंबर 2026 को यानी 25 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे हॉर्मिन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे नीबा हॉस्पिटल में, और 26 सितंबर 2026 यानी 26 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ट्रीम्स नाहरलगन में। इस मॉक एक्सरसाइज में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश की देखरेख में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हेल्थ डिपार्टमेंट भाग लेंगे, क्योंकि इस दौरान भूकंप आने से, आग लगने से या अन्य आपदा में जिस प्रकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसी प्रकार से ही की जाएगी। इसीलिए सभी जनरल पब्लिक से ये अनुरोध करते हैं कि वे इस मॉक एक्सरसाइज को असली समझकर घबराए नहीं, और हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स और अटेंडेंट्स से भी निवेदन करते हैं कि वे हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
10: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh. And benefits

0: जनहित में जारी।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
2: दोस्तों, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज का दोपहर समाचार।
0: सतर्क रहिए।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
4: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
3: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.
4: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047.
4: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired a meeting of the foreign ministers of the Forum for India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York yesterday. The meeting reaffirmed the commitment to further strengthen the FIPIC partnership and cooperation in regional and multilateral fora. It was the second foreign ministers' meeting held under the FIPIC framework. During the meeting, the participating leaders reviewed the outcomes of the FIPIC summits and welcomed the progress in Indo-Pacific Island countries' cooperation, including under the 12-point action plan announced by Prime Minister Narendra Modi in 2023. They also discussed further cooperation in renewable energy.

0: हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
1: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
2: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
4: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। टोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में

0: श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
1: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
3: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की

बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रद्धा भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहां होती है दिल से दिल की बात, और प्रस्तुत है दोस्तों आपके लिए कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। दोस्तों कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हां, 90s के गाने सीधे दिल पर लगते हैं। दोस्तों 90s के गाने खास इसलिए लगते हैं क्योंकि उनमें मेलोडी, लिरिक्स और इमोशंस का बहुत खूबसूरत मेल था। धुन सिंपल और याद रहने वाली होती थी। गहरे जज्बा, प्यार, जुदाई, दोस्ती और जिंदगी के एहसास को खूबसूरती से बयां भी किया जाता था। तो आइए इसी के साथ ही शुरू करते हैं कार्यक्रम को, और पेश कर रहे हैं आपके लिए पहला गीत फिल्म अकेले हम अकेले तुम फिल्म से, और ये क्या बोल है दिल मेरा चुराया क्यों, और इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू और अनु मलिक ने। दोस्तों इस फिल्म में आमिर खान और मनीषा कोरेला मुख्य भूमिका में हैं। कहानी पति पत्नी के रिश्ते प्यार और अलग के साथ पिता और बेटे के इमोशनल रिश्ते को दिखाती है। फिल्म का म्यूजिक अनु मलिक ने दिया था और गाने 90s के रोमांटिक और इमोशनल अंदाज को खूबसूरती से पेश करते हैं। आमिर खान के कैरेक्टर में एक जिम्मेदार पिता और अपने बेटे के लिए लड़ने वाले इंसान का इमोशनल साइड देखने को मिलता है, और फिल्म में प्यार, ईगो, सेपरेशन और फैमिली इमोशंस का अच्छा कॉम्बिनेशन था। और 90s की फिल्म मेकिंग, म्यूजिक और परफॉर्मेंस इस फिल्म को उस दौर की एक यादगार फैमिली इमोशनल फिल्म बनाती है।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक बहुत ही जरूरी सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश भूकंप या अर्थक्वेक और मल्टी हैजर्ड इमरजेंसी सिनेरियो पर आधारित एक हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगन के कुछ अस्पतालों में। इस मॉक एक्सरसाइज में आपदा की तैयारी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और डिजास्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और अन्य इमरजेंसी एजेंसियों से कैसे संपर्क करना है या कैसे तालमेल रखना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ये मॉक एक्सरसाइज कब और कहां होंगे? ये होंगे 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे आरके मिशन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे हीमा हॉस्पिटल में, 25 सितंबर 2026 को यानी 25 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे हॉर्मिन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे नीबा हॉस्पिटल में, और 26 सितंबर 2026 यानी 26 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रीम्स नाहरलगन में। इस मॉक एक्सरसाइज में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश की देखरेख में NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हेल्थ डिपार्टमेंट भाग लेंगे, क्योंकि इस दौरान भूकंप आने से, आग लगने से या अन्य आपदा में जिस प्रकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, उसी प्रकार से ही की जाएगी। इसीलिए सभी जनरल पब्लिक से ये अनुरोध करते हैं कि वे इस मॉक एक्सरसाइज को असली समझकर घबराए नहीं, और हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स और अटेंडेंट से भी निवेदन करते हैं कि वे हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत।

0: यह कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। जी हाँ, और गीत के बोल हैं मौसम का जादू और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने।
1: Let's start the fun!

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत दुबले गैर फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। आपको बता दो कि इसी के साथ ये कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s ए पर समाप्त होते हैं।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है। एचआईवी से
0: डरे दोस्तों आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस और उसके तुरंत बाद मिशमी कमांड और थाईकमती श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
3: This is Indu Chukwu. Today's headlines are, Prime Minister Narendra Modi interacts with Seva Yatris travelling from Vadnagar to Varanasi. Mr. Modi says service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs a meeting of the foreign ministers of the Forum for India-Pacific Islands Cooperation on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi congratulate Rosi Beena Devi, Satnam Singh and Salman Khan on Asian Games medals. Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal says India's maritime sector is a strong anchor for national progress. In a social media post on World Maritime Day today, Mr. Sonowal said the government is focused on infra modernization, policy reforms and a resolute seafarer first vision which is driving this growth forward. Foreign ministers of the G4 countries India, Brazil, Germany and Japan calls for early reform of the United Nations Security Council. In a joint ministerial statement, they emphasized that expansion of the council in both permanent and non-permanent categories is central to the reform. Special Commission 6.0 to focus on Swachhata, good governance and e-waste disposal. The campaign will run from the 2nd to the 31st of October. Government reduces basic

और नाम ले किन सतनाम सिंह नंग नाम ले सलमान खान का ब्रॉन्ज मेडल पे का दोनों का दाल आदत सेल था कर वंचा अलग पे का तो फिर किन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सन का अंजा अनिंग विकसित कांग्रेचुलेट कर का अंजा अनिंग पे का निंग तो फिर ही किन इंडिया का किन देश का मंग नहीं तय हो लावी इंसान बियो किसी किलेशन अंग दोनों का तकाई हित्ते का निंग दोनों का दाल आदत सेल था का और तो कमान किन लाइको सोंग अंसाम लग पहला तो किन कमान दंजाई जाय मांग या चुनिंग

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मिशमी कमांड और थाईकामती श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और इस सेगमेंट पर आपके लिए प्ले कर रहे हैं दुरंधर फिल्म से गीत। जी हाँ, और ये के बोल है गहरा हुआ और इस गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह, शाश्वत सचदीप, इरशाद कामिल और अरमान मालिक ने।

0: दोस्त आप सुन रहे थे ये गीत जैस्मिन सैंडलर्स और मधु बख्शी की आवाज में। आपको बता दूं कि इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग से पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे वांचो श्रोताओं का समाचार।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि सेप्टेम्बर निजा आली तारीक बृहस्पतिवार इपोहासों आजमबाजी पुनी मिनट मुए के विषम के वांचो जायका पां कपई पवन कावा पाए फाले वांका वांसु। अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पर्णे के अनि ईदू मिसमिली कन खनक नु अंक्या केमे हा पोनपो मन मा होनई खले चु ईदू मिसमी खनक नु अंगले स्टेट जो खनक नु अंकि मोमेका होले। गवर्नर राजा मा हालाक्या पोन पोहिया जमजंग एति केम होतों होचिंग फाई आसप अताई ले थम अंक्या बो मकेम पुपा चनवान तोखंग ए तायलाई ले हाइक्या विजडम हे कल्चर सेसन ले थम अंक्या चंगतै पुले वनन तोले चासन पो अंग हजा जाइले हालाक्या पोन पो मा खले यो हकवन अनक्या ए मा हेरिटेज बम पंगनु सिंगवान अंग आजों हयो बो मा मा आइडेंटिटी ओंग तो ngadong mongam la tai ngo hai o le wan le। Arunachal Pradesh State Cabinet tham e mani siang hia upper siang district ni ma zinga jau ha le tunga ta tai kya siang upper multipurpose project SUMP hanpak ma ke pre feasibility report PFR survey hia haja zu ma ke ma ma mo homo ko sat hanpak ma shu ho lamjun le koton angkyata empowered high level committee ho tham kamazing angkya ka ang to approval koton dawa कैबिनेट थम एजबो माम हजा प्रोजेक्ट बा मा जैता मा तोय होते खनंग मिसा थम अपुक अपौ किया चिचंग मजंग का अंगउ फो खोंग तो हजा डिस्ट्रिक्ट नि अंग के जैता खनक थम अबत अबल सत्ते किया बा मा वनजे एन तो ले हजा पीएफआर हा मेजंग मा ले जिंगे जौ ले थोलन पुकु मा हजा सियांग या अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट नि खनक नु फै मैले जांगजुत जांगजोई वनजे अंग किया का चु तीन फल बोम कैबिनेट थम ए हजा प्रोजेक्ट जिंग होमको सत मा हजा प्रोजेक्ट जिंग क्या ए पो पाकले सत अंक प्रोजेक्ट एफेक्टेड फैमिलीज पीएएफ खनक नु वेलफेयर हिया होम मोंगटे कंसुंगता आचों के होली अंग ए ला मोकसा अंक मोट ले चु वनजे तीन फल। अरुणाचल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AICOE होथम अंक्या होवांगथम अंगपा AI बूट कैंप एंड हैकेथन तुसो IIT गुवाहाटी मा मनी मखंग होवांग वांगले हजा तुसो स्टेट अंक्या कॉलेज लानुन संपो जासन पो हिया AI तो खाटखी क्या खनक थम अंग AI अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग हिया इनोवेशन निंक्या अपु अनोले को तोन अंके जुतो जीले सोंक्या चंगतेले बोमा नि बनहान पंगमा अंगोत आसो अंके हजा बूट कैंप टू सो मा पार्टिसिपेंट्स थम अंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग हिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग निंक्या होमकोसत होनजे अपुआ होल को ओतुन आई चंगपेले काहोमा अजंग बा हजा बूट कैंप हिया हैकेथन तुसो मा स्टेट मखंग ए हजा हानपक मा पुली बन अनत एप्लीकेशन हाय के मखंग ए पाइजन ले आकात के मिहक पुनी कैंडिडेट थम हकला तैले बोमा हजा कैंप तुसो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन ओथम ए IIT Guwahati hiya NIT Arunachal Pradesh hotham ni phai ashamatham ankya apua tongla angot asokya changte le। Arunachal Pradesh Health Minister Bayuram Wage e mani State Department of Health and Family Welfare hiya Selco Foundation hotham ni asham atham le mokosa ankya Energy for Health Arunachal Pradesh motto hoka dable हजा मोथो ए वन पर मैले चिहै चिदोंग ले चांगपुजुमा चु हेल्थ सेंटर हिंगहम हाइहम फो ए होमोट होमसट होती मा वाई मोकसा ले थोलन अंकेलम मा फोंग ए चांगतेले मोमा हजा Bama Health Minister Wage e haja motto munisen fan han pang ma state government to chiong kipak ngo le ashuk le jo CSR to kang e so opong an kya e mokasa ai chang te pu le vanese le pasigat gidi notko honui jang ma mani swach nadi swach bharat man ma shuoti Atsikatau ang songkya ta river cleanliness drive ma sibokrong shunu shoinam tokya agapon azok tons taku jo chila chisa lachok kunsung garbage po hunzang le avat le. Kahoma ajang baja drive to so pasikat honui makya Arunachal Pradesh University APU ang kya Department of Mass Communication hotam e Vande Matram sai ang kya hota punyiban ang pa anniversary zangpong akha akhan kya tsin ma ang wat aso kya chang kya. Itanagar Capital Region jang ma ani ansu hotam e anap kya sompoy agabaji makang e hansong agabaji kap hanpang ma ang ban ani ghanta band thamla taile mo mahaja band e tabi jau honoi to lamasai sen pangkya bo ma lam to gari ghora cha ham cha taile pangnu jangjang homo khosat zu to jau achan le sat le taile ansu otam aja ban line ngang not education zu makya ma ma moholi demand ju le tham kya chang taile bo ma ja ba ma nahar lagun sp nelam nega e haja band tham kya protester hi executive members tham ang talakya tuma wanchi ta alaya dan hayo aba pangnuholi control ma mokasa hai ole vanasele japan des mai zoom e aso apo lango taikya 2026 asian games hobo pat pan tu so ma india ang kya wushu bau mi roshibina devi naurem e ani Shako am Puzam KG category Sanda Bau Ma Ta Silver Medal Kable Bo Ma Chi To Final Ma China Des Shako Zhang Xiao E Latle. Tuso Ma Haja Bo Ma Ani Vai Indian Satnam Singh Hiya Salman Khan Ni E Chu Men's Double Schools Event Tilem Hampan Ma Bronze Medal Kabalatle Boma Kahoma Ajang Majibama President Draupadi Murmu Ya Prime Minister Narendra Modi Ni E Ani Medal Kapke Haja Indian Hobo Padmitam Anghoki Mongme Ngadan Ka Hole Kaho Iwai
2: HIV Kakli Bama Hektik Layang Sintheba Hayawai Honu Jangpu HIV kak halake kakli phaike jomai ke aji hokan holi chitai le ji pam ke haning ka kak mi to tap do ke mat kui makhang yang tap ba an to le honu ang ke hosa to le atai le parai le akha tham hai haya ka tam le ngo tong ke jak asap apong ke tam le sa ling ke mun khau mun song e zat ke ning ke khang e le man tai rai HIV kak tai da cha le pan no ko Hanning ke bama pongpan ma yangsin yang lap thai ba kak lak ring le amai le san lo lengo ang kapai HIV kak li thong ta ra Hanning ke bama atata ang apong no le ko kak tai da chale ban ke boma atata to ju ta chak ta kon haya ba ma pang nu sing se thai ba National AIDS Helpline 1097 ma tikto chok kai eya ka pang nu san pak ma le DHS Nahalagan Toke, Arunachal Pradesh State AIDS Control Society Chimakhang Ahile, Khai Kha Kha Kha Kha Chu Iwai.
0: दोस्तों भी आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं का समाचार ये आकाशवाणी का अनुन एफएम है जहां होती है दिल से दिल की बात और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी गीत दोस्तों आपके लिए पेश कर रहे हैं फ्रॉम द फिल्म बचना ए हसीनो और गीत के बोल है लकी बॉय और इस गीत को आवाज दी है सुनिधि चौहान ने

0: दोस्त आप सुन रहे थे ये गीत अदीब असलम की आवाज में। आपको बता दूं कि इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ईद मिश्री श्रोताओं का समाचार।
1: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं ईद मिश्री श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर चालापुची जैन हलू ई पी बरौली।

0: Arnold Jeffries atika chi imu ba ke ba kho no nga iga na chi po apo me le ne apo ngo lo ga kho ga ma u me bu khum be ji da ne governor me la ga da a ho ga siang ne upper siang district ma siang upper multipurpose project som dam ajitwe ma la ne do ne jo organa da la ne Arunachal Pradesh State Cabinet में बुने Empowered High Level Committee आज तक आप बता आ होगा आ महो दम आज तो चुप आतु सुगा मा रुबिया लाइ होगा चाहे प्रागुम बुदा ने कैबिनेट में लातिगा ने गवर्नमेंट में दम आज तक माने आपुआ लिंगा बोए अनाशा नंबर मुझे की आरोगा बता लातिगा बता आ होगा Arunachal AI Center of Excellence AI COE में बुनी ने हूँ निगे बने ए आई बोर्ड कैम तो ने हैकाथन है गुवाहाटी आई आई टी मने हका पगम बदा आ होगा Arunachal Pradesh माचे कॉलेज मा आजो आई तो आ तो ने इकिशा आयु अनब्रो ए आई ची पा आयु वचा अने कैम अखा ची मने हा कैम मा की बिहार में ए आई ची पा पे आ आसा ची गाव दा लगा आ कैंप माँ खेदा ने खिंचों इमो इमो में आमु हाथ लगा बमाचे कापनुचा कहते गए ने आ कैंप माँ आहेगला दा लाहोगा माहो आ कैंप है Arunachal Pradesh गवर्नमेंट माचे इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी जो ने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एआई सीओ ईगो आरोगा गए ने अखाने का जिदा लाहोगा लाइब्रेरी आजपो खामवालंबर में आजपो अतुचे चा मिने Library ma agutia me pea azo asaeba arwe arundagata ne Arunachal Pradesh Education Minister PD Sonam me puni Itanagar machi State Central Library mane drawe chipwa training program akaga machi chapa maho lagbata ahoga Library Directorate me ali aiwe program akanega chahe prabuda ne minister me lagbata ahoga Arunachal Pradesh Government माचे Health and Family Welfare Department में Selco Foundation को आरोगा गने अच्छा चा लाइट ना बामा हो तमा कौन जाने जगाओ है Energy for Health Arunachal Pradesh आज तेरा बच्चे Health Minister Biram वागे में बुनी है पहाड़ बने आ प्रोग्राम है CSR को कमाने आयोगा बता लाग बता आ होगा अतिका तो ने माची ते आखावे प्रोग्राम को कमाने इस यंग डिस्ट्रिक्ट पाशिगाट में खा Arunachal Pradesh यूनिवर्सिटी अपुमाचे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में गिदी नोट को सिबुक्रोन माचा फाने मांगा पॉइंट ता होटन ताइची अपलगा लादा ला होगा यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री में बांदे मात्रम आशे खाबा माउ मगा नुबा इनी एनावे लगा को कमाने अली अपगा चिता ला होगा पपुमपर डिस्ट्रिक्ट लापगे Arunachal Pradesh माचे होलाहोर डिस्ट्रिक्ट मा अपुन्या नया आयो सदा ने इटानगर मेटेरोलॉजिकल सेंटर माचे में ला होगा ने डिस्ट्रिक्ट अंतिका बागे मा है अपुन्या नया अपुन्या मया मुंबर अपुलिचे ओं सदा ला होगा जापान माचे एशियन गेम्स तारमगा माचे तारहु किजी याकु वसु एमगा मा एमानबेगा मु इंडिया माचे रोसी बिना देवी नावरम में चाइना माचे जांग जियायु गनेम कानी जीरो मने अनहित तो पाम सिल्वर मेडल चिंबादा आहोगा महो मैं आरंभ चे रात तो मने इंडिया माचे सतनाम सिंह ने सलमान खान अपला टीम में ब्रॉन्ज मेडल अनगा बचा है प्रांबुदा ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लाहेगा दा आहोगा ऐतन चे इडमिश्मी आहो अनिमाओ दबाए
1: HIVMB चिपो आसवे आउदा खागा
2: HIV हम बे है HIV गिला मिंग जी एयो घर दोगा गे कंधों ने जी दोगा गे HIV हम बे गिला इंजेक्शन ठापो बीजी ची ठा दोगा गे मने HIV की अली ओदा HIV हम बे गिला नानी में आ आगे मने कह दोगा ही
1: HIV हम बे है जापा जी गे आँखों में गे जापा हाथों गे आई ओदा ने आरंडो में ठोबा मने HIV हम बे की गुमी
2: अलीने HIV हैंबे गई जिंगाजी तमाको अतुसुवे अरुंदा खागा हैंबे गई ओबोचामा असागा गई गो अबो एंगो याबु इजीगा अतुचितोगा हिवे HIV हैंबे यीजी मी कबा असागा अलाजीजी तमाको अगुतेने अतुसुजी इचा HIV हैंबे चिपुमा इचिबु असावदा वोगा

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इदुम इसमें श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी का अरुणासम है, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं पद्मावत फिल्म से गीत, गीत के बोल हैं नैना वाले ने और इस गीत को आवाज दी है नीति मोहन ने।

तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसी गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारे दूसरे प्रसारण सभा के अंतिम मोड़ पर और वक्त हो चला है मेरे आपसे अलविदा कहने का। पर जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे थम्स अप श्रोताओं का समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे नीलम जी। दोस्तों हमारे से दूसरे प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक गैर अतः तथा तकनीकी अभियंता एच एम भूषण और अब मुझे यानी अपना आरजे साथ ही दंपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा डुबा रंगबलई सप्तेम्बर जिलिंग रंगख्रबलई तारीख पां हजनेरा खपड़ो पां आरो मचौरंगजा लुंगलांग रोकवांग कोनकामा माइरो अरुणाचल प्रदेश गवर्नर के टी पटनायक मचौसा इडु मिसमी नोंग केमे हा मो सकान नंग सेडवांग मईम नई इडु मिसमी नोंग म ग्रीटिंग्स कुद इर मो प तायवा लाग म सेरेंग मो र थुंगलाई प रमांग म सिली म कुर मो र गवर्नर रुंगलांग तथोक तनांग फान द अरो इर सु मो नंग नरी म कछु रंग मो र जराव जोचांग हे म रोग त प्रजु गवर्नर मामा हेरिटेज कमुंग नंग तग्रांग मोमन रोग त स्टेट कैबिनेट रो अरुणाचल प्रदेश वांग सियांग डिस्ट्रिक्ट नंग ने अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट नंग अपर सियांग मल्टीपर्पोज प्रोजेक्ट एस यू एम पी सुम मंगरो फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर्वे मनई इर कामवांग कामवांग नंग कामवांग पर रायता मंगरो इम्पावर्ड हाई लेवल कमिटी थांग रेजुलेशन पर मनीषा पास करित इर डिस्ट्रिक्ट अनई नंग अखाउ मैं अजो अजा रुंग कुपुर खाम स्टेट कैबिनेट रबु थलोक आरो कैबिनेट डेवलपमेंट लवान म तानरुंग फान तनांग सियांग हामने नांग मुंग म अहु रा तान मुंग मरो सिंग मुंग वांग मैं जाम रफान चेन रो रे सर्वे काम प हांति म सोम काम होहाय कुछी मरो कैबिनेट रतुंग रुंग फान त अफंग लग रंगसई राम ए आई बोट कैम नई हेकाथोन ऑफ अरुणाचल ए आई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर आई आई टी गुवाहाटी नंग मनीषा म तफंग स्टेट वंग कॉलेज लिवन सा मनई जराव जेचा हेंग म ए आई अवेयरनेस तयंग मनई कैपेसिटी बिल्डिंग रा इनोवेशन ताम तयंग म तान रो ए आई बोट कैम नई हेकाथोन पर तयंग र आरो तौसस निरखा एप्लीकेशंस लाप्तवांग मुनला वाबलयोंग खा कैंडिडेट्स थाक्त इर महेंग रो आई आई टी गुवाहाटी नंग रंगसई खा बूट कैम्प नई हेकाथोन नंग ट्रेनिंग लामचिंग रो क स्टेट काउंसिल ऑफ आई टी एंड ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट ऑफ आई टी एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नई आई आई टी गुवाहाटी रा एन आई टी अरुणाचल प्रदेश ताम कछु रौरे इर कैम्प तथोंग रो अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोना मनीषा ईटानगर नंग स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी नंग सनई राम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम पर तफंग प्रजु मसौ फान बैतनांग इर ट्रेनिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन नई डिजिटल रिसोर्सेस रा कम्युनिटी एंगेजमेंट कौ नंग लाइब्रेरीज लाइब्रेरियंस मैं कामवांग सोम नई सर्विसेस रूल्स रा डिजिटल नई पर्सनलिटी डेवलपमेंट ताम कौन कामवांग पोम्र मोरो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मोरो लाइब्रेरी डायरेक्टरेट रई रिसोर्स पर्सन मैं रा मैं करुम कुखा मई मैं कछु खाम मिनिस्टर पी डी सोना रन पहुत अरुणाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट नई सेल्को फाउंडेशन कछु रो रे इनर्जी फॉर हेल्थ अरुणाचल प्रदेश तथुंग कुत प्रोग्राम पर हेल्थ मिनिस्टर देजुराम वागे मनीषा तफंग इर प्रोग्राम रो पावर जोगजाची बलंग नंग हेल्थ सेंटर ताम नंग कामवा सोम प कयंग दल अची पर म डीजल तेल म रतुंग रो प तकोम चिंग वरो मिनिस्टर फान त परजु मिनिस्टर रंगो एनर्जी फॉर हेल्प सी एस आर कौलाम सही रो रे स्टेट सरकारी म कमन कम हान रो तकोम रंगो रो त ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पासघा नंग गेडी नॉर्को हानंग सिबो कोरोंग खम्बा नंग स्वच्छ नदी स्वच्छ भारत मंग नंग मनीषा मास रिवर क्लीनिनेस ड्राइव काम सोम त प्रजु असत असा तंग प 5.6 टोन्स लंबक तु मोरो त वंदे मातरम साई प तफंग त म पांग बायोंग सो थोर मंगरो मंगरो मास रिवर क्लीनिनेस ड्राइव प अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासघाट वंग मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट तथुंग त
आचुङ सुरकैवाङ कल्चर मिनिस्ट्री र वन्दे मातरम प्रोग्राम प जिलिङ सिराङ तयाङ र थलिङ अक्टोबर जिलिङ रङ्स न तारिक मा र रङ्तक तारिक आतङनाङ ग्रान्ड फिनाले ततुङछि खाम इरे कछे हेनाङ क्लिनिनेस काम्प सोमत ईटानगर वंग मेट्रोलॉजिकल सेंटर र पापुम परे डिस्ट्रिक्ट नांगम अर अरुणाचल प्रदेश नांग सेक रोखक डिस्ट्रिक्ट ताम येलो एलर्ट कुत अर इर डिस्ट्रिक्ट ताम जखुंग नांग अखाव हाताम नांग रामो राफी की जम रंग हाइसी मन अजांग फांद ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन आंसू र एडुकेशन कौनांग बलि भाई डिमांड छेउ रउ मछौसा ईटानगर कैपिटल रीजन आईसीआर नंग राना बंगा बाजी मारो रंगजा बंगा बाजी आतंक नंग कोंतार से नहीं राम बान त्रयंग रो बलंग नंग गरी तुंगलम तंतु मुरोक्त प्रजु नहलुन एसपी नेलम नेगा र हांती कयंग मंगरो आंसु महेंग मन एजुकेटिव मेंबर से म रोखेप तुम कैपिटल रीजन हानंग अखाउ हाताम नंग गरी कारवांग नई डेली एक्टिविटीज कामवांग प कतंग तु नंग म अरो सिंगमुंग वंग मई कारवांग डॉ कतंग तु मोरो तु जापान मुंग नंग आईची नागोया हानंग मचोबलंग एशियन गेम्स तथुंग प्रजु इंडिया वंग

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। इस तीसरे प्रसारण सभा में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। श्रोता मित्र, आज के इस सफर में मैं हूं आपके अपने हम सफर, आपकी रेडियो साथी नीलम। जी हाँ श्रोता मित्रों, इससे पहले हमारी दूसरी प्रसारण सभा के बेहतरीन सफर में आपके साथ बनी हुई थी आरजे दामपाक। स्टूडियो के आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए और मेरे परिचय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता मित्रों, इस वक्त शाम के 4:30 हो रहे हैं, तो चलिए अब बिना समय जाया किए आरंभ करते हैं हमारी तीसरे प्रसारण सभा दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के साथ।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

दोस्तों कहते हैं कठिन कुछ नहीं होता। किसी ने सच ही कहा है कि मुश्किलें वे सीढ़ियां हैं जिनसे सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ा जा सकता है। जीवन में कभी कभी चुनौतियां इतनी कठिन लगती हैं कि हम हार मानने के करीब होते हैं, परंतु यदि हम इन कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखें तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का समय आता है, लेकिन जो लोग अपनी आत्मशक्ति आत्मविश्वास को कायम रखते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। कठिनाइयों को पार करने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है और ये समझने की कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है।

आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। श्रोता मित्रों, समस्या, परेशानियां, कठिन परिस्थितियां, असफलताओं को देखने का नजरिया बदले तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां अवसर का रूप ले सकती हैं। आत्मविश्वास और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। असफलता अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है। हर चुनौती एक नई सीख लेकर आती है। साहस और धैर्य सफलता की कुंजी होती है। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत 10वीं फिल्म से, जिसे आवाज दी है सुखविंदर सिंह और तनिष्का सांघवी ने।

0: जी हाँ श्रोता मित्रों, इस गीत के साथ ही 10वीं फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे बारी बारी से समाचार। पहले आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और फिर सुन पाएंगे नोक्ते श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा पर धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। अरुणाचल प्रदेश के ऑल नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आंसू द्वारा शिक्षा से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर आज ईटानगर कैपिटल रीजन में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक 12 घंटे का बंद जारी। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर सशक्त उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी। समिति सियांग और अपर सियांग जिले में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से संबंधित प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर्वेक्षण और उससे जुड़ी गतिविधियों का मार्गदर्शन और समन्वय करेगी। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वीराम वागे ने एनर्जी फॉर हेल्थ अरुणाचल प्रदेश पहल का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के एआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस यानी एआई को का पहला 10 दिवसीय एआई बोट कैंप और हैथकथॉन आईआईटी गुवाहाटी में शुरू। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महीने भर चलने वाले वंदे मातरम कार्यक्रम

0: कार्यक्रम के तहत पासीघाट स्थित गिरी नटको में सिबो कोरोंग किनारे बड़े पैमाने पर नदी स्वच्छता अभियान आयोजित। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रणनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी सेवा ही मार्गदर्शन सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर में वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं ने पहचान अंतिम छोर तक पहुंचाने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा है कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती है जिनमें 25 करोड़ लोगों को गरीबों से बाहर निकलने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीति, सूचना और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: अरुणाचल प्रदेश के ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन आंसो द्वारा शिक्षा से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर आज ईटानगर कैपिटल रीजन में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक के 12 घंटे का बंद जारी है। बंद के दौरान कई स्थानों पर सड़क जाम करने और यातायात बाधित होने की घटनाएं सामने आई है। नाहरलगुन पुलिस अधीक्षक नीलाम नेगा ने प्रदर्शनकारियों और कार्यकारी सदस्यों से शांति बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रण में रखने की अपील की। हालांकि बंद के कारण राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सामान्य परिवहन और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुई, जिससे यात्रियों, कारोबारियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व्यूराम भागे ने एनर्जी फॉर हेल्थ अरुणाचल प्रदेश पहल का उद्घाटन किया। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार और सेक्लो फाउंडेशन की संयुक्त पहल है। इस पहल से बिजली आपूर्ति बाधित होने के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यशील बनाए रखने, डीजल और निर्भरता पर कम करने और अधिक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस पहल को पूरी तरह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सहयोग से लागू किया है, जिससे राज्य सरकार का वित्तीय बोझ कम हुआ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
2: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।

0: मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर सशक्त उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। ये समिति सियांग और अपर सियांग जिले में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी SUMP के संबंधित प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी PFR सर्वेक्षण और उससे जुड़ी गतिविधियों का मार्गदर्शन और समन्वय करेगी। मंत्रिमंडल ने इन दोनों जिलों के कुछ वर्गों की ओर से उठाई गई उन चिंताओं का भी संज्ञान लिया जिनमें कुछ निहित तत्वों द्वारा गलत सूचना और भ्रामक जानकारी फैलाए जाने की बात कही गई है। मंत्रिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि PFR सर्वेक्षण का शांतिपूर्ण संचालन सियांग और अपर सियांग जिले के निवासियों के साथ लगातार और सार्थक संवाद पर निर्भर करता है। मंत्रिमंडल ने जोर देकर कहा है कि संभावित परियोजना प्रभावित परिवारों यानी PAFs और स्थानीय समुदायों की आवास कल्याण और आकांक्षाएं पूरी करने की प्रक्रिया में केंद्र हमेशा ही निहित रहेगी। मंत्रिमंडल ने स्थानीय परंपराओं और सामुदायिक हितों का सम्मान करने वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। साथ ही विश्वास व्यक्त किया है कि संवाद के माध्यम से सर्वेक्षण को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी जो सियांग क्षेत्र और पूरे देश के व्यापक हित में हो। अरुणाचल प्रदेश के AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस यानी AIICO का पहला 10 दिवसीय AI बोट कैंप और हैकाथॉन IIT गुवाहाटी में शुरू हुआ जिसका उद्देश्य राज्य के कॉलेज विद्यार्थियों युवाओं और AI में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रगति जागरूकता क्षमता निर्माण और नवाचार को भी बढ़ावा देना है। इस बोट कैंप में प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञों के नेतृत्व में सत्र प्रायोगिक अभ्यास और मेंटरशिप की भी व्यवस्था की गई है। ये कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AIICO की पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है। ये इंडिया AI मैती की पहल से है और राज्य के काउंसिल ऑफ IT एंड ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इस आयोजन में IIT गुवाहाटी और NIT अरुणाचल के सहयोग द्वारा की जा रही है। शिक्षा मंत्री PD सोना ने कहा है कि जिस तरह पुस्तकालय लगातार आधुनिक रूप ले रहे हैं उसी तरह लाइब्रेरियंस की भूमिका भी अब अधिक व्यापक और गतिशील होती जा रही है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी अब केवल पुस्तकों और संग्रहों के प्रबंधक के तक सीमित नहीं रह गई, उनसे डिजिटल पहुंच सामुदायिक सहभागिता ज्ञान सेवाओं और आधुनिक पुस्तकालय प्रणालियों को सहयोग देने की भी अपेक्षा की जा रही है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महीने भर चलने वाले वंदे मातरम कार्यक्रम के तहत पासीघाट स्थित गृतिनोत्को में सीबो कोरोंग किनारे बड़े पैमाने पर नदी स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। स्वच्छ नदी स्वच्छ भारत विषय पर आयोजित इस अभियान के दौरान अनुमानित 5.6 टन कचरा नदी के किनारे से हटाया गया। अभियान का आयोजन अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया। यह पहल 7 से 9 अक्टूबर तक होने वाले भव्य समारोह की पूर्व गतिविधि के रूप में आयोजित की गई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए विश्व साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य ससीला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Indu Chukwu. Prime Minister Narendra Modi today said that service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said, Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle. Mr. Modi said, service is the highest, is the biggest driving force. He said, whether it is Prime Minister Kisan or the Prime Minister Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for the last mile delivery. The Prime Minister said, it is only when there is a spirit of service, 4 crore poor have received the permanent houses. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with a resolve to build a developed India. He said, everyone must vigorously advance the by

आया आकाशवाणी ईटानगर। जा योक किन्हीं बिली ना सितंबर दया हज़े किन्हीं योक किन्हीं सिरो यंग थर्सडे अमने जिमंग रोब मंगाचु ये जेंटु मुन्यं। जनाब योक किन्हीं बिली सितंबर दया याचु इडु मिस्मी कोन्यक कु कते के में हा जुकुनाब yang hen nap hen nak kau tiang to kita nok sahajak na kecuk mata berkuah idu mismi konyak cumi lami se mengkap jengkap ku Arunachal Governor Geti Parnayak i yang tertam kuah

श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से समाचार। पहले आपने सुना हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और अभी आप सुन रहे थे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि नुक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जारी है। आप जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आपको बता दें कि इस सफर में आपके साथ हैं आपके अपने रेडियो साथी नीलम। और इस वक्त हमारी स्टडी की घड़ी में घड़ी के अनुसार शाम के 5:09 हो रहे हैं। और इसी के साथ ही श्रोता मित्र, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का ये पहला गीत छिछोरे फिल्म से अंतरा मित्रा देव ने की नकास अजीज और अन्य साथियों की आवाजों में। श्रोता मित्र, आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतों के साथ एक प्रेरणादायक कहानी। तो कहानी है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पूरी दुनिया को हंसाए। वो इतना अच्छा हास्य कवि था कि किसी को भी हंसा सकता था, लेकिन उसकी यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे कई बार उलझनों का सामना करना पड़ता था। एक बार रमेश को एक बहुत बड़े शहर में हास्य कविता पढ़ने का निमंत्रण मिला। वो बहुत उत्साहित हुआ और तत्परता से शहर पहुंच गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। शहर के लोग उसकी कविताओं को समझ नहीं पा रहे थे। रमेश की कविताएं गांव की भाषा में लिखी थी, शहर के लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। रमेश निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो शहर की भाषा सीखने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ ही समय में उसने नई भाषा सीख ली। अब उसे अपनी कविताएं शहर की भाषा में पढ़ने की आवश्यकता थी। रमेश ने अपनी सभी कविताओं को शहर की भाषा में अनुवादित किया और फिर से सभा में जाकर अपनी कविताओं को पढ़ा। लोगों ने उसकी कविताओं को बहुत पसंद किया और सभी लोग हंसने लगे। तो श्रोता मित्र, आगे क्या होता है वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं मिमी फिल्म से ये गीत।

श्रोता मित्रों, चलिए अब रमेश की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रमेश की हास्य कविताओं ने सभी को हंसाया और उन्हें खुशी महसूस कराई। उसने खुद को और भी अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया। वो अब पूरी दुनिया को हंसाने का सपना देख रहा था। रमेश अपने जिंदगी में कई बार उलझनों का सामना करने पर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता। उसकी इसी प्रेरणा ने उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का हौसला दिया। उसकी कविताएं अब पूरी दुनिया में प्रसारित होने लगी। लोग उसकी कविताओं से खुश होते और उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करते। रमेश की कविताएं उनके चेहरे पर मुस्कान लाती थी। रमेश की ये कहानी श्रोता मित्र हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं का हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए, वजह इसके कि हम उनसे डरे। चाहे हमें कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें अपनी मुस्कान कभी नहीं खोनी चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और अपनी खुशी को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक बहुत ही जरूरी सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश भूकंप या अर्थक्वेक और मल्टी हैजर्ड इमरजेंसी सिनेरियो पर आधारित एक हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगन के कुछ अस्पतालों में। इस मॉक एक्सरसाइज में आपदा की तैयारी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और डिजास्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और अन्य इमरजेंसी एजेंसियों से कैसे संपर्क करना है या कैसे तालमेल रखना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ये मॉक एक्सरसाइज कब और कहां होंगे? ये होंगे 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे आरके मिशन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे हीमा हॉस्पिटल में, 25 सितंबर 2026 को यानी 25 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे हॉर्मिन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे नीबा हॉस्पिटल में, और 26 सितंबर 2026 यानी 26 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ट्रीम्स नाहरलगन में। इस मॉक एक्सरसाइज में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश की देखरेख में एनडीआरएफ, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हेल्थ डिपार्टमेंट भाग लेंगे, क्योंकि इस दौरान भूकंप आने से, आग लगने से या अन्य आपदा में जिस प्रकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, उसी प्रकार से ही की जाएगी। इसीलिए सभी जनरल पब्लिक से ये अनुरोध करते हैं कि वे इस मॉक एक्सरसाइज को असली समझकर घबराए नहीं, और हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स और अटेंडेंट से भी निवेदन करते हैं कि वे हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में जमीर फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत। तो इस गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दें कि आप कहीं जाएगा मत, हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो आप जुड़े रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Arkemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

श्रोता मित्रों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम शाम की महफिल का। आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्रों, आज भी हम कार्यक्रम में लेकर आए हैं कुछ चुनिंदे नगमे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वीर फिल्म से, जिसे आवाज दी है श्रेया घोषाल और रूप कुमार राठौड़ ने।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे रुस्तम फिल्म का एक खूबसूरत गीत अंकित तिवारी की आवाज में। जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक अंतराल।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक बहुत ही जरूरी सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश भूकंप या अर्थक्वेक और मल्टी हैजर्ड इमरजेंसी सिनेरियो पर आधारित एक हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगन के कुछ अस्पतालों में। इस मॉक एक्सरसाइज में आपदा की तैयारी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और डिजास्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और अन्य इमरजेंसी एजेंसियों से कैसे संपर्क करना है या कैसे तालमेल रखना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ये मॉक एक्सरसाइज कब और कहां होंगे? ये होंगे 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे आरके मिशन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे हीमा हॉस्पिटल में, 25 सितंबर 2026 को यानी 25 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे हॉर्मिन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे नीबा हॉस्पिटल में, और 26 सितंबर 2026 यानी 26 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ट्रीम्स नाहरलगन में। इस मॉक एक्सरसाइज में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश की देखरेख में एनडीआरएफ, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हेल्थ डिपार्टमेंट भाग लेंगे, क्योंकि इस दौरान भूकंप आने से, आग लगने से या अन्य आपदा में जिस प्रकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, उसी प्रकार से ही की जाएगी। इसीलिए सभी जनरल पब्लिक से ये अनुरोध करते हैं कि वे इस मॉक एक्सरसाइज को असली समझकर घबराए नहीं, और हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स और अटेंडेंट से भी निवेदन करते हैं कि वे हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम शाम की महफिल में पुनः स्वागत है। श्रोता मित्र, आइए अब सुनते हैं संगीतकार प्रीतम और गायक अरिजीत सिंह की बेहतरीन जोड़ी का ये खूबसूरत गीत एजेंट विनोद फिल्म से।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
3: गीत संगीत,
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में,
4: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, अभी आप आनंद ले रहे थे हक फिल्म से इस बेहद ही खूबसूरत गीत का, जिसे आवाज दी है अरमान खान ने। और आपको बता दें कि इसी के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर संपन्न होता है।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 6 बज रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है व्हाट्सएप अरुणाचल कार्यक्रम।

0: नमस्कार, व्हाट्सएप अरुणाचल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैम्बू डे के बारे में। और दर्शकों, 2026 का बैम्बू डे का इस बार का थीम है बैम्बू बियॉन्ड बॉर्डर। और इस पर हमारे साथ साथ देने के लिए हमारे स्टूडियो पर मौजूद है दो पैनलिस्ट, जिनका नाम है तपर तमिन, जो कि नोडल ऑफिसर है बैम्बू नेशनल बैम्बू मिशन के। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी है एक बहुत ही जानी मानी एंटरप्रेन्योर, जिनका नाम है तेची आना, जो कि पोमा बैम्बू इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो पर। और नेशनल बैम्बू डे को मनाने के लिए आप दोनों को स्पेशल लोगों को बुलाया है। तो इसी के साथ आज हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो प्रोग्राम होगा उसका पहला क्वेश्चन जा रहा है सर के साथ, क्योंकि सर एज ए नोडल ऑफिसर बैम्बू मिशन के साथ काम कर रहे हैं सर। और जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन होता है सबसे पहले यही आता है, क्योंकि अरुणाचल हमेशा बैम्बू के साथ जुड़ा हुआ है, उसके हेरिटेज में, उसके ट्रेडिशन में हमेशा बैम्बू यूज किया जाता है सर। तो किस तरह से अभी जो आप लोगों का जो मिशन है वो बैम्बू को किस तरह से इकोनॉमिक लेवल में अपॉर्चुनिटी और किन किन तरीके से अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से?
1: तो रिगार्डिंग नेशनल बैम्बू मिशन, इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम व्हिच हैज बीन ऑनगोइंग फॉर द लास्ट टू डेकेड्स।

0: सकते हैं, जैसे कि हमारा आज मैडम आया है जो हमको एक्सपीरियंस उनका जो प्रीवियस लास्ट 2 डेकेड्स में बैम्बू में काम किया हुआ है, तो शी विल ऑल्सो गिव हर रिप्लाई वेरी सुन. सो एट प्रेजेंट हमारे पास जो है टेक्निकली हम बोले जाएंगे तो वी गिव हैंड होल्डिंग अवेयरनेस किलिंग एंड जो उनको प्रोग्राम्स रखते हैं तो उसके हिसाब से बैम्बू कल्टिवेशन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ये सब स्कोप है.
1: सर जैसे कि आपने कहा कि फार्मिंग का बारे में जो बताया, वैसे तो हमारे यहाँ पर पहाड़ों पर हमेशा बैम्बूज तो अवेलेबल होते ही है, लेकिन स्कैसिटी ना हो उसके लिए फार्मिंग भी किया जाता है. वो उसका जो प्रोसीजर है अभी कितने परसेंटेज पर हमारे यहाँ के लोग उसका एग्रीकल्चर कर रहे हैं सर, बैम्बू का कल्टिवेशन कर रहे हैं?
0: प्रीवियसली बैम्बू जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब काम कर रहे थे तो उसमें उसका ट्रांसपोर्टेशन और जो फेलिंग का था उसका परमिट लगता था. तो राइट नाउ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि बैम्बू इज नो मोर कंसिडर्ड एज अ ट्री. सो लाइक एनी अदर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, इट कैन बी कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स ना. तो आप कई सारे फार्मर्स जो इंटरेस्टेड है इसका कल्टिवेशन, जो बाकी क्रॉप्स को उगाते हैं खेत करते हैं, उसी तरह आप नॉन फॉरेस्ट लैंड में उसका कल्टिवेशन कर सकते हैं. एंड रिगार्डिंग उसके जो स्पेशीज है, जो एरिया ऑफ कल्टिवेशन है, उसका प्रॉपरली हम अभी आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसको सिंस जनरेशन हमारा जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, इसके कल्टीवेशन करते आए हैं. तो सबके पास
1: ज्यादातर एरिया कौन सा वाला पड़ता है जहाँ पे कल्टीवेशन चलता है?
0: बैम्बू एरिया बेसिकली ऑल द डिस्ट्रिक्ट आई थिंक, ऑल द डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में. यस, नियर अबाउट अरुणाचल में ही 55 to 57 स्पेसिस है. सो आई थिंक इट्स फाउंड ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट. यस,
1: थैंक यू सो मच सर. मैम से मैं दूसरा क्वेश्चन रहेगा मैम कि यू एज एन एंटरप्रेन्योर, बैम्बू को तो जस्ट ए ट्रेडिशन हम लोग यूज करते थे, ऐसे यूज मतलब हर जगह पर यूज करते थे, लेकिन आपने इसको अलग ही एक लेवल दिया है, उसका एक जो माध्यम बनाया है अपने रिसोर्स का, या फिर जो भी आपके अंदर जो क्राफ्ट्समैन लोग काम करते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपने स्टार्ट किया है. सबसे पहला क्वेश्चन मैम ये है कि आपने बैम्बू को किस तरह से आइडिया लिया है और उसे एक यू नो यू एज एन एंटरप्रेन्योर उसको लेकर आप आगे बढ़े मैम?
2: हमारा अरुणाचल में बैम्बू अवेलेबल है जी. तो उसको हम लोग हमारे पुराना जमाने के लोग उसको बस अपना डेली यूटिलाइजेशन में जरूरत का अनुसार सिर्फ करता है, उसको बिजनेस का तौर पे लेके नहीं गया. जैसे कि आपको घर में कुछ हैंडीक्राफ्ट का समय सामान जरूरत पड़ गया तो बेरा बनाने के लिए, तो अपना यूटिलिटी डेली यूटिलिटी हम लोग चावल सफा करने के लिए भी उसको भी चाहिए, या फिर बास्केट वगैरह बनाने के. पहले पुराना जमाना में तो ये नहीं था ना, प्लेट वगैरह नहीं था, तो उसमें सिर्फ अपना घर मतलब डेली यूजेस के लिए सिर्फ अपने जरूरत का अनुसार ही बनाता था, अवेलेबल जो बिजनेस तौर पर नहीं लेके चलता था. तो इसलिए हमने सोचा कि हमारा अरुणाचल में बहुत सारा बैम्बू है, अवेलेबल है घर घर में, ट्राइबल कम्युनिटी का घर में ना, जितना भी कम्युनिटी लोग का साथ में हर घर घर में बैम्बू होता है. तो हमने इसलिए सोचा कि इतना सारा बैम्बू है, जीरो इन्वेस्टमेंट में हम ये बिजनेस शुरू कर सकता है, अपना ही पास बैम्बू है, क्यों ना हम उसको बिजनेस तौर पर लेके जाए और उसको आगे बढ़ाए.
1: मैम इसका स्ट्रगल आपका किस तरह का था, क्योंकि बैम्बू एक बहुत बेसिक चीज है अरुणाचल पर, और क्योंकि उसको एक सही दर्जा देने के लिए एक स्ट्रगल लगता है मैम, उसको आइडियाज लगता है, वो कैसा था मैम, कहाँ से शुरू हुआ मैम?
2: देखिए ऐसे है कि हमारा अभी रिसेंटली बताया कि ना, अभी मैंने बताया हमारा यहाँ जितना भी बूढ़ा बूढ़ी लोग है ना, वो लोग शाम सुबह के बैठ के अपना हैंडीक्राफ्ट काम करता है ना, लर्ज में लेके नहीं, छोटा छोटा काम करता है. तो हमको ऐसे लगा कि हैंडीक्राफ्ट काम जो हैंडमेड चीज जो बहुत ही डिमांडेड है, धीरे धीरे करके ये चीज गायब भी हो रहा है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि उसको क्यों ना प्रिजर्व करे, प्रिजर्व भी लेके जाए, उसको बिजनेस तौर पे भी लेके जाए, लार्ज स्केल में हम लेके जाने से काफी अच्छा रहेगा, ये मेरा सोच था. तो इसलिए हमने उसको ये बैम्बू को चॉइस किया, और बैम्बू का साथ ही मतलब करीबन 16-17 ईयर से ये काम ही कर रहा है, काफी लोगों को स्किल ट्रेनिंग दिया, काफी एक्सपोर्ट भी किया.
1: मैम आपने शुरू तो कर लिया, लेकिन उसके लिए जो यू नो फाइनेंशली जो आप लोगों को मदद चाहिए होती है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपने इस तरह का मदद लिया मैम?
2: 2009 को हमने शुरू किया ये बैम्बू काम को, तो उसमें पहले से तो हम थोड़ा थोड़ा हैंडीक्राफ्ट काम कर रहा था खुद अपना हिसाब से, जैसे कि हम गांव गांव में जाएगा कलेक्शन करेगा, उद्यम खुरदुम बोलते हैं ना, उधमपुर।

0: तुम कलेक्शन करेगा, फिर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग का होता है तो ना, वहाँ का जैसे कि ट्रप चांगलंग का बेम्बू को उसका क्राफ्ट काम करने वाला उसका डिजाइन अलग है, हमारा पपूम पारे अरुणाचल प्रदेश में जो है पपूम पारे है ना उसका अलग है क्राफ्ट बनाने वाला ना, तो हमने सोचा ये लोग को क्यों कलेक्शन करके, ये लोग अपना अपना वे में बनाता है तो हम उन लोगों को सेम वही वेवन चीज को वही मतलब प्रोडक्शन जो उन लोग बन रहा है उसको कुछ दूसरा डिजाइन डेवलप कर सकने से ठीक होगा वही सोचा है हम। ऐसे करके हम काफी डेवलप भी किया, नया नया डिजाइन लेके आया उन लोग का खेन एंड बेम्बू को का बस वेवन करता है ना, पट्टी बनाता है, बास्केट बनाता है, कुछ कुछ बनाता है, मोरा वगैरह बनाता है, तो हम उसके हद के कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाने शुरू किया।
1: मतलब आप डिस्ट्रिक्ट पर घूमे, वहाँ के डिजाइन लोगों को आपने
0: कलेक्शन किया
1: और उसी को लेकर आपने अपने क्राफ्ट्समैनशिप पर उसे काम करवाया। और आपके अंदर अभी फिलहाल कितने लोग काम कर रहे हैं?
0: पहले कोविड से पहले मेरा बहुत ज़्यादा था, कोविड के बाद फिर मेरा पहले जितना भी आर्टिशन था वेवर भी था आर्टिशन भी था ना, तो उसमें ऐसे हो
1: सब
0: गया
1: अरुणाचल के।
0: हाँ, पहले आसाम से भी मेरा साथ बहुत सारा जन था, तो अभी अरुणाचल का है अभी 12 जन है। तो हम मेरा बिजनेस जो हम मेरा काम जो ऐसे है कि हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो क्राफ्ट कैसे बनता है, बेम्बू से कैसे बनता है, केन नॉट ओनली क्राफ्ट नॉट ओनली बेम्बू हम केन का भी यूज करते हैं, तो उसको हम ट्रेनिंग सिखाते हैं। अगर हमको लर्ज में स्किल में ऑर्डर मिल गया है तो हम क्या करता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में मेरा वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। अभी बहुत कोटेज इंडस्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम में हम काम करते हैं, काफी जन को हमने ट्रेनिंग दिया तो हमको पता लग जाता है कि वो क्राफ्ट्समैन को वो सामान को भेज, अगर हमको ऑर्डर मिल जाने से हम ऐसे करते हैं लेंथ ब्रेथ डायमेंशन हम भेज देता है, आप चलो 100 पीस बना लो, आप 100 पीस बना लो, ऐसे करके हम ऑर्डर डिवाइड करके ऑर्डर दे देते हैं। तो हम बाय बैक पॉलिसी कर पहले हम ट्रेनिंग देता है, उसके बाद उन लोगों को फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमको ऑर्डर मिलने से ऐसे करते हैं।
1: मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो मेरा क्वेश्चन था वो आपको कभी मदद मिला मैम, जिसको जिसे आप एक्सपांड कर सके अपने बिजनेस को मैम?
0: हाँ वही हम बता रहे 2009 में मेरा इंडस्ट्री मतलब उद्घाटन हुआ था, तो 2009 में हमारा राजपाल जी जय सिंह था, तो पहले से हम लोग क्राफ्ट काम थोड़ा अपना घर पे कर रहा था, तो एक दिन वो लोग हमारा पोमा बस्ती में विजिट करने आया था, ब्लेज विजिट करने आया था, तो लकीली मैंने मेरा घर में विजिट करने आया तो उन्होंने देखा, तो मेरा घर में छोटा सा घर था तो उसमें बहुत ज्यादा क्राफ्ट चीज हम पहले से कलेक्शन करके मतलब सेल आउट करता था, आर्टिशन का घर में जाएगा और कलेक्शन करेगा फिर हम सेल करता था ना, एग्जीबिशन वगैरह गुवाहाटी वगैरह दिल्ली वगैरह जाता था ना, तो वो प्रोडक्शन घर में अवेलेबल था थोड़ा ना, तो वो सर और मैडम जो मैम जो आया था तो उन्होंने देख लिया तो बोला कि सच में अरुणाचल में इतना सारा बेम्बू है जी, ये बेम्बू को क्यों ये लोग हर घर में बना के बड़ा लार्ज स्केल में ले जा सकता है, तो उन लोग बोला कि अना मैडम आप जो एक इंडस्ट्री खोल लो ना बोला, तो हम लोग कैसे इंडस्ट्री, मेरे साथ आइडिया नहीं था, सिर्फ हम तो छोटा सा स्केल में ना बिको 100 रुपये का करी तो 200 रुपये का बिको ना, वही मोटिव था ऑब्जेक्टिव था ऐसे इंडस्ट्री
1: करो
0: वही था, शॉर्ट अर्निंग में लार्ज स्केल में लेके नहीं गया था, ऐसे ही प्लान था, ऐसे बड़ा आइडिया नहीं था। तो जय सिंह सर ने मैम दोनों जो अनुपमा मैडम दोनों जो आके तो बोला है कि अना मैडम तो आप हम लोग आपको मदद करेगा, आप लोग उसको आप सिर्फ मत करो, गांव में जितना महिला लोग ऐसे भरा हुआ है उन लोगों को भी साथ में लेके चलो, तो हम लोग क्यों ना यहाँ में एक सेंटर बना देगा आपको सबको इकट्ठा करके आप उसमें काम कराए बताए, तो उन्होंने कुछ मशीन प्रोवाइड किया था अगरबत्ती स्टिक मशीन और फिर एक सेंटर बना दिया 2009 में 22 लैक्स का ये था प्रिंसिपल अमाउंट था, तो उन लोग ने हम लोगों को दिया तो वहाँ से शुरू किया, तो उसके बाद हम 2009 से मेरा काफी काम अच्छा मेरा काम को देखते हुए एनएसी जो एक दिन विजिट करने आया शिलोंग वाला टीम जो, तो उन लोग विजिट करके फिर और एक तो सेंटर उन लोग नया सेंटर एक दिया है अभी दो टू टाइम्स मिला मैंने।
1: दर्शकों ये तो था आना मैम के बारे में, उनके जर्नी के बारे में हमने जाना है। चलिए अब आपके सामने में एक रिपोर्ट पेश होगा जो बैम्बू डे के बारे में आप सभी को बताएगा।
2: हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है, ये दिन बैम्बू के महत्व और इसके विभिन्न उपयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश जैसे

0: ट्राइबल स्टेट में बैम्बू का विशेष महत्व है। यहाँ बैम्बू का इस्तेमाल ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप और रोजमर्रा की जरूरतों में लंबे समय से किया जाता रहा है। इससे हैंडीक्राफ्ट्स, फर्नीचर, ज्वेलरी और किचनवेयर के अलावा बैम्बू पिकल्स और फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स जैसे प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं। स्टेट बैम्बू मिशन के नोडल ऑफिसर के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में करीब 50 से 57 बैम्बू स्पीशीज 15 जनेरा के अंतर्गत पाई जाती हैं। इनमें बैम्बूसा तुल्डा, बैम्बूसा बल्कुआ, बैम्बूसा न्यूटन्स, डेंड्रोकैलमस हैमिल्टोनी, फाइलोस्टैचस बैम्बूसॉइडीज और फाइलोस्टैचस मैनी शामिल है। नोडल ऑफिसर के अनुसार ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, नमसाई, तेजू, लोअर सुबानसिरी, ईस्ट कामेंग और पक्के केसंग प्रमुख बैम्बू प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। स्टेट बैम्बू मिशन के तहत ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, प्लांटेशन एंड नर्सरी रेजिंग, फर्नीचर यूनिट, बैम्बू हार्ट और अगरबत्ती यूनिट जैसी एक्टिविटीज की जा रही है। मिशन के तहत 150 फार्मर्स को ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम देने का लक्ष्य रखा गया है। अरुणाचल में बैम्बू ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप और लाइवलीहुड से जुड़ा महत्वपूर्ण रिसोर्स है।
1: सर, जैसे कि मैम से तो हमने बात कर लिया कि हैंडीक्राफ्ट्स या जो भी क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो अरुणाचल के जो डिपार्टमेंट्स है, जो मिशन नेशनल बैम्बू मिशन के जो डिपार्टमेंट्स है उनकी तरफ से और क्या क्या, क्योंकि अभी मॉडर्न हो चुका है, क्योंकि बैम्बू को लेकर सिर्फ पहले का ट्रेडिशन के हिसाब से सिर्फ नहीं चल रहा है सर। अभी बहुत ऐसा भी होता है कि अभी लोग बैम्बू के घर भी बना रहे हैं, लेकिन बहुत इनोवेटिव आइडिया की तरह से जो आर्किटेक्चरल वो है, मतलब एवोल्यूशन है, वो किस तरह से जा रहा है और सर गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से उन्हें हेल्प मिल रहा है मैम सर?
2: सो इन दिस रिगार्ड मेरा पास जो जितना नॉलेज है काफी एडवांस हो चुका है इन टर्म्स ऑफ बैम्बू रिलेटेड। बियॉन्ड बैम्बू कल्टीवेशन एंड जो हम लोग पहले फॉरेजिंग करता था फॉर वुड एंड फ्यूल हमारा ट्राइबल सोसाइटी में, अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस नंबर्स ऑफ यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स दे आर कमिंग अप कि उनका जो है आर्किटेक्चर जो सिविल वर्क्स वगैरह में, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, उसका जो लेमिनेशन बोल्ट्स, डोर पैनल्स, विंडोज, एवरीथिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज कमिंग अप। एंड ऑल्सो बैम्बू का जो एडिबल जो बैम्बू शूट होता है उसका पिकलिंग होता है, उसका वो टोफीज बनता है, कई सारे चीज है जिसको अभी जो यंगर जनरेशन से टेकअप कर रहे हैं ना। एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो लाइक हमारे जो मैडम है जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह बनाते हैं, वुमेन का जो आपका जो ये सब इयर रिंग्स ना, माला वगैरह बनाते हैं, जहाँ ज्वेलरी ये सब बनाते हैं, तो इन दिस रिगार्ड अरुणाचल अभी काफी एडवांस हो चुका है और गवर्नमेंट ऑल्सो दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग इन मेनी वेज कि अगरबत्ती का फैक्ट्री सेट करना है, फर्नीचर बनाना है, उसके लिए इंसेंटिव दिया जाता है उनको, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी रिलेटेड ये होता है उनको दिया जाता है, फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस 100% सब्सिडी दिया जाता है, एंड फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लाइक मैडम जो यहाँ बैठी है उनको से 50% जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स के हिसाब से उनको सपोर्ट मिलता है।
1: सर, आपके आइडिया से जैसे कि मैम एक बैम्बू रिलेटेड एक एज एन बिजनेस वुमेन वो काम कर रही है, इन्हीं तरह की और भी कई है यहाँ पर महिलाएं या फिर जो भी लोग हैं जो सिर्फ बैम्बू को लेकर काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नए स्टार्ट कर?
2: यस, वेरी रिसेंटली लाइक जो आई हैव कम अप विद मेनी पर्संस जो ऑलरेडी विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो दे आर डूइंग क्वाइट वेल, जो स्पेशली जो बाहर से मैनेजमेंट वगैरह करके आए हैं ना स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अभी गवर्नमेंट जॉब और सर्विसेज के लिए आजकल नहीं जाता है, दे गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, तो वैसे करके आई हैव मेट मेनी पर्संस जो बैम्बू में ऑलरेडी काम कर रहा है, बट लेटर ऑन लेट्स सी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि उन लोग किस लेवल तक उन लोग का जो एडवांस होता है ना।
1: मैम, हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो अभी किस तरह से आप लोगों का जो फैक्ट्री में जो काम हो रहा है, क्या क्या बनाता है और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है? और मैम, एक चीज मैंने ये भी गौर किया है कि हथकरघा मेला जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है हर साल डीके कन्वेंशन हॉल पर, वहां पर मेला लगाया जाता है, उससे क्या हेल्पफुल मिल रहा हेल्प हो रहा है आपके हैंडीक्राफ्ट्स जो जितने भी एम्प्लॉइज है उन लोगों को?
3: हम लोग का साल भर यहाँ मेला एवरी 15 डेज का बाद यहाँ अभी मेला लगता है, हमारा टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है, तो हम लोग को उसको मार्केटिंग सपोर्टिंग मिलता है, अपना सामान अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का हमको मौका मिलता है, सेल हमको सामान सेल आउट करने के लिए मौका मिलता है।
1: उस पर मतलब अच्छी तरह से सेल आउट हो जाता है।
3: हाँ, हो जाता है,
1: लोग ले लेते
3: हैं। हाँ, हाँ, और हम लोग यहाँ स्ट्रिप ने कहा बाहर भी जाते हैं, दिल्ली मुंबई सरस मेला हम लोग मुंबई में भी जाता है, दूसरा कंट्री में भी जाता है, हम लोग भूटान जाता है, नेपाल जाता है ऐसे का।
1: मैम क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं आपके फैक्ट्री के इंडस्ट्रीज की तरफ से, क्या क्या बनाते हैं बैम्बू केन्स से जो कि एक्सपोर्ट होता है बाहर भी?
3: बैम्बू 2021 में बैम्बू का हमने एक्सपोर्ट किया है दिल्ली एक टीम का साथ में। पेन, बैम्बू पेन ओनली सेमी पिनिस रिफिल ने डाल के 10,000 पीस हमने सप्लाई किया है। ट्रू इंडियन बायर, मेरा साथ उस समय में लाइसेंस नहीं था, एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं होने का कारण से उस समय में, अभी तो अपना ऑनलाइन में बना सकता है, उस समय में नहीं था, सॉरी नॉट 2001 2020 ऐसे को था ना। तो अभी 2022 के बाद में ऑनलाइन से सिस्टम शुरू हो गया, तो अभी हम लोग खुद बना सकते हैं। उस समय बहुत कठिन था बनाने के लिए, तो हम ट्रू इंडियन बायर, एक हम लोग का एक दिल्ली में टीम है इंडियन बायर, तो हम लोग उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीट एक होता है, हम लोग को बुलाया जाता है, ईयर में 2 times बुलाया था हम लोग को ग्रेटर नोएडा में दिल्ली में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। ईपीसीएच बोल के एक डिपार्टमेंट एक है टीम, जो एक प्राइवेट कंपनी है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग कॉरपोरेशन काउंसिल वर्क है, गुवाहाटी में टीम है, दिल्ली में टीम है ना, तो बीच बीच में हम लोग को एग्जीबिशन के लिए बुलाता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। इसमें हम लोग को अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ना, तो हम लोग ऐसे करते हैं, जब भी हमारा प्रोडक्ट हम लेके जाते हैं, मेरा तो सिलेक्ट हो ही जाता है, हम ही उनका प्रोडक्ट देने नहीं सकता है, तो उन लोग डिमांड ज्यादा है ना, तो उन लोग 1-2,000 पीस नहीं बोलता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000, तो ऐसे होता है, तो इसलिए हमने जैसे तैसे करके 10,000 पीस मैंने सप्लाई किया यूरोप में। ओनली मैंने डायरेक्ट उन लोगों को डायरेक्ट कनेक्शन नहीं किया, जो टीम के साथ में मिलके किया, तो वो एक सक्सेस हुआ। फिर भूटान में बेम्बू कंटेनर होता है अगरबत्ती स्टिक रखने के लिए, तो राइचल वाला,
1: हाँ जी हाँ जी,
3: तो सिर्फ उसको वो ये बनाना पड़ा अगरबत्ती रखने के लिए, तो वो 5,000 पीस थिम्पू में सप्लाई किया हमने 2024 में, ऐसे किया 5,000, वो भी सक्सेस हुआ। तो अभी फिलहाल ऐसे अपना लोकल मार्केट में तो है ही है, हमारा प्रोडक्ट तो चलता ही है, वही आजकल का जमाना में मैन पावर मिलना मुश्किल है, और हम मशीन का काम इतना हम उसको फोकसिंग नहीं करता है, मेरा ज्यादातर हैंडमेड प्रिजर्वेशन का मोटिव मेरा ज्यादा है। मशीन खराब हो जाएगा, आदमी का हाथ कला, हाथ का जो कला है वो कभी खराब नहीं होगा, कभी नहीं मिटेगा, तो उसको हम विश्वास करके चलते हैं। तो ज्यादातर हम, मेरा इंडस्ट्री में छोटा सा इंडस्ट्री है, फिर भी हम उसमें इतना ज्यादा मशीन यूज नहीं करते हैं, हम ज्यादातर हाथ हैंडमेड काम को हम यूज करते हैं, उसका ऊपर ही हम फोकसिंग करते हैं,
1: क्वालिटी पर आप ज्यादा फोकस करते हैं,
3: कम बनाओ लेकिन क्वालिटी हो, और दोबारा वो सामान कोई ना बन सके,
1: जी जी जी, ताजमहल की तरह,
3: ताजमहल का बन सके, लेकिन वो हमारा वहाँ आके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा तब जाके
1: ओके
3: यू कैन मेक।
1: तो स्किल डेवलपमेंट जो आप जिस तरह से आप कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से स्किल डेवलपमेंट को बहुत मान्यता दी गई है, और मैम मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि आपने कहा यूरोप भूटान इंटरनेशनल की तरफ से भी आपको डिमांड्स आ रहे हैं, तो वहां से कुछ रिकग्निशन मिला मैम कि मतलब यू नो एज एन अवार्ड, या फिर आप इतना अच्छा काम कर रहे सस्टेनेबल यू नो बैम्बूज को लेकर आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रही, उसको लेकर कभी अवार्ड्स या फिर आपको कहीं से मान्यता मिला मैम?
3: हाँ, थैंक यू। यह कोई मुझे पता नहीं, ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग मुझे जी, पता जी, नहीं जी. होता कि यह मुझे कहाँ से अवार्ड मिला ना।
1: हाँ जी,
3: तो 2016-17 में हमको नॉर्थ ईस्ट इंटरप्रेनर अवार्ड मिला था,
1: नॉर्थ ईस्ट
3: बैम्बू सब्जेक्ट में
1: जी, जी,
3: मिला था दिल्ली में,
1: ऑल ओवर इंडिया,
3: ऑल ओवर।
1: ओके,
3: तो उसमें अरुणाचल के लिए मुझे सिलेक्ट हुआ था, सेवन सिस्टर में सेवन नॉर्थ ईस्ट में ना, तो उसमें से अरुणाचल में मुझे सिलेक्ट किया था। तो फिर उसके बाद फिर एक तो भारत रत्न बोल के
1: एक भारत रत्न,
3: भारत रत्न
1: उसका भी अवार्ड
3: मिला, और बहुत सारा छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, और फिर हम एक इंपैनल एनजीओ भी है, ये टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट का तरफ से हम इंपैनल भी है, तो हम लोग का अरुणाचल से हम ही एक तो है वहाँ में इंपैनल है।
1: तो ओके, तो मतलब ये अवार्डों से आपको नवाजा जा चुका है
3: मैम
1: जी, तो अभी तो मतलब आपका जो इंडस्ट्री है बहुत आगे बढ़ ही चुका है ना मैम, तो क्या आप लोग सिर्फ हैंडीक्राफ्ट को ही नहीं, और क्या जैसे कि कंस्ट्रक्शन, मैंने सर को एक क्वेश्चन पूछा था, कंस्ट्रक्शन लेवल पर भी आपके कोई ऐसे एम्प्लॉय है जो घर का भी यू नो डेकोरेशन या फिर वॉल्स या जो फ्लोर्स होते हैं आजकल बैम्बू का लोग बहुत मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल सस्टेनेबिलिटी पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि टाइल्स और सीमेंट, कोई बम्बू का घर भी इनोवेटिव तरीके से बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई एम्प्लॉई होता है सर मैम आपके वहाँ पे?
3: हमने अभी बताया, हम अभी तक हम टेक्नोलॉजी जो नया लेटेस्ट मशीनरीज वगैरह वो काम हमने किया नहीं, मैं ज्यादातर हैंडमेड का ऊपर डिपेंड करता है, तो घर का अंदर में जो पैनलिंग काम होता है ना बेम्बू, वो काम तो हमने किया और कर भी रहा है, करने वाला हमारा पास है काम करने वाला।
1: ओके, थैंक यू सो मच मैम। सर मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये रहेगा कि मतलब एक जैसे कि मैम तो स्टार्ट ने तो किया ही है इस बिजनेस को लेकर, आपने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्या हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि एक जीने का जो यू नो लाइवलीहुड को की हम बात करें, तो क्या बैम्बू को एक लाइवलीहुड का एक जरिया बना सकते हैं सर? किस तरह का अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट की तरफ से है, स्कीम्स है, या फिर स्किल डेवलपमेंट से क्या क्या चीज कर सकते हैं जो कि अपने घर को चला सकते हैं, इस तरह का कोई आइडिया?
2: जो बैम्बू रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, इट्स वेरी मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना, पहले भी मैंने बताया, तो बैम्बू अपार्ट फ्रॉम कल्टीवेशन, अब कई सारे जो एनजीओस एफपीओस होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है, उनका एक वो इकोसिस्टम बन जाता है कि अपार्ट फ्रॉम कल्टीवेशन उन लोग जो कल्टीवेशन करने के बाद जो हार्वेस्ट करके अगर उसका प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वी आर डेवलपिंग बैम्बू हट्स की एक कलेक्शन सेंटर जहां कलेक्ट किया जाएगा मेटेरियल्स को, देन वी विल गो फॉर सप्लाइंग की जहां डिमांड है ना, मार्केट जहां डिमांड है, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी काफी इंस्ट्रक्शंस आया है कि व्हाटएवर प्रोडक्शंस जो हमारा यहां में स्पेसिफिक जो स्पेसिस बैम्बूज जो नोटिस में मिलता है उसका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो, उसके क्वांटिटीज को हमको साइजेबल अमाउंट में कितना सप्लाई कर सकता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमको डाटा कलेक्शन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एंड वी आर ऑन द वे कि हम ये सब चीज को मैपिंग कर पाए, सारे जो पोटेंशियल है टैप करके हमारे जो ऑल ओवर इंडिया कहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अरुणाचल का प्रोडक्शन को बैम्बूज वेयर नॉन ग्रोइंग जो बैम्बू स्टेट्स है अगर उनका डिमांड है तो वहां भी हम कैसे पहुंचाए, तो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि हम बैम्बू कहाँ से होता है। बेसिकली अभी जो हब है नोटिस में आसाम इज वन ऑफ इट, आसाम त्रिपुरा इज डूइंग वेल, आसाम से काफी सारा जो सीडलिंग्स वगैरह है या फिर जो हार्वेस्टेड मैच्योर बैम्बू से वो सारे चीज एक्सपोर्ट होता है, सो इवेंचुअली इन द सेम वे अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग हमारे जो यूथ्स है फेलो लैंड्स जो ऐसे पड़ा हुआ है वहां बैम्बू कल्टीवेशन कर सकते हैं, उसका हार्वेस्टिंग करके आप उसका जब मैच्योर हो जाता है उसको सेल कर सकते हैं, देन प्रोसेसिंग में भी जा सकते हैं, प्रोसेसिंग में अपार्ट फ्रॉम दिस सिविल वर्क्स दिस टाइल्स एंड ऑल आपका जो अभी रिक्वायरमेंट है जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल, ऑनलाइन में भी आप लोग कई सारा देखता होगा एक्टिवेटेड चारकोल काफी डिमांड है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है
1: ये बैम्बू से होता है सर,
2: कर सकते हैं उसका एक प्रोसेस होता है पायरोलाइसिस करके, तो उसके हिसाब से वो आप बना के ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, लोकल यहाँ मार्केट में भी काफी डिमांड होता है उसका।
1: सर अगर बैम्बू का कल्टिवेशन या हार्वेस्टिंग की बात करें तो डिफोरेस्टेशन का कोई चांसेस तो नहीं होता?
2: नो, रीप्लांटिंग बैम्बू आप जैसे बताया मैंने पहले कि इट्स नॉट नॉर्मल कंसिडर्ड एज अ ट्री, एक ग्रास है, तो बैम्बू इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास, तो उसका रिकॉर्डेड टाइम ये है कि आप इन सेंटीमीटर्स इन अ डे आप 20-25 सेंटीमीटर भी ग्रो कर सकते
1: हैं। अच्छा, बैम्बू
2: वेरी रैपिडली, तो जितना आप हार्वेस्ट करते जाएंगे इफ यू टेक केयर ऑफ इट वो आप उसको साल बर साल उसको हार्वेस्ट करके उसका ग्रोथ कभी कम नहीं होगा।
1: जी
2: ऐसा है।
1: Okay. और सर हमने देखा है कि जैसे कि नागालैंड, जैसे आपने बताया मणिपुर, यहाँ पर बैम्बू को लेकर बहुत अच्छी अच्छी तरीके से आजकल यूटिलाइज किया जाता है, बर्तन या चम्मच इस तरह की चीजें भी आजकल यूज करते हैं, तो इस तरह का जो हमारे गवर्नमेंट जैसे कि हमारे सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स है वो भी बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, नागालैंड मणिपुर इनके साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन भी है मिजोराम, तो वहां से कुछ नया आइडियाज गवर्नमेंट की तरफ से और आया है कि इन्हें जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको दे कि आप भी इस तरह का प्रोडक्शन करें, इस तरह का कोई आइडियाज?
2: इस तरह का आइडियाज उसके लिए हम सरकार की तरफ से काफी प्रोग्राम्स रखा जाता है जहां हम उनको फार्मर्स को हैंड होल्डिंग करेंगे कि उनको सिखाया जाता है कि आप बैम्बू से क्या कर सकते हैं, आप उसका इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं ना. सो इन द प्रोसेस ये ऑनगोइंग है, पहले भी होता रहा है, अभी भी हम भी हमारा डिपार्टमेंट

0: भी टेकअप करेंगे तो सो मैडम जैसे जो एंटरप्रेन्योर है हम उनको इन्वाइट करते हैं. सो अभी वी हैव जस्ट टेकन द इनिशियल स्टेप कि मतलब हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वी होप फॉर द बेस्ट, आगे जाके काफी बेनिफिट होने वाला है,
1: नए चीज और इवॉल्व हो जाएगी. तो थैंक यू सो मच आप दोनों पैनलिस्ट पर आए, और आप दोनों का जो ज्ञान है उससे शायद हमारे जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं उन वो भी इंस्पायर होंगे और नई चीजें आप दोनों की तरह ही करना स्टार्ट करेंगे. और थैंक यू सो मच मैम, आपका जो इंस्पिरेशन जो जर्नी है इससे हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिला है, और हमारे लोगों को भी जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी बहुत सारे आइडियाज आए होंगे, और साथ ही जो नोडल ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, जिससे हमें ये पता चला है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कभी हमेशा हाथ बढ़ाया गया है अपने नए एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए. शायद आप सभी को भी हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा जो बैम्बू डे है ये पसंद आया होगा. तो आप सभी को मैं ये बता दूं कि ये जॉइंट प्रोग्राम है डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर की तरफ से, और हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा. व्हाट्सअप अरुणाचल.

श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि आदि श्रोताओं का कार्यक्रम हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा DRN 666 किलो हर्ट्स पर अभी जारी है। आप जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बता दें कि अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम आज के कलाकार का। कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता मित्रों, आज के हमारे कलाकार हैं संगीत की दुनिया के दिग्गज गायक, जो अपनी भारी आवाज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बॉलीवुड के कई गानों को अपनी बेहतरीन आवाज से नवाजा है। उनके गाए सदाबहार गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्श्व और गजल गायक भूपेंद्र सिंह की। दोस्तों, आगे उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल आइए सुनते हैं घरोंदा फिल्म का ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में।

0: श्रोता मित्रों, इस गीत को आवाज दी है भूपेंद्र सिंह और रूना लैला ने, घरौंदा फिल्म का ये बेहतरीन गीत।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

श्रोता मित्रों, भूपेंद्र सिंह को संगीत विरासत में मिला था और यही वजह थी जब वो गाते थे तो सुनने वाले बस मंत्रमुग्ध रह जाते थे। जानते हैं दिग्गज गायक के बारे में खास बातें। गायक भूपेंद्र सिंह का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान साल 1940 में पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता बेहद अच्छे संगीतकार थे और इसीलिए उन्हें बचपन से ही संगीत की शिक्षा दी जाने लगी थी। बताया जाता है कि गायक भूपेंद्र सिंह के पिता सिखाने के मामले में बेहद सख्त थे। इसी वजह से बचपन में

रविंद्र सिंह को संगीत से नफरत सी हो गई थी। उस दौरान उन्हें संगीत सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समझ बढ़ने के साथ ही संगीत में उनकी रुचि भी बढ़ने लगी। भूपिंदर सिंह को संगीत की शिक्षा तो घर से ही मिली थी, लेकिन सबसे पहले संगीत में गजल गाने में उनकी रुचि जागी। इसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआत आकाशवाणी से की थी। आकाशवाणी में पहला प्रोग्राम करने के बाद उन्हें दूरदर्शन केंद्र में जाने का अवसर मिला। ऑल इंडिया रेडियो से ही उनको गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला। जानकारी के मुताबिक गायक भूपेंद्र सिंह गाना तो बेहतरीन गाते थे, इसके साथ ही वो गिटार भी बजाया करते थे। उन्होंने दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में प्रस्तुति दी थी और इसी दौरान उन्होंने वायलिन और गिटार भी सीखा। ऑल इंडिया रेडियो में उनकी गायकी सुनने के बाद संगीतकार मदन मोहन ने उन्हें मुंबई बुला लिया था और उन्हें सबसे पहला मौका फिल्म हकीकत में गाने का मिला। इस फिल्म में उन्होंने होके मुझे मजबूर बुलाया होगा गजल को अपनी आवाज दी। हालांकि उन्हें इससे पहचान नहीं मिली, लेकिन वो लगातार गाना गाते रहे। भूपेंद्र सिंह कम बजट की फिल्मों में भी गायकी करते रहे और इसी दौरान उन्होंने खुद की लिखी गजलों में नया प्रोग्राम किया, माफ कीजिएगा, नया प्रयोग किया और ड्रम और स्पेनिश गिटार की धुन पर उन्हें पेश किया। इससे सबका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में मौसम, सत्ते पे सत्ता, आहिस्ता आहिस्ता, दूरियां, हकीकत और कई अन्य फिल्मों के गानों को अपनी आवाज दी। तो चलिए, अब वक्त हो चला है एक और गीत का।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे एक बार फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले ने। आपको बता दें कि आप बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का। आपको बता दें कि जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं मशहूर गायक भूपेंद्र सिंह की। श्रोता मित्रों, भूपेंद्र सिंह की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी मिताली सिंह भी एक गायिका रही हैं। दोनों ने साल 1980 में एक दूसरे संग शादी की थी। इसके बाद मिताली और भूपेंद्र सिंह ने के नाम से साथ में दोनों ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे उन्हें खासी लोकप्रियता हासिल हुई। गायक भूपेंद्र सिंह का निजी और पेशेवर जीवन सफल रहा, बस उन्हें एक ही कमी रही कि उनकी कोई संतान नहीं हुई।

0: आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज में बाजार फिल्म का ये गीत। श्रोता मित्र, मशहूर गायक भूपेंद्र सिंह ने 2022 18 जुलाई को मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया श्रोता मित्र, लेकिन अपने आवाज के माध्यम से वे हमेशा अपने चाहने वालों के यादों में बसे रहेंगे।
1: सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा, चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे ये सदाबहार गीत किनारा फिल्म से लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की युगल आवाजों में। इस गीत के साथ ही दिग्गज गायक भूपेंद्र सिंह पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार। फिलहाल सुनते रहे ये गीत।

0: building training program ham moko chila minister ye red kula so library automation legabala digital resource community engagement lo librarian gudga rigamenga sa service rules personality development ok mental well being luk lo sok training rigo lo resermenser gar kuna khamla minister ye japata kumakhan to Oksok kai kuna capacity building me nam kham rebaga lo alba tulik tuaga min kuna legaba alba me chag kuna kham la minister ya directorate of library ne la ni alba chene pane gedne ok sok tu kum lo to pa dak pa ming ne mul kham jap ne ngam agon kham jap ta pu kuna kham la men pa ta to nul chin shi pu shi ma khaswani itano pu kum lo ka tal do nya to अरुणाचल प्रदेश सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ला सेल्को फाउंडेशन विनिग रिवासिला मोलेन कुनाम एनर्जी फॉर हेल्थ अरुणाचल प्रदेश है मोर जी आलोक अरुणाचल प्रदेश स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर नर्मन दिवरम वागे ये मोको जीप को मखल में पार दो अक्षोक रेमेन रेवगनाम हेल्थ सेंटर से इलेक्ट्रिक उम है आवक आरक माला चिन और डीजल लोक रिन पान माला कुचिन हेल्थ केयर का पहले लो अलवे हेंज के जो नादब रिर कुन खबला में पाता तो और सीएसआर ने तुलित तो आको रिक लासो स्टेट सरकार का लोक मुर्री मुर को या को कुनाम हम हेंड्रा कारा तो को माब रिगो मेंगो मुर्री हम अलवे रिदर मेंदर नार कुन खबला हेल्थ मिनिस्टर या जपाता कुम हम तो Papumpara district ne mempula Arunachal Pradesh state ga urugula ak district ga dine yellow alert ba Itanagar ga meteorological center ha japak jigri kala sok district te ro dugum dora ka ajen ba nido ha dukt alba huluk jirkuna khamla japa tag dukuna ba kham to भारत के हुसु प्लेयर रोसिबीना देवी ये एशियन गेम्स 2026 लो होमे निम गुद ग चांग के जे संदा इवेंट में नाम लो सिल्वर मेडल आमिन हम पाप कुम और जापान जापान मोग ग नागोया लो फाइनल हम चाइना ग जंग जिगो ने रिकामिस को कलो वु ये रिंगन याकर में खबर में पाद दो ऑक्सोक तायो लो स्कल्स इवेंट में नम सिप आनी कोको लो दुका मिस कोको लो सत्यनाम सिंह ला सलमान खान बने ब्रॉन्ज मेडल आमिन हम पाप कुम ओके एशियन गेम्स लो मेडल आमिन पानम लेगा प्रेसिडेंट दन द्रौपदी मुर्मू ला प्रो मिनिस्टर नर्म नरेंद्र मोदी बने रोसिबिनी देवी ने ला सत्यनाम सिंह ओके सलमान खान बुल ने पांगनम आगोम हम जबलु पुकुन बखबला मैं पाता दो कसरुंगा निशिपुई है वो
1: सीता कब से आगम गो मुल्ले आकाशवाणी ईटानगर यरकुम लोग सो पुईसा मलिन जदन मुलु निमले तोलु गब खबने नियम निगा को अन्योम अक्षिर गब एचआईवी ला एड्स ग पागो समनिंग चेंदो एचआईवी एड्स अलमान बो एच हेल अब सुतल सो एचिन बो सम एचिनम समनुले बोस दुब्रीमा पनम सो एचसीएम यो कम चिदा पाहल सो निंग निव्याप सितान हेल दो मादने नुने सम आल जब चेन दो दुबरी पा सम चेन दो दुबरी नम सी अब कम नुले चेन दो बोलो सो एच पागो सम नुले आयाम काल चेन पाल दो बोलो कम नुन सो एच वो निंग दो जा कम सो एच चम नुल अन्याब सिर दुब जितान ने सी कोई को सिर दुब जितान ओगे एच एच आई बी ला एस सी ओगुम का जिदन है बोलो कम सी नियम ने
2: सी तागप से आगम गो मुल्ले आकाशवाणी ईटानगर इरकुम लोके सो पुईसा मलिन जिदन मुलु नि मुले तोलु गा भबने नियम नेगा को अन्योम अक्षिर गा बे एचआईवी ला एड्स गे पागो समनिंग चेंदो एचआईवी एड्स अलमान बो एच हेल हब सुतल सो एच चिन बो सम एच चिनम सम नुले बोस दुब्रीमा पान मे सो एच सीएम यो कम सीधा पा हेल सो निंग निव्याप सितान हेल दो मादने नुने सम आल जब चैनल दो दुबरी पा सम चैनल दो दुबरी नाम सी एवं कम नुले चैनल दो बोलो सो एच पागो सम नुले आयाब काल चैनल पाल दो बोलो कम नुले सो एच वो निंगे दो जा कम सो एच चैनल अन्याब सुग दुब जितान ना सी कोई को सुग दुब जितान ओगे एच आई बी ला एच सी ओगु का जिदन है बोलो कम सी नियम निगा दो बम कोलो ओगे सो उई ना को सुन दो कम ओगे सो सो बीजेपी ने नम पी को सुन नी एच वो ओगे पी कम हो सो एच सी दो दिन ओगे सो एच सी नुले एच सी उसी मादन नुलुक अला चिरे को लो चेतिन मिसल दो लो लेकिन गो दवन दवन ला दो कम नुले सी एच सी उमादन है 오갑 눌러 에시 도

श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रस्तुत है दिल्ली केंद्र से विशेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार और कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 25 वर्षों का जनसेवा का सफर पूरा हुआ है। इसमें 3 टर्म उनके लगभग 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर का रहा है और पिछला 12 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काफी अनुभव भरा रहा है। इस दौरान गवर्नेंस में काफी परिवर्तन हुए, आम जनता तक काफी लाभ की योजनाएं लाई गई हैं। इसी के तहत जन सेवा से देश सेवा सीरीज के तहत आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश के गांवों में क्या कुछ बदलाव आया है और वो बदलाव से जो ग्रामीण है हमारे हैं वो कितने लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीएस मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा साहब आपका।
2: धन्यवाद।
1: और साथ में हमारे साथ एसपी सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब आपके पास ही आता हूँ, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है सेक्रेटरी के तौर पर, केंद्र में काम करते हुए, राज्य में काम करते हुए आप बारीकी से समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के साथ न जुड़े रहे बल्कि आपने काम किया। पिछले 12 वर्षों में अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि गांव जो है भारत की विकास यात्रा में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, तो पिछले 10-12 वर्षों में क्या कुछ गांव में आपको परिवर्तन देखने को मिला है?
2: देखिए, पूरा का पूरा राजन साहब गांव के विकास के बारे में सोच में तब्दील हो गई है। पहले जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, पहले जैसे गांव को हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते थे तो गांव में एक खंभा लग गया, सरहद में खंभा लग गया तो मान लेते थे कि गांव इलेक्ट्रिफाई हो गया। सड़क गांव में कहीं एक जगह पहुंच गई तो गांव आपकी सड़क से जुड़ गई। कुछ लोगों को आपने मकान दे दिया इंदिरा आवास योजना में तो आप मान लिया कि उनको गांव में लोगों को मकान मिल गया। पानी के लिए हैंडपंप लगा दिया आपने तो हैंडपंप लगाने के बाद आपने मान लिया कि वहां पे हैंडपंप से सब आसपास के लोगों को पानी मिल जाएगा। अब उस सोच में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। अब क्या है कि अब सेचुरेशन के तरफ, जैसे गांव में अगर सड़क जानी है तो गांव की जो भी वहां पे आवश्यक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, न केवल हर टोले को सड़क जोड़े बल्कि वहां पे जो बाजार है, वहां का जो स्कूल है, वहां का जो मंडी है, हर एक को गांव की सड़क ले जाकर के जोड़ दे। हर व्यक्ति को जो कि गरीब आदमी है उसके पास मकान नहीं है, हर एक के लिए आवास हो। जो जल है वो जल हैंडपंप से नहीं बल्कि हर घर में जल पहुंचे, यानी हर घर में नल हो और हर नल में जल हो। गांव में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को होती थी कि अब उनकी जो खेत बाड़ी है तो वो तो खसला खतौनी था उनके पास
1: जी,
2: लेकिन जहां वो रहते थे उसका उनकी आबादी के इलाके का कोई भी स्वामित्व नहीं था। अब घरौनी जो स्वामित्व योजना है उसके तहत उनके घर का भी एक रिकॉर्ड हो और उसके माध्यम से अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन भी मिल सकता हो। तो एक पूरी पूरी सोच में परिवर्तन आ गया। मैं कहूंगा आप स्वच्छ भारत मिशन में जैसे पहले
1: जी,
2: अब मैं तो बहुत नीचे लेवल से एसडीएम से लेकर के मैं उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी तक रहा, पहले हम थोड़े से शौचालय बना देते थे, ये कहते थे गरीबों को शौचालय मिल जाएगा और शौचालय जहां बनता था वहां कोई भूसा रख रहा है, कहीं कोई बकरी बांध रहा है, कुछ और काम कर रहा है। अब लोगों के सोच में सुधार हो गया, मैंने एक प्रकार से जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कार्यक्रम चला
1: जी,
2: उसमें 100% शत प्रतिशत सारे के सारे गांव हमारे ODF ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए। उसके बाद ODF प्लस हो गए। अब वहां पे वेस्ट के मैनेजमेंट की भी बात हो गई, वो भी काफी काम हो गया। अब वहां पे जो ग्रे वाटर होता है, जो उपयुक्त पानी होता है, उस पानी को भी उपयोग करके उसका लाभ लेने के लिए इसके बारे में, तो ये मुझे लगता है कि एक आमूल चूल परिवर्तन
1: जी।
2: और अभी मुझे लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछला 10-12 साल का जो ये परिवर्तन आया है, अब आने वाले समय में इसको लेकर के जैसे अब डिजिटल व्यवस्था भी गांव में हो गई है, अब इसको लेकर के पूरी आर्थिक व्यवस्था जो गांव की हमारे एक आदर्श गांव बन सके उसके बारे में बड़ा काम होने वाला है।
1: मिश्रा साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या परिदृश्य में बदलाव आया है उसको चित्रित किया है। सिंह साहब आपके पास आते हैं, सोच में बदलाव आया है और जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है और हम जानते हैं कि जब समाज बदलता है तो पूरा का पूरा देश बदलता है। जैसा मिश्रा साहब ने बताया कि दरअसल अब फोकस जो है केवल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ही नहीं है कि एक दो सामान लग गया और हमने कह दिया कि जी वहां पर नल पहुंच गया या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई या बिजली विद्युतीकरण हो गया। दरअसल जीवन की गुणवत्ता और बेसिक सर्विसेज का सबको एक्सेस मिले, सबकी वहां तक पहुंच हो और वो उनके उपयोग में आए, यहां तक मामला पहुंचा है। आपने कई गांवों का दौरा किया है, रिपोर्टिंग के दौरान किया है और संपर्क में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गुणवत्ता में परिवर्तन आया है गांवों में, लोगों की लाइफस्टाइल में, उससे देश को आगे बढ़ने में कितनी मदद मिली है?
3: देखिए, देश में ग्रामीण विकास हर सरकार की प्राथमिकता में रहा होगा, लेकिन सोच का, जैसे भी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सोच में परिवर्तन आता है कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, सरकार कैसे पहुंचे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में गांव गरीब ही रहा है। गरीबी क्यों है और गांव की स्थिति क्या है? गांव उसे कहते थे जो कनेक्टिविटी का अभाव हो, जहाँ पे पक्की छत वाले किसी के पास घर न हो, मतलब बुनियादी सुविधाओं का एक तरह से अभाव होता था। उन सारे अभाव किया, उस जो अंतर है उसे कैसे पाटा जाए, ये काम बखूबी उन्होंने किया है। चाहे वो कनेक्टिविटी के अभाव में आप कह सकते हैं कि सूचना का प्रसार हुआ हो इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सड़कों के थ्रू, ग्रामीण सड़कें, हमें लगता है कि कोई गांव अब नहीं बचा है। 2028 तक ये प्लान बना है कि हर छोटे बड़े जहां कहीं भी हो, एक तो पुरानी सड़कों का उन्नयन हुआ, नई सड़कें बनी, हर गाँव और हर कस्बा और हर बस्ती को जोड़ने का काम किया। दूसरा काम की जो बुनियादी सुविधाएं गाँव को चाहिए होगी वो होती है हर सिर को पक्की छत, यानी हर एक मकान देना, मकान किसे देना, जो मकान पक्का मकान न बना सके, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उन्हें चिन्हित करके वहां तक ये लाभ पहुंचाना। दूसरा, मकान भी कैसा हो, मकान पहले भी इंदिरा आवास योजना के नाम पर मकान बना करते थे, अब मकान कैसे बनता है, मकान की वो बुनियादी सुविधाएं, उनको पानी की सुविधाएं, हैंडपंप से नहीं, नल के जल, जल जीवन मिशन इसका एक सबसे नायाब उदाहरण है, जो हर घर तक नल से और जिसमें शुद्ध पानी पहुंचाया जाए, तो एक तो हैंडपंप से मुक्ति मिलेगी और हर घर तक नल जाएगा। दूसरा, हर घर में लट्टू जले, लट्टू का मतलब बल्ब जले, यानी बिजली जाए, और हर घर तक बिजली जाएगी तो गांव में बिजली हो, यानी वो पूरा गांव विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छता, सबसे बड़ी समस्या गांव की थी स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा जो कारण था खराब होने का, बीमारी होने का, गरीब होने का, कुपोषण सबसे बड़ी वजह थी, स्वच्छता का अभाव, शौचालय का अभाव, तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक शौचालय बनाने का काम और उस शौचालय का प्रयोग करना, ये जो प्रवृत्ति में बदलाव, हमारे मिश्रा जी ने बहुत सही कहा कि प्रवृत्ति और सोच में जो बदलाव आया, हैबिट लोगों की चेंज हो गई कि नहीं हमें बाथरूम में जाना है, हम शौचालय जो हमारे लिए बनाया गया, जो हमने बनाया अपने लिए, उसका उपयोग किया जाए, लोगों को यह बताना कि इससे कितना फायदा है, इसके न होने से कितना नुकसान हो रहा था। दूसरा, पानी, जल जनित बीमारियों का प्रकोप होता था, खास तौर से इस मौसम में देखिए तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार का एक जो टाइफाइड, मतलब जल जनित बीमारियों का एक तरह से प्रकोप होता था, अब उसमें कमी आई है। इवन देन की लोगों के रोग नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा, तो गरीबी नहीं आएगी, गरीबी की बड़ी वजह यही सब थी। तो गरीबी को कम कैसे किया जाए और गाँव को कैसे उन्नत बनाया जाए, और हर घर में जो माँ बहने खाना बनाया करती थी वो उपले से, लकड़ी से, यानी धुआं, तो धुआं रहित चूल्हा यानी कुकिंग गैस LPG हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, ये ऐसी योजना है जिससे माँ बहने आज अगर कहें तो दिल से धन्यवाद देती हैं इस सरकार को, महिलाओं के लिए शौचालय और खाना पकाने के लिए उनको स्वच्छ गैस, जो LPG

0: कनेक्शन और सिलेंडर मिला है। ये दो चीजें अगर कहें तो महिलाओं का उत्थान हुआ, सशक्तिकरण हुआ, उन्हें काम मिला। दूसरी चीज की आप कहेंगे कि मनरेगा जैसा काम गांव में, हर गांव में गरीब से गरीब जो सबसे निचले तबके पे जिसे कोई काम नहीं मिल सकता है या कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ में काम नहीं था, गांव के लोगों के साथ है कि खेती के बाद कोई काम नहीं है, भूमिहीन मजदूरों के लिए तो और भी मुश्किल है, कोई उसके लिए काम नहीं है, ऐसे में उन्होंने क्रिएट किया, इस सरकार ने उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को काम दिया जाए, यही मनरेगा के तौर पर एक योजना
1: बनाई गई। बिल्कुल, इन सब विषयों पर सिंह साहब हम अलग से बात करेंगे। आप दोनों ने एक 360 डिग्री पिक्चर, जो गांव की सोच में बदलाव आया है, लोगों की जो प्रवृत्ति में बदलाव आया है, इस पर हमने चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इस पर थोड़ी डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या जो थी केवल एक स्वच्छता का विषय नहीं थी बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने ग्रामीण जीवन में कहें तो एक तरीके से बिहेवियरल और सोशल चेंज पैदा किया है, इसे आप कैसे बताएंगे?
2: बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 का वो दृश्य याद करी जब उन्होंने कहा था कि पूरे देश को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 साल जब मनाएंगे जन्म दिवस का, तो सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि हम देश को स्वच्छ कर दें, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। और तब लोगों को लगा था कि ये संभव ही नहीं है। आज आप देखिए, लगभग 12.2 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय गांव गांव में बने हैं, करीब 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी शौचालय, जहाँ पे कम्युनिटी का होता है उसके बने हैं। आज न केवल शौचालय ही नहीं बने बल्कि शौचालय का उपयोग हो रहा है, मैंने लोगों के व्यवहार में, विचार में उनके परिवर्तन आए कि हम शौचालय बनेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आपने कहा गरिमा, जो हमारी माताओं बहनों को सड़क पे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, उनको सांप से डर है, कोई उनकी सुरक्षा, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से उसको कॉम्प्रोमाइज है, रात के शाम के वक्त या सुबह के वक्त वो जाती थी, दिन भर अपने पेट में उस मल को रखती थी जिससे बीमारियां फैलती,
1: पीड़ा में रहती थी।
2: तो आप सोचिए कि उसको लेकर के ऐसी तमाम सारी स्टडीज है जो स्टडी कराएंगे, उसके बाद अब लगता है कि इससे जो है हमारे जो मृत्यु दर है बच्चों का, चाइल्ड डेथ के बारे में, 5 साल के डेथ के बारे में, लोगों के पोषण के बारे में, हर चीज में सुधार हुआ है। जो हमारी डायरियल डिजीजे थी, इतने सारे बच्चों का डेथ होता था उसमें, जो मैंने वाटर बॉर्न डिजीजेस हुआ करती थी क्योंकि उनका जो फीकल स्लज था वो उससे मिल जाता था, तो उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। अब जो इसके बाद सरकार ने न केवल ODF किया, 100% गांव तो ODF हो गए, ODF प्लस, यानी उसको शौचालय न केवल बने बल्कि शौचालय का उपयोग भी हो, और उसके ऊपर जाकर के जो वेस्ट का मैनेजमेंट, आज हर गांव में वेस्ट मैनेजमेंट, जो वहां पे ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर जिसमें तमाम सारे मच्छर पैदा होते हैं, इसको लेकर के मलेरिया से लेकर के तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, डेंगू की बीमारी होती है, उससे लोगों को निजात मिले। तो ये पूरा का पूरा एक स्वच्छता का अभियान जो चला, लोगों के लिए अकल्पनीय है कि ऐसा सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारे देश में चलाया गया और उसका रिजल्ट सबके सामने है।
1: बिल्कुल, स्वच्छता मिशन के साथ साथ सिंह साहब अभी आप जल जीवन मिशन की भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक हैंडपंप गाड़ देना किसी गांव में ही जल पहुंचाना नहीं था, लंबे समय तक ग्रामीण महिलाओं और परिवारों के लिए रोज पानी लाना जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा था, इसमें चुनौतियां थी और बहुत वक्त भी उनका बर्बाद होता था। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक जल नल से पहुंचाने के प्रयास ने ग्रामीण परिवारों खास करके महिलाओं के जीवन को बहुत आसान बनाया है, और गांव में हर घर में नल कैसे पहुंचा है और हर नल में जल कैसे आया है, आइए सुनते हैं जल जीवन मिशन पर एक रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, बेहतर जीवन की शुरुआत कई छोटी छोटी जरूरतों से होती है, इनमें सबसे जरूरी है पीने का साफ पानी। गाँव में लंबे समय तक बहुत से परिवारों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, खासकर महिलाओं को घर के लिए पानी लाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। आसान भाषा में कहें तो पहले जिस पानी के लिए परिवार को घर से बाहर जाना पड़ता था, उसे नल के जरिए घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन केवल पाइप बिछाने की योजना नहीं है, इसका उद्देश्य गांवों में पानी की नियमित और सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए गांवों में पानी के स्रोत, पाइपलाइन, पानी की टंकियों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जाता है। श्रोताओं, घर में नल से पानी आने का मतलब केवल सुविधा बढ़ना नहीं है, इससे परिवार का समय भी बचता है। बच्चों को पानी लाने के बजाय पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के लिए समय मिल सकता है, महिलाओं की रोजमर्रा की मेहनत कम हो सकती है और परिवार को घर के पास पानी उपलब्ध हो सकता है।

0: इस काम में गांव के लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय पानी की व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी निगरानी में भूमिका निभाते हैं। यानी पानी की सुविधा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि गांव के लोगों की भी साझा जिम्मेदारी है। हर घर बेहतर जीवन की बात करें तो इसके साथ कई दूसरी योजनाएं भी जुड़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण और ज्योतिग्राम जैसी पहलें बिजली की पहुंच और आपूर्ति को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं। वहीं स्वामित्व गांवों में लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर देता है। श्रोताओं, इन प्रयासों का उद्देश्य अलग अलग जरूर है लेकिन लक्ष्य एक ही है, गांव में रहने वाले परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को आसान बनाना। जब घर तक साफ पानी पहुंचे, गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली मिले, स्वच्छता की सुविधा हो और लोगों को अपनी संपत्ति तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिले तो गांव का जीवन भी तेजी से बदलता है। यही है हर घर बेहतर जीवन की भावना, जहां विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें या बड़े शहर नहीं बल्कि गांव के हर परिवार तक जरूरी सुविधाओं की पहुंच भी है।
1: आपको क्या लगता है कि नल का कनेक्शन देना तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, उसके साथ नियमितता और पर्याप्तता के साथ गुणवत्ता वाला पानी भी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी सफलता रही है सरकार की। अब जल जीवन मिशन के सामने क्या कुछ बड़ी चुनौती है या अगला स्टेप क्या है?
2: देखिए, पानी पहुंचाना एक है लेकिन पानी तो पहले भी लोग पिया करते थे, बिना पानी के तो कोई जी नहीं सकता। पानी पहले भी पहुंचता था लेकिन शुद्ध पानी पहुंचाना और पर्याप्त पानी पहुंचाना, जितनी जरूरत है एक व्यक्ति की 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और नल से जब पानी जाएगा टैंक में चढ़ के वो साफ होगा और स्वच्छ पानी जब लोगों के घर तक पहुंचेगा तो उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, स्वस्थ होंगे वो। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जल जनित बीमारियां होती हैं, जो पानी जम जाता है उससे मच्छर पैदा होते हैं और पानी में कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल चीजें चली जाती हैं, अगर आपके पेट में चली जाए तो डायरिया हो जाए, ढेर सारे तरह के रोग होंगे। और अगर विपत्ति आनी है और गरीबी आनी जिसको कहते हैं ना, तो वो उसके लिए अगर रोग हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए तो वो अपने आप गरीब हो जाता है, गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया गया तो एक पानी शुद्ध दे करके इस सरकार ने लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस सरकार ने कि कम से कम बीमारी नहीं होगी और गरीबी से निजात मिलने में होगा। दूसरा, बच्चे कुपोषण के कार नहीं होंगे और हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारे ग्रामीण बच्चों की उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी। तो जो ये सोच थी सरकार की पानी को लेके, वो सोचिए कि 81% गांव तक, इतना बड़ा देश जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा गांव हो और अगर देखा जाए तो बस्तियों को अगर गिनती कर लिया जाए तो हैबिटेट्स को तो ये करीब 10 लाख के आसपास संख्या होगी, और जरा समझिए 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं और इनमें 81% 82% लोगों तक नल का सप्लाई की लाइन बिछ गई और हमें लगता है कि 70 से 75% तक पानी सप्लाई भी होने लगा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में हम सबको पानी नल से देने लगेंगे। नल कहने में बड़ा आसान सा दिखता है लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, कितनी बड़ी सोच रही होगी। और इसका प्रयोग प्रधानमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्रित्व काल में अपने गुजरात में इन्होंने इसको लागू करके देखा, जहां पर वाटर डिफिसिट स्टेट्स है, जहां पर पानी की कमी, पीने की पानी की कमी, सिंचाई की कमी, हर तरह के पानी की कमी थी, शुद्ध पानी जल की तो बड़ी मुश्किलें थी। उस स्टेट को नर्मदा बांध से सरोवर, इतने बड़े बड़े बांध बने और नदियों में जो बरसात का पानी उसे रोक रोक करके जगह जगह चेक डैम बना के वहां से बिजली पैदा करना, पानी को साफ करना, टैंक तक पहुंचाना और साफ कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, लोगों के खेत तक पानी पहुंचाना, यानी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है गांव की। तो गांव को लेके जो कांसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री का है वो हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा नेता मिला है। अभी एक बात और कह रहे थे मिश्रा जी, मैं कहूं देश का नेता खुद झाड़ू लेके अगर मैदान में उतर जाए कि सफाई मैं करूंगा तो यह देश स्वच्छ ही होगा। और देखिए कितनी सफाई हो गई कि कोई व्यक्ति जरा सा भी हिचकता नहीं सफाई करने में। आप जरा गाड़ी में आप कभी चल रहे हो, बिहेवियर चेंज कैसे आता है, हमें नहीं लगता कि आप कोई चीज, एक कागज का टुकड़ा भी खिड़की से नीचे कोई फेंकता हुआ मिल जाए, अगर कोई फेंकता हुआ मिल जाए तो पीछे वाली गाड़ी जाकर के उसे रोकती है, क्यों ऐसा किया, उसे अपराध बोध होता है। इस तरह की सोच में परिवर्तन, प्रधानमंत्री या इस देश का जब नेता इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का लीड करता है तो आम जनता तक बात पहुंचती है और लोग उस पर अमल करते हैं।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है,
3: बिल्कुल
1: बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज हम ये नजारा नहीं देखते कि गाड़ी से किसी ने केले का छिलका

0: फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया। तो ये स्वभाव में जो परिवर्तन आया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हित में नहीं है आम जनता के, ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। और साथ में मिश्रा जी, आपसे महत्वपूर्ण सवाल अब मुझे ये पूछना है कि 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और गाँव की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। बिजली गाँव में पहुंचाया जाना, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, अगर बिजली पहुंचाने की सोच सरकार की आज से 10 साल पहले नहीं होती तो आज शायद गांव में हर हाथ में मोबाइल नहीं होता। तो बिजली की उपलब्धता गांव के सामाजिक और आर्थिक जीवन को किस तरीके से बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, इसके लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आगे, दोबारा मैं फिर आपको ले जाऊंगा 15 अगस्त के स्पीच में जो उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे तमाम सारे गांव हैं जो आज भी जो सरकारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक वहां पे बिजली नहीं पहुंची है। तो कुछ जगह तो बिजली पहुंच भी नहीं सकती, इतनी दुरूह जगह पे बड़े हुए, तो उसके तो हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की जरूरत है जहां पे बिजली नहीं थी, और उसको अप्रैल 2018 तक सब जगह 100% बिजली पहुंचा दी गई। अब सवाल है, बिजली पहुंचाना सरहद में, उससे क्या गांव में बिजली लोगों को मिलने लगती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। कुछ लोगों के पास बिजली का जब खंभा ले जाकर के उनको अपने घर में बिजली लेने के, गांव में कुछ दो चार लोग जो संभ्रांत लोग हैं उन लोगों के पास बिजली पहुंच जाती है, बाकी सब लोग इससे वंचित रहते हैं। एक पूरी मुहिम चली सौभाग्य योजना, उस सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचा रहे, जैसे हर घर में नल और हर नल में जल है तो हर घर में बिजली और हर बिजली में से बल्ब उसको जलेगा, माने हर घर में जो बच्चे, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, देखे छोटे बच्चे थे हम ढिबरी में पढ़ते थे
0: जी,
1: लालटेन में पढ़ते थे। अब लालटेन ढिबरी से पढ़ने से पढ़ तो लेते थे लेकिन हमारी आंखों में नुकसान पड़ता था, जितना हम पढ़ सकते थे बहुत जल्दी थकान हो जाती थी, उतना नहीं पढ़ सकते थे कि उसकी उतनी पर्याप्त रोशनी नहीं है। अब लोगों को गांव-गांव में घर घर में बिजली पहुंचाना और वहां पे लाइट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इंचित किंचित कहीं जो बचे हैं, जो लोग नहीं सामने आओगे, उनको RDSS योजना में कहीं कहीं उनको पूरी हो जाएगी। और ये उपलब्धि केवल पढ़ने के लिए नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम बिजली गांव में पहुंचाते हैं, आप ये समझ लीजिए कि वो हमारा इंडस्ट्री 1.0 था, 2.0, 3.0, मतलब वो अगले लेवल पे जो ग्रामीण उद्योग है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। जब घर में बिजली पहुंचेगी तो तमाम सारी और चीजें जो हमारे सुख सुविधाएं की चीजें हैं, क्यों शहरी इलाके में लोग रहे, उनके लिए अगर उनको टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध हो, उनको जो है अन्य सुविधाएं जो बिजली चलती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गांव में क्यों नहीं उपलब्ध हो? बच्चे जो तमाम सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बिजली पहुंच गई तो वहां के माध्यम से आज डिजिटली बहुत सारा जो कार्यक्रम होता है वो सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब गांव में जो PSC है वो गांव के PSC को सीधे कनेक्ट करके उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बिजली ने पूरी जिंदगी में सुधार कर दी, ग्रामीण व्यवस्था में सुधार कर दी, और ये हमारा जो लाभ मिला, और मुझे लगता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वहां ज्योतिर्ग्राम योजना
0: जी जी
1: उस ज्योतिर्ग्राम योजना में क्या किया उन्होंने कि ग्रामीण का जो एग्रीकल्चर का फीडर है उसको जनरल फीडर से अलग कर दिया, और फीडर के अलग करने से क्या हो कि बिजली का सही प्रकार से आप उपयोग करने लगे। उससे आपको घर भर में बिजली जो है जो 8-9 घंटे मिलती थी वो 20-21 घंटे बिजली मिलनी चालू हो गई, तो बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आज तो बहुत सारा जो बिजली के नाम पे आज सोलर लाइट तो इतना उपयोगी हो गई गांव-गांव में, जो है गांव में सोलर लाइट उपयोगी, पहले हम लोग जो सोलर से केवल कुछ कुकिंग का काम कर लेते थे, सोलर के कुछ लैंप को लालटेन के तौर पे उसका यूज कर लेते थे, आज सोलर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार बन गया। सोनभद्र जिला जो है इतना ज्यादा दूर दूर तक वहां पे गांव फैले हुए, बहुत सारे जगह बिजली के खंभे वहां नहीं पहुंच सकते, पहुंचा बहुत मुश्किल होगा, काफी उसमें एक्सपेंस होगा, बट सोलर के पहुंच करके सोलर के माध्यम से बहुत सारी चीज कर सकते हैं, वो गोबर गैस को यूज करके इसको कर रहे हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हमारे लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
0: सिंह साहब, जैसा अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 13 वर्षों का उनका वहां का अनुभव रहा, उससे उस अनुभव को जो उन्होंने यहाँ पर कई योजनाओं में लागू किया है, एक गवर्नेंस के तौर पर कहें, योजनाएं बनाकर कहें, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वच्छता हो गया, पानी मिलने लगा, बिजली पहुंच गई, लेकिन गांव की एक्सेसिबिलिटी अगर सड़क ना रहे प्रॉपर तरीके से तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव को बाजार से जिसने जोड़ने का काम किया, इसके बारे में आपकी क्या राय?
2: देखिए, गांव की सबसे बड़ी मुश्किल, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति थी कनेक्टिविटी का अभाव, चाहे सड़कों का अभाव हो, चाहे चाहे संचार साधनों का अभाव रहा हो, ये दोनों अभाव से कटा हुआ जो एरिया होता था हम उसे गांव बोल दिया करते थे। तो जो कनेक्टिविटी को तैयार करने का सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम सड़क योजना करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके योजना चलाई थी, और उसे जो 1, 2, 3, 4 चरणों में ये पूरे देश में बनी, आज कह सकते हैं कि करीब करीब 7-8 लाख किलोमीटर से

0: ऊपर की बन चुकी है हमारी सड़कें। तो जरा समझिए कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सड़कों का जाल बिछ गया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि गांव में जो खेतिहर किसान, छोटा किसान है, मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी उगा लिया, थोड़ा दूध या कुछ और अपना तैयार कर लिया, और जो ऐसी चीजें जो बाजार में बिक सकती है, तो वो अपनी साइकिल पर, अपने मोटरसाइकिल पर, अपने संसाधनों से, अपनी गाड़ी से, रिक्शे से, जो भी उसके पास साधन है, या किराए के ट्रैक्टर से, वो बाजार को पहुंचा लेता है, तो उसको एक काम मिल गया। दूसरा सबसे बड़ी फायदा यह हुआ कि स्वास्थ्य का, मिश्रा जी ने कहा कि अभी तो डिजिटली कनेक्ट होकर के हम कहीं से भी कनेक्ट होकर के हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। हम कहते हैं कि गांव का आदमी, मुझे वो दिन याद है कि जब लोग बीमार होते थे तो सड़क नहीं होती थी, तो अब चारपाई पर लेकर के जो भी अस्पताल या डॉक्टर होता था उससे इलाज कराते थे। आज स्थिति नहीं है, आज स्थिति यह है कि आप किसी भी 100-200 किलोमीटर तो बड़ी आसानी से आप यात्रा कर सकते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि जो PMGSY की सड़कें हैं वो किसी भी शहर की सड़क से कमजोर नहीं है, क्योंकि जो इसका मानक है बनाने का वो बड़ा सख्त है। जो एजेंसी बनाती है उसी को 10 साल तक के लिए मेंटेनेंस का भी होता है, उसका पेमेंट रोक लिया जाता है, कुछ तभी दिया जाएगा जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट करेगा, मेंटेनेंस का हिस्सा भी उसका जोड़ दिया जाता है। यानी इतनी वैज्ञानिक तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है कि उसमें बेईमानी की चांसेस बहुत कम है।
1: आपने मिश्रा जी देखा होगा कि लोगों के पास अपनी संपत्ति होती है, अपना जमीन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत स्पष्ट नहीं थे। तो स्वामित्व, गांव में संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व योजना जो है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
2: देखिए, स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि गांव में जो खेती वाली जमीन होती है उसका तो खतौनी है, खसरा है, उसका नक्शा बना हुआ है, अब तो आज वो सारा सारा डिजिटाइज भी हो गया है, लेकिन जो आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था। नतीजन लोगों की आपस में लड़ाई होती थी, मैं तो देखता था फौजदारी होती थी। आज उनको इंडस्ट्री लगानी है, घर पे अपने कोई नया काम करना है, तो उसके लिए उनके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। आज जो देखिए जैम का जो सबसे बड़ा जो ट्रेंडी आई है, तो जनधन योजना में हर आदमी का अपना खाता हो गया है, लेकिन खाते में बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो प्रारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व की योजना, जिसको हम लोग घरौनी भी कहते हैं, खतौनी कहते हैं जो खाता से हो गया, घरौनी कहते हैं घर से हो गया, इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे करके पूरे गांव का सर्वे कर,
1: टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल,
2: बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन से सर्वे करते हैं, वहां पे नीचे हरे का जो लाइनिंग खींच देते हैं उसका सर्वे करते हैं, उसकी फिर ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद गांव सभा का मीटिंग बुला करके वहां पे सबको बुला करके दिखाते हैं, और दिखा कर जब सब सर्टिफाइड हो गए तो उसके बाद उनके जो है इसके जो स्वामित्व के जो डॉक्यूमेंट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं मुख्य सचिव था इसको मैंने बहुत टॉप प्रायोरिटी लिया। आज अगर देखें कि पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ के आसपास जो आज रिकॉर्ड लोगों को बढ़ चुके हैं, जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही केवल 1 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट मैं कह दूंगा 90% हमारे गांवों में इसका काम पूरा हो चुका है, इसके जो रिकॉर्ड लोगों को बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं। तो इसका जो लाभ आने वाले समय में, क्योंकि हमारे गांव की व्यवस्था जो आपने कहा कि शहरों से लोग जाकर के गांव में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी जलवायु है, शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है, और वहां रह करके आप अपनी जिंदगी का एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहां पे भोजन के लिए भी आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड आज आपको मिलेगा। आज जो गांव और शहर को जो जोड़ा जा रहा है, जो कि दो शहर हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरों की जरूरतें बहुत बढ़ रही हैं, तो वहां पे अब गांव में ऐसे प्रोडक्शन होने लगे जो कि शहरों की आवश्यकता है। अगर होटल में कोई या वहां पे रेस्टोरेंट में अगर कोई किसी प्रकार की सब्जी का एक्सोटिक उसका यूज होता है, अब वो गांव में उसका प्रोड्यूस होने लगा। गांव में जो आबादी कम हुई उनको शहर में जाकर उनको नौकरी मिल गई, लेकिन वो गांव से गांव में प्रोडक्शन करते हैं, उसको शहर में ले जाकर उसको बेच देते। तो ये इसमें जो स्वामित्व योजना जो है, जो घरौनी योजना, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण भाई बहनों को मिला है,
1: और खास करके महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें पहला नाम मैंने मकान की मलकिन तो महिला ही है, उसके बाद पुरुष का नाम है, तो महिला का नाम सबसे पहले रहता है।
1: सिंह साहब, हम पीएम जनमन की बात अब आपसे करेंगे। दरअसल भारत के कुछ सबसे वंचित समुदायों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाना अभी भी चुनौती रही है। पीएम जनमन ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG के विकास के लिए किस तरीके से नीतियां बनाई, किस तरीके का अप्रोच किया?
0: प्रधानमंत्री ने देखा कि वो वंचित क्षेत्र, वो क्षेत्र जो दूर दराज में बसे हुए हैं, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला था, सरकार तो बहुत दूर की बात, सरकारी अफसर वहां जाने को राजी नहीं, कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं। अब ये दिल्ली के नजदीक आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा में कोई वहां टीचर जाने को तैयार नहीं होता, कोई मतलब ऐसे क्षेत्रों में जिनका खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे जिलों को, ऐसे ब्लॉकों को, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ने

0: तक चिन्हित कराया हर कलेक्टर से, हर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा कि ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव और ऐसे ब्लॉक कहां कहां हैं जहां पे सुविधाओं का, खासतौर से बुनियादी सुविधाओं का जहां अभाव हो, ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद वहां पर स्पेशल मुहिम के तौर पर स्पेशल अभियान चला के उन सुविधाओं को बहाल कराने का काम कराया है प्रधानमंत्री ने। जितनी योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की है, चाहे वो नल से जल हो, बिजली की सप्लाई हो, ये सारी चीजों की उपलब्धता कैसे वहां तक पहुंचाई जाए, ये सुविधा उनको विशेष अनुदान के तौर पर, किसी की कटौती नहीं की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल तौर पर दिया और वहां पर ऐसे कलेक्टर्स और ऐसे अधिकारी लगाए गए जिनको बाकायदा दिया गया टारगेट कि इन एरिया का हमको हर हाल में बेहतर स्थिति चाहिए, ये कम से कम देश के बाकी हिस्से के बराबर के लोगों तक पहुंचे। और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है कि इससे एजेंसी आएगी, यहां पर कभी रिसर्च होगा तो लोग सोचेंगे भला बताइए पहले सुदूर गांव तक ये सुविधा पहुंच गई, ये इस देश में भी संभव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होगा नेता होगा वही पहुंचा सकता, उसकी सोच पहुंचा सकती है।
1: मिश्रा जी से मैं यही सवाल पूछता हूं कि आप अपनी जमीनी अनुभव को बताएं।
0: बिल्कुल,
1: पीवीटीजीज के लिए
2: नहीं, पीवीटीजी देखिए इट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगर हम ट्राइबल्स की देखें तो हमारी अनुसूची जो है उसके मुताबिक 705 ट्राइबल ग्रुप्स है, इनमें से 75 ऐसे पीवीटीजी जो कि हमेशा हर चीज से वंचित रहे, चाहे उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, किस्म किस्म की बीमारियों से जूझते रहे, स्वास्थ्य हो, उनके लिए आवास हो, उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो। उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत कम ट्राइबल्स है, ज्यादा ट्राइबल तो हमारे उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां पे ज्यादा ट्राइबल्स है, राजस्थान में ट्राइबल्स है। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में भी ऐसे तमाम किस्म के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ये जो 75 ग्रुप सेलेक्ट किए गए इनके बारे में इनके एक फोकस अटेंशन सरकार का, ताकि इनको 100% सेचुरेट कर दे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ा लिखे ना हो, किसी को जो है स्कूल न जाता, कोई ऐसा ना हो जिसको स्वास्थ्य की वजह से समस्या हो, उनकी जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, तो हर चीज को पूरा तरह से एड्रेस किया गया। इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, मैंने एक तरफ पीएम ग्राम सड़क योजना हो रही थी तो ये तो इतने दूर थे कि इसको उनका सोचता भी कोई नहीं था। अब इन गांवों को 100% के हर टोले को कनेक्टिविटी भी दी गई, इनके हर घर में बिजली पहुंचाई गई, तो जो सरकार के हर घर में जल पहुंचाया गया, ये एक स्पेशल फोकस अटेंशन है हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से। पीएम जनमन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज उसका लाभ इस स्पेशल ग्रुप को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक तरीके से आप दोनों से बातचीत करके ये एक तस्वीर उभरी है कि भारत के गांव में बिजली से, पानी से, स्वामित्व योजना से, उनकी कनेक्टिविटी से पूरी की पूरी सोच जो है उसमें समग्रता में एक परिवर्तन आया है।
2: इसमें जोड़ूंगा जी, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है
1: जी, वाइब्रेंट विलेज,
2: पहले बॉर्डर डेवलपमेंट का उसको करते थे, जो हमारे देश के सबसे अंतिम गांव होते थे, हम उसको कहते देश के अंतिम गांव,
1: वो पहला गांव क्यों नहीं है,
2: मैंने वहां पे जो सोच में परिवर्तन है कि पहले गांव में लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी हो, वहां टूरिज्म की फैसिलिटी हो, वहां पीने का पानी हो, वहां स्वास्थ्य का हर एक सारी सुविधा हो, ये कंप्लीट सोच में परिवर्तन लाना, कि गृह मंत्रालय भी इस प्रकार का काम 662 गांव में कर रहा है, जो कि चाहे वो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड लद्दाख का हो या उधर हिमाचल प्रदेश का हो, अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरे बॉर्डर के जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है उन सारे गांवों के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है।
0: ये सारे गांव की सोच का, गांव की और बात बताऊं, ये गांव टूरिज्म के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, अब उनकी रोजी रोटी का भी एक अच्छा साधन हो गया क्योंकि वहां कनेक्टिविटी हो गई, सारी सुविधाएं हो गई, तो गृह मंत्रालय ने जो इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री के निर्देश पर वो बहुत ही आगे बढ़ रही है और इसका बहुत फायदा मिल रहा है, वहां के लोगों का जीवन स्तर तो सुधरा। कुछ तो गांव ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल गांव है, उसके लिए कोई कनेक्टिविटी का वो नहीं था, वहाँ नाव से जाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के एरिया में कोई गांव है जिसके लिए इतना खर्च किया गया कि एक गांव के लिए इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया कि इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए और सारी सुविधाओं से किया जाए ताकि इन गांवों को ये न लगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार की सोच देखिए कि आखिरी छोर पर बसा व्यक्ति भी भारत का अपने को मजबूती के साथ जोड़ सके और यह देश अगर बधा रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री है, हमारी अच्छी सरकार है, हमें लगता है योजनाओं को जिस तरह लोगों तक पहुंचाने की योजना थी और पहुंच रही है, इसका लाभ आने वाले दिनों में और अच्छा से दिखेगा।
1: पिछले 10-12 वर्षों में भारत के गांव में जिस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है और विकसित भारत 2047 की दिशा में अब जिस तरीके से भारत के गांव भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें गवर्नेंस मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है वो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डीएस मिश्रा साहब और एसपी सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा गांव की।

बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार एवं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: अभी आप सुन रहे थे जनसेवा से देश सेवा का 8वां संस्करण। 8 बजे होंगे हिंदी।
1: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रम। श्रोता मित्र, आप सभी का पुनः स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता मित्र, आइए अब आनंद लेते हैं चंद हिंदी फिल्मी गीतों का। लीजिए प्रस्तुत है पहला गीत स्त्री 2 फिल्म से विशाल मिश्रा की आवाज में।

0: श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का ये गीत मित्रास की आवाज में। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक अंतराल।
1: डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक बहुत ही जरूरी सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश भूकंप या अर्थक्वेक और मल्टी हैजर्ड इमरजेंसी सिनेरियो पर आधारित एक हॉस्पिटल मॉक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगन के कुछ अस्पतालों में। इस मॉक एक्सरसाइज में आपदा की तैयारी, इमरजेंसी रेस्पॉन्स और डिजास्टर के दौरान हॉस्पिटल्स और अन्य इमरजेंसी एजेंसियों से कैसे संपर्क करना है या कैसे तालमेल रखना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ये मॉक एक्सरसाइज कब और कहाँ होंगे? ये होंगे 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे आरके मिशन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे हीमा हॉस्पिटल में, 25 सितंबर 2026 को यानी 25 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे हॉर्मिन हॉस्पिटल में, दोपहर करीब 2 बजे नीबा हॉस्पिटल में, और 26 सितंबर 2026 यानी 26 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ट्रीम्स नाहरलगन में। इस मॉक एक्सरसाइज में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश की देखरेख में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और हेल्थ डिपार्टमेंट भाग लेंगे, क्योंकि इस दौरान भूकंप आने से, आग लगने से या अन्य आपदा में जिस प्रकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसी प्रकार से ही की जाएगी। इसीलिए सभी जनरल पब्लिक से ये अनुरोध करते हैं कि वे इस मॉक एक्सरसाइज को असली समझकर घबराए नहीं, और हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स और अटेंडेंट से भी निवेदन करते हैं कि वे हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: श्रोता मित्र, आप सभी का अंतराल के बाद कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। तो अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं दो पत्ती फिल्म से शिल्पा राव और अन्य साथियों की आवाजों में।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में दंग की फिल्म का ये खूबसूरत गीत। इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 8 बज रहे हैं और इसी के साथ ही आगे आप सुन पाएंगे अरुणाचल प्रदेश के संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत।
1: नमस्कार, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज सुनने वाले सभी श्रोताओं को गैर अतः का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आपके लिए आज फिर मैं लेकर आई हूँ अपनी मिट्टी की खुशबू यानी कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम सुनाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग समुदायों के गीत। तो चलिए एक पल भी देर किए बिना शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना गीत और सुनते हैं ये आदि गीत जिसे गाया है हम सबके फेवरेट तालुत मिजे ने।

तलुत मिजे सर, आपकी आवाज और गीत हमेशा यही फील कराते हैं कि आप हमारे सामने खड़े हैं और हम गाना के जरिए आपसे बात कर रहे हो। तो दोस्तों, अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आप पता नहीं की। ये गीत है भाई बहन के रिश्ते का, भाई बहन के प्यार का। भाई अपनी बहन से दूसरों की चीजें न ललचाने की बात करते हुए उन्हें वो सब देना चाहते हैं जो उनके पास में है। इस गीत को गाया है अपातानी के मशहूर गायक हागे तादा ने।

श्रोता, इस गीत से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जब हम अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ने लगता है, खासकर रुपए पैसे के मामलों में, तो कई बार हमारी जरूरत को फुलफिल करने के चक्कर में हम गलत कदम उठा लेते हैं और जब समझ आती है तब बहुत देर हो जाती है। इसलिए मेहनत से हम जितना भी कमाते हैं, जितना भी पाते हैं, उतने में खुश रहने में ही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत अरुण FM 103.1 MHz पर अपने रेडियो साथी गैर के साथ।

दोस्तों, माता पिता हमारा पहला गुरु और हमारा वजूद होता है। चाहे हम कहीं भी रहे, अपने दिल से अपने माता पिता का प्यार और ख्याल कभी नहीं खोना चाहिए। इसी तरह अपने माता पिता के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते ये वांचो गीत आप सुन रहे थे बोतिक लुकम की आवाज में। तो आइए अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं नोकपन हांगसिक की आवाज में, तुत्सा गीत।

103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें आप आनंद लेते हैं आपका अपना राज्य अरुणाचल प्रदेश के गीतों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जहां एक खूबसूरत लड़की को मर्द अपने बहकने की वजह मानते हैं, वजह बताते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है गालो गीत हम सब के चहेते, जेलिकाई की आवाज में।

0: श्रोताओं, जेली का ये द्वारा गाए इसी गालो गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे सप्ताह में 3 बार यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। तो मिलते हैं अगले अंक के साथ, तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
1: श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम। फिलहाल हम ले रहे हैं एक अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। <So easy. laughs>

0: चांद लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये कहा
2: दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
2: तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना।
5: Hello everyone, this is Gamsin, your host for today, and welcome back to Western Music Program only on Akashwani Itanagar. In this session, we slow things down and turn inward. These are the songs that don't need to be loud to be powerful. They speak softly yet leave a lasting impact. So we begin with a song that feels like home in itself. It's familiar, comforting, and filled with a sense of belonging. Here's Take Me Home, Country Road by John Deaver. Please enjoy.

0: And that was the final track for today. I hope these songs kept you company and made your day just a little brighter. This was Western Music Program, only on Akashwani Itanagar. Take care and have a great day.
1: श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। जी हाँ, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, इस वक्त हमारे स्टोरी की घड़ी में रात के ठीक 9 बज रहे हैं और इसी के साथ ही अब समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बीते जमाने के अनमोल गीतों का खजाना, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं गुजरे दौर के कुछ चुनिंदे नगमे। श्रोता मित्र, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अमर फिल्म से। संगीतकार हैं नौशाद अली और गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूं ने और गीत के बोल हैं मोहे दुनिया से डर लागे, यहाँ लाखों है मतवाले, यहाँ लाखों है मतवाले, न जाने कोई अलबेला मोहे किस राग में राग डाले। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। जी हाँ, आप सुन रहे थे अमर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। तो चलिए, इसी के साथ ही एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ही, बादल फिल्म से।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दिल से दिल तक बात पहुंचे मिलते मिलते सनम ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात
3: बस आपके नाम
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। जी हाँ, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। श्रोता मित्रों, लीजिए प्रस्तुत है अगला गीत अपना घर फिल्म से, जिसे आवाज दी है गीता दत्त और मुकेश ने और संगीत से सजाया है रवि शंकर शर्मा ने और इसके बोल लिखे हैं प्रेम धवन ने। बोल कुछ इस तरह से है, आती है ऐसी प्यार की घड़ियां नसीब से, घड़ियां नसीब से, ये दिल की धड़कनें जरा सुन लो करीब से, सुन लो करीब से।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में चौधरी का चांद फिल्म का ये प्यारा नगमा। इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये आखिरी गीत लता मंगेशकर की आवाज में, पत्थर के

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे पत्थर के सनम फिल्म का ये बेहद ही प्यारा नगमा। श्रोता मित्रों, इस आखिरी नगमे के साथ अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के समापन पर पहुंच चुके हैं और साथ ही आप सभी से विदा लेने का वक्त भी हो चला है। इस तीसरे प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। जाने से पहले बताना चाहेंगे कि हमेशा की तरह आगे कुछ ही पलों में आप जुड़ पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड के साथ, तो आप बने रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपसे होगी फिर मुलाकात कल प्रातः 5:48 पर यानी हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। तो अब अपनी रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति, आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: 4.0 के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया।
1: नमस्कार, आभार, अभिनंदन। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: महोदय, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कवच प्रणाली क्या है और ये कैसे काम करता है।
2: साधारण तरीके से ट्रेनें चलती हैं
1: जी
2: तो उसमें ड्राइवर को सिग्नल देखना पड़ता है, और सिग्नल अगर हरा है तो वो चलता रहता है, अगर लाल है तो उसको ट्रेन रोकनी पड़ती है। लेकिन कई बार बारिश में, अंधड़ तूफान या कुछ घुमाई पर सिग्नल होते हैं या अन्य कई कारण होते हैं जिसमें कि, या कभी ड्राइवर भी ऐसी स्थिति में होता है कि मान लो उसको नींद लग गई तो वो सिग्नल को फॉलो नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में दो ट्रेनों के टकराव की संभावना बनी रहती है।
1: जी
2: ये एक हम बोलते हैं कैप बेस्ड सिग्नलिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहली बात तो ये कि जो भी सिग्नल का वो है, वो ग्रीन है कि लाल है कि, उसके लिए ड्राइवर को बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस इंजन से वो चला रहा है उसके सामने जो डिस्प्ले रहता है उसमें उसको पता लग जाता है ये हरा है कि लाल है, कि उसके सिग्नल की एस्पेक्ट बोलते हैं क्या है, एस्पेक्ट है, तो उसके हिसाब से उस ट्रेन की स्पीड निर्धारित करनी पड़ती है। और दूसरा स्टेप आता है कि उसने देख लिया कि मेरा लाल है, लेकिन उसके बाद उसको ब्रेक लगाना है, उसने ब्रेक नहीं लगाया या उसने ब्रेक लगाने की कुछ की को फेल हो गया ब्रेक, तो उस कंडीशन में जब दो गाड़ियां काफी नजदीक आ जाती हैं तो उनका ये स्वचालित प्रणाली से ये दोनों ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और वो एक दूरी पर आकर रुक जाएंगी और एक जो दुर्घटना होती है उससे वो बच जाएंगी। और इसका जो उपकरण होता है वो हर इंजन में, हर लेवल क्रॉसिंग में, हर रेलवे स्टेशन में रखा रहता है, और एक ऑप्टिक फाइबर एक होता है जिससे कि डाटा ट्रांसफर होता है, वो पूरे उस जिस क्षेत्र में इसका कवरेज होता है उसमें इसको लगा दिया जाता है, और उसके बाद वो उसको पूरा सुरक्षित रूप से डाटा को भेजता है और संचालित करता है, और उसकी वजह से जो ट्रेनों की घटनाएं होती थी पहले, अब एक बार ये पूरा कवरेज हो जाएगा तो वो पुरानी बात हो जाएगी, फिर ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी।
1: कवच 4.0 में नया क्या जोड़ा गया है जिससे सुरक्षा जाल को और मजबूती मिल सके?
2: इसमें कवच जो 4.0 है ये पुराने कवच के ऊपर एक स्टेप और आगे है। एक तो देखिए, ये आपको बताएं ये बहुत ही सुरक्षा वाला वो है, उपकरण है, और इसमें एक SIL 4 बोलते हैं, एक जो सेफ्टी के कई मापदंड होते हैं, इसमें SIL 4.0 का जो मापदंड है वो सुनिश्चित किया गया है। और इसकी जो कम्युनिकेशन प्रणाली है, जो एक से दूसरे इंजन को और एक स्टेशन से किसी आने वाली ट्रेन के इंजन को के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें एक सेफ्टी का एक हायर लेवल पे इसको ले जाता है, और जो डाटा ट्रांसफर होता है उसकी जो गति होती है, जो चाहे वो डाटा आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा हो, चाहे एक स्टेशन से दूसरी ट्रेन के ऊपर जा रहा हो या एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन की तरफ जा रहा हो, डाटा का जो एक संचालन होता है उसका एक जो सुरक्षा का लेवल है वो एक स्तर और आगे बढ़ जाता है। और जो कुछ गैप्स रह जाते हैं थे पुराने जो कवच 3.0 के पहले वाले वर्जन में, वो कवच 4.0 में उन सभी को एलिमिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, अब ये पूर्णतः सुरक्षित प्रणाली बन गई है।
1: दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसे व्यस्त रेल मार्गों पर जो कवच 4.0 को 2633 किलोमीटर में चालू किया जा चुका है, तो इन मार्गों पर इसके संचालन से रेल यात्रियों को सुरक्षा और परिचालन के स्तर पर किस प्रकार का लाभ मिलने की उम्मीद है?
2: आपसे मैंने बताया कि वो सुरक्षा तो बढ़ती ही है, इसके साथ इसमें एक डाटा भी एक हमको मिलता है ट्रेनों का। देखिए, अभी जैसे एक हमारा डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिजिटल हो गया है और हर जगह हम डिजिटल दुनिया का प्रयोग करते हैं, तो आप कवच को जो कवर्ड एरिया है उसमें आप ये समझिए कि रेलवे भी डिजिटली कंट्रोल हो गई उस एरिया में। तो ये 2660 किलोमीटर का जो एरिया है ये अब डिजिटली कंट्रोल्ड है, आप किसी मनुष्य के एक्शन पे उसके ऊपर निर्भर नहीं है, आप उस पूरे सेक्शन में एक स्वचालित प्रणाली जो कि मनुष्य की जो मानवीय गलती होती है उसके होने के पश्चात भी आपको दुर्घटना नहीं होने देगी, ये इसका एक उदाहरण है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रणाली है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कोई भी नई आजकल जो तकनीक होती है उसका एक IP होता है, जो उसके मौलिक अधिकार किसके पास है। तो नॉर्मली जो ET जो एक यूरोपियन प्रणाली थी उसके मौलिक अधिकार उनके पास रहते हैं, वो लोग अपना डिजाइन नहीं देते, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो भारत जैसे देश है उनको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उस प्रणाली को खरीदने के लिए। तो ये जो हमने स्वचालित प्रणाली स्वदेशी बनाई है उससे एक तो पैसा भी हमारा कम लगा है, कल हम इसको अपनी खुद की प्रणाली को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और आगे चल के जो इसका अगला वर्जन आएगा उसमें AI से भी लिंक हो जाएगा ये, क्योंकि ये इतना ह्यूज डाटा जनरेट करेगा ये सिस्टम कि एक मनुष्य के लिए उसका एनालिसिस करना असंभव होगा, तो उसको एनालिसिस के लिए भी एक AI एजेंट लगेगा, उससे जो हमारे सेफ्टी के अलावा जो हमारे

0: है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, और हमको ऐसी उम्मीद है कि हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हर 2 मिनट में या 2.5 मिनट में एक के बाद एक ट्रेन चला सकें। इससे हमारी जितनी ट्रेनें चलाने की क्षमता है किसी एक पर्टिकुलर रेल खंड की, उसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी। अब आपको एक बता दूं कि 95% कोयला जो भी पावर हाउस से जाता है वो भारतीय रेल उसका वहन करती है, और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ये कवच सिस्टम है,
1: जी
0: इसकी वजह से जो हमारी ट्रेनों की संख्या है उसमें काफी वृद्धि हुई है, और हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा संबल मिला है।
1: आम जनता के आवाजाही और आवागमन मैं कहूं तो उस पर कितना ये सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएगा?
0: आपने देखा होगा कि एक आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके पास कई ऑप्शन रहते हैं। वो रोड से भी जा सकता है, अपना हवाई जहाज से भी जा सकता है, शिपिंग से भी जा सकता है, कई तरह के उसको है। लेकिन ये माना गया है कि जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये अपने आप में एक बहुत सुरक्षित तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, आवागमन का। उसमें ये कवच भी आपने लगा दिया तो कवच से उसको ऐसी एक सुरक्षा की एक शील्ड मिल गई है, जिससे कि यात्री जब ट्रेन के अंदर रहता है तो उसको, जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं कि ट्रेन का सफर बस के सफर के कंपेरिजन में ज्यादा आनंददायक होता है और आरामदायक होता है, और हवाई जहाज के कंपैरिजन में, एयरलाइंस के कंपैरिजन में हमारे जो रेट्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो रेलवे में हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, रेलवे में कोई भी एक, जिससे कि नई ट्रेनें चला पाए, आज ज्यादा ट्रेनें चला पाए,
1: जी
0: उसका फायदा आम जनता को मिलता है, क्योंकि वही इस प्रणाली को सबसे ज्यादा यूज करती है और उसमें आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कवच से, कवच लगाने के बाद नॉर्मल हमारी ट्रेनें चलती है 110 किलोमीटर पे, 110 या 130 पे, कहीं कहीं पर अधिकतर जगह 110 है, कहीं कुछ कुछ जगह 130 है। लेकिन एक बार कवच प्रणाली लगा देते हैं तो ये आपके लिए संभव हो तो हो पाता है कि आप अपनी ट्रेनों को 160 की गति पे चला सकें, 160 और उसके ऊपर भी चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, जो ट्रेनों की गति बढ़ जाती है कवच लगाने के बाद,
1: जी
0: उससे कितनी ट्रेनें आप निकाल सकते हैं एक समय में उसकी संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है, और वो भी एक सुरक्षा के साथ। ये नहीं कि आपने ट्रेनें बढ़ाई और सुरक्षा को एक तरफ दरकिनार कर दिया, आप इसमें ट्रेनों की गति बढ़ती है, आम आदमी गंतव्य स्थान पे जल्दी पहुंचेगा,
1: जी
0: सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा और आरामदायक तरीके से पहुंचेगा।
1: यानी समय की भी बचत है, सुरक्षा भी है, और एक तरीके से कहें तो टेक्नोलॉजी में भी विस्तार है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि दूर दराज के क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है, माल ढुलाई और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को अगर हम देखें, उसे किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा कवच से?
0: भारतीय रेल एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि एक, हम जिसे आम भाषा में बोलते हैं, मिक्स ट्रैफिक चलता है। जिस लाइन से कोयले की ट्रेन गुजरती है उसी लाइन से मेल एक्सप्रेस की ट्रेन भी गुजरती है, उसी यात्री से यात्री इस गाड़ियां में जाती हैं। हालांकि हमने एक पहल की है कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है बिहार में सोनपुर तक और नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, जिसका भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था, तो उससे काफी फ्रेट जो हमारी मालगाड़ियां उनका उसमें चलाने लग गए हैं। लेकिन अभी भी जो हमारी जो नेटवर्क है उसमें मिक्स ट्रेन चलती है, उसमें मेल एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर ट्रेन भी चलती है।
1: जी
0: और जैसे मैंने बताया कि जो मालगाड़ियां हैं उस पे हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो निर्भर करती है। अगर ज्यादा ट्रेनें चलेंगी, ज्यादा माल ढुलाई होगी तो कारखानों तक रॉ मटेरियल पहुंचेगा, पावर हाउसेस में कोयला पहुंचेगा, और
1: जी
0: हमारे जो एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो उसमें हमको ज्यादा, हम देश से निर्यात कर पाएंगे, जो आयातित चीजें उनको जल्दी तक खपा पाएंगे, तो उससे पूरी एक बहुत बड़ा पुश मिलता है पूरी इकोनॉमी को, जो कि कवच से संभव होगा। और एक, जैसे मैंने बताई थी कि ये प्रणाली, सबसे बड़ा खूबी ये है कि हमारी स्वदेशी है,
1: जी
0: इसकी वजह से हमारा खर्चा भी नहीं है, और जैसे आजकल के युग में देखा कि जब इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में तो कोई भी किसी का टेक्नोलॉजी बंद कर सकता है, इसको कोई ब्लॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमारा खुद का है और इसको हम दूसरे को बेच के पैसा भी कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं और सुर्खियों में देखते हैं कि रेल के जो एक्सीडेंट्स होते हैं कहीं पर धुंध लग जाने से, कोहरे की वजह से हो जाते हैं, जो कि कवच जैसी जो प्रणाली है वो बचाती है इस तरह के एक्सीडेंट होने से, और खास करके एक्यूरेसी, जैसा आपने मुझे बताया अभी कि एक्यूरेसी बढ़ाती है और स्पीडिंग जिससे बढ़ती है। तो ऐसे में अगर हम देखें किस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट के जो केसेस हैं उसमें भी थोड़े से जो रेट्स हैं वो कम होंगे।
0: अगर आप हमारा इतिहास निकालेंगी रेलवे का तो उसकी संख्या बहुत ही मेजर गिरावट आई है, उसमें उसके कई आधारभूत कारण हैं। हमने ट्रैक की क्वालिटी, अपने जो रोलिंग स्टॉक बोलते हैं, जो डब्बे कोचेज, उसकी क्वालिटी, और हमारी सिग्नलिंग प्रणाली, हमारी सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, हमारे जो चालक गण हैं उनके ऊपर एक निगरानी, उनकी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग और सुरक्षा संबंधित जो उपकरण हमने लगाए हैं, उससे एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जो आज की तारीख में जो एक्सीडेंट्स हैं वो बिल्कुल नगण्य हो गए हैं अगर हम उसको पिछले कुछ पुराने वर्षों से उसकी तुलना करें तो।
1: लेकिन ये किस तरीके से रेलवे सुनिश्चित करेगा या सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये छोटे छोटे जो शहर हैं उस तक भी ये सिस्टम उसी तरीके से पहुंच पाए, कनेक्टिविटी वैसी ही रहे?
0: देखिए, मैंने आपको शुरू में सबसे पहले बोला था कि ये जो कवच प्रणाली है
1: जी
0: ये अपना जहां भी कवच जाता है ये अपना खुद का ऑप्टिक फाइबर केबल लेके जाता है, और एक नहीं दो, तो एक पेयर जाता है, दो ऑप्टिक फाइबर केबल, उस चाहे वो कितना भी अंदरूनी गांव हो, कितना दूर दराज का इलाका हो, उस तक ही हमारे ऑप्टिक फाइबर केबल चलाए जाते हैं, और इसका हमारी जो आम जो नेटवर्क इशू है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, और ये हमारा कवच के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं ये दो ऑप्टिक फाइबर केबल। उसके अलावा हर कुछ दूरी पे रेडियो टावर बनाए जाते हैं, हर स्टेशन के ऊपर एक रेडियो एंटेना रहता है, और हम अब इसको कोशिश कर रहे हैं कि LTE और 5G में भी इसको ले जाएं, तो इसके लेकिन इसका जो भी नेटवर्क होगा वो हमारे बाकी जो हम आप और हम जिस मोबाइल फोन से बात करते हैं
1: जी
0: उसके ऊपर निर्भर नहीं है, ये इसका जो संचालन प्रणाली है वो अपने आप में एकदम अलग है, और वो जहां जाएगा वो अपना खुद का केबल लेके जाएगा, अपने खुद के रेडियो टावर्स लेके जाएंगे, अपने खुद के दूसरे उपकरण लेके जाएंगे, जिससे कि चाहे इलाका महानगर का हो चाहे दूर दराज का हो सुरक्षा का लेवल दोनों जगह बराबर हुआ।
1: जी महोदय, देश भर में इस तकनीक को लागू करने में क्या आपकी नजर में कोई चुनौतियां भी हैं कि ये चुनौती आ सकती है?
0: चुनौतियां भी हैं क्योंकि इसमें दो चार चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो ये है कि इसमें बजट का काफी खर्चा आता है, 1 किलोमीटर करने में करीब करीब 50 लाख रुपए खर्चा आता है, एक जो हमारे इंजन में उपकरण में लगाया जाता है उसमें भी 50 लाख रुपए का उपकरण आता है। उसके अलावा जो कंपनियां ये क्योंकि SIL 4 जो होता है सुरक्षा का जो लेवल है 4 का, SIL 4 बोलते हैं उसको हमारी रेलवे की भाषा में, तो जिन कंपनीज के पास उसका उस लेवल की टेक्नोलॉजी है वही इसको लगा सकती है, और ऐसी कंपनी जो कि इसको लगा सकती हैं वो आज की तारीख दिन में सिर्फ 4 या 5 ही हैं। तो जैसे जैसे वो कंपनी जो जिनके पास ये तकनीकी है वो बढ़ेगी, उस दिशा में हमारा जो RDSO है, हमारी रेलवे बोर्ड है, हमारी मिनिस्ट्री है, ये काफी प्रयास कर रही हैं कि
1: जी
0: ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस काम के लिए सक्षम हो सकें, और एक बार उनका सक्षम जो सक्षमता का जो सर्टिफिकेट है वो हमारे RDSO द्वारा दिया जाता है, और जैसे जैसे उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा कि वो भी इस काम को कर सकती है और ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगी।
1: महोदय, रेलवे में जो रिफॉर्म्स चल रही हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कवच 4.0 किस तरीके से उसमें अपनी भागीदारी देता हुआ नजर आ रहा है?
0: कवच जो 4.0 है ये एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है, और इसके साथ जो एक इकोसिस्टम बनेगा टेक्नोलॉजी का, जो कंपनियां इसको डेवलप कर पाएंगी वो न सिर्फ कवच में अन्य जुड़े, जैसे हमारी आगे चल के प्लानिंग है कि हमारा फ्रेट का सिस्टम है फ्वाइस बोलते हैं उसको, FOIS, ऐसी कोचिंग ट्रेन का COIS क्वाइस है, तो ऐसे हमारे कई इसके अलावा पैरेलल में नेटवर्किंग चल रही है, तो हमारी ये 4.0 और उसके आगे के जो लेवल्स आएंगे तो उसमें एक तो सुरक्षा तो मिलेगी मिलेगी, और उससे जो डाटा जनरेट होगा अगर हम कोशिश रहेगी कि उसको हम अपने वॉइस प्रणाली और क्वाइस प्रणाली से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी जो यात्री ट्रेनें हैं जो हमारी मालगाड़ियां हैं उनके प्रचालन में भी एक अद्भुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और एक ओवरऑल रेलवे को एक मेजर पुश मिलेगा डिजिटलाइजेशन की डायरेक्शन में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कवच 4.0 के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Country wide.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
2: ए गुड बुक ओपन्स ए विंडो ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस। इट इनवाइट्स अस टू थिंक, नॉट ओनली टू थिंक, टू क्वेश्चन, नॉट ओनली टू क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड एंड समटाइम्स टू लुक एट फेमिलियर सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव।
0: सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वह उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। जापान एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशेबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that

0: रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने G7 के वर्तमान अध्यक्ष फ्रांस द्वारा आयोजित दूसरी G7 विकास मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस दौरान श्री जॉर्ज ने सर्वोदय के सिद्धांतों पर आधारित भारत के मानव केंद्रित और समावेशी विकास पथ पर बल दिया। भारत की विकास साझेदारी पहलों का उल्लेख करते हुए श्री जॉर्ज ने कहा कि विकास का अर्थ केवल वित्त पोषण प्रदान करना नहीं है, बल्कि घरेलू क्षमताओं का निर्माण और लचीलेपन को मजबूत करना है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यावहारिक सहयोग पर भी जोर देता है। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 63वें सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता हरलीन कौर ने कहा कि POJK के लोग महीनों से भोजन, बिजली, रोजगार, बेहतर बुनियादी ढांचे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। उन्होंने राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक CHOGM की सफलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका और चीन ने अपने व्यापार युद्ध विराम को 2 महीने बढ़ाने पर सहमति जताई है। इससे दोनों देशों को व्यापक आर्थिक समझौते पर बातचीत के लिए और समय मिलेगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि बुसान समझौते के अंतर्गत हुआ यह युद्ध विराम अब 10 जनवरी तक जारी रहेगा। चीन ने अभी इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ये घोषणा ऐसे समय हुई है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, शुल्क, तकनीक, AI, सैन्य संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस परिसर में 3 समाचार चैनलों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को अस्थायी रूप से रोक दिया है। न्यायाधीश ने आज आदेश दिया कि CNN, MS Now और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश की अनुमति बहाल की जाए।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे उन चैनलों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं जो उनके अनुसार फर्जी खबरें फैला रहे थे। बाद में उन्होंने तर्क दिया कि उनकी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। इन चैनलों ने संयुक्त रूप से दायर मुकदमे में तर्क दिया है कि ये प्रतिबंध प्रथम संशोधन का घोर उल्लंघन है क्योंकि ये उनकी कवरेज की सामग्री के आधार पर उन्हें निशाना बनाता है। अपने फैसले में अमेरिका के जिला न्यायाधीश टिमोथी केली ने व्हाइट हाउस को 3 चैनलों को प्रवेश की अनुमति तुरंत बहाल करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसे आचरण के लिए स्पष्ट मानक होने चाहिए जिनके आधार पर प्रेस पास रद्द किया जा सके। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका ने कहा है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा तथा खाद्यान्न से जुड़े मामलों में युद्ध विराम पर विचार करने को तैयार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी प्रकार के व्यापार समझौते या औपचारिक प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई समझौता या बातचीत तय नहीं हुई है। श्री रूबियो ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि सीमित युद्ध विराम से युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे तनाव कम करने और आगे की शांति वार्ता का रास्ता तैयार करने में मदद मिल सकती है। यमन के हूती विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि उसकी सेनाओं ने हूती विद्रोहियों की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया है। गठबंधन ने कहा है कि ये मिसाइलें सऊदी अरब के तैफ और यानबू शहरों को निशाना बनाकर दागी गई थीं। गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने कहा कि हूतियों की किसी भी प्रकार की हिंसा से सख्ती से निपटा जाएगा। बांग्लादेश की राष्ट्रीय विमानन कंपनी विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ने बोइंग के साथ 11 नए विमानों की खरीद के लिए समझौता किया है। इससे बांग्लादेश विमानन क्षेत्र का विस्तार करने और नए अंतर्राष्ट्रीय मार्ग शुरू करने की योजना बना रहा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 2026 को देखने के लिए आज राजस्थान पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने कहा कि वे दोनों देशों की सेनाओं को एक साथ प्रशिक्षण करते देखने के लिए उत्सुक हैं। और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
4: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग यही था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
3: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई की स्वतंत्र जांच का आग्रह किया। अमेरिका और चीन ने अगले वर्ष 10 जनवरी तक अपने व्यापारिक युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द किया। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में रोशबीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम हरप्रीत कौर विद वर्ल्ड न्यूज। India firm's commitment to inclusive development, international cooperation and multilateral reforms. Human rights activists urge UN Human Rights Council to set up independent probe and crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. United States and China agree to extend their trade truce until January 10 next year. Federal judge blocks US President Trump's White House media ban, orders access to be restored. Asian Games in Japan, India wins silver medals in mixed relay race in Wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also get bronze. India has a firm commitment to inclusive development, international cooperation, multilateral reforms. Ministry of External Affairs, MEA Secretary West C.B. George, championed India's pledge towards inclusive growth, global collaboration and reform of multilateral bodies, while advocating for the prompt adoption of the Covenant on the Right to Development. He conveyed these positions while presenting India's national statement during the high-level segment at the UN General Assembly dedicated to the 40th anniversary of the Declaration on the Rights to Development. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Mr. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the implementation of the two-state solution in New York on the margins of UNGA today. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Mr. George also participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 Chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. In his remarks, Mr. George emphasized India's human-centric and inclusive path of development anchored in the principles of Sarvodaya. Human rights violations and socio-economic deprivation in the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, were raised at the ongoing 63rd session of the UN Human Rights Council, UNHRC, in Geneva. A report.
6: Activists called for independent international probe into the crackdown on protesters in the region. Social activist Harleen Kaur said that the people in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir have been on the streets for months demanding food, electricity, employment, better infrastructure and political representation. She said these peaceful protests have been met with excessive force, arbitrary detentions, communication blackouts and the use of anti-terror laws against peaceful groups, raising cases of extrajudicial killings and mass detentions in Pakistan-occupied by Jammu and Kashmir. She said the UNHRC cannot remain silent while fundamental human rights are violently suppressed. Kaur urged the UNHRC to set up an independent fact-finding mission on civilian deaths, unlawful detentions and use of excessive force. She also called for an immediate end to security crackdowns, restoration of full communications and digital access and protection for political activists and local leaders facing harassment. The issue was also raised at a side event yesterday at the Geneva Press Club organized by the civil society. Several speakers highlighted growing atrocities on minorities in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. World Sindhi Congress leader Hidayat Bhutto held Pakistan responsible for promoting terrorism in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, Khyber Pakhtunkhwa and other regions. Swati Rakheja for World News.
5: U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said the United States and China have agreed to extend their trade truce until January 10 next year. Bessent announced the extension after meeting Chinese Vice Premier He Lifeng in Washington. The existing arrangement had been scheduled to expire on November 10. The two-month extension keeps the arrangement reached in Busan, South Korea, in place while the two governments explore whether they can negotiate a broad economic agreement. The announcement came as Chinese President Xi Jinping reached Washington for a state visit that includes talks with U.S. President Donald Trump. The Chinese president called for a more stable relationship in a statement issued after his arrival. He said the two countries should be partners, not adversaries. This is Akashwani. You're listening to the World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. In U.S., a federal judge temporarily blocked President Donald Trump's ban of three news outlets from the White House grounds, ordering this morning that CNN, MS Now and Politico must have their access restored. Mr. Trump first announced on Friday that he was banning the outlets assailing what he called fake news. He later argued that their reporting was a risk to national security. The outlets argued in a joint lawsuit that the ban was a blatant violation of the First Amendment because it singled them out for the content of their coverage. In his ruling, U.S. District Judge Timothy Kelly ordered the White House to immediately reinstate and restore the three outlets' access. He said the government must have clear standards for conduct that would lead to revoking a press pass. The United States has said it is willing to explore a limited ceasefire between Russia and Ukraine covering energy and grain. U.S. Secretary of State Marco Rubio said both sides have expressed interest in such an arrangement while stressing that no formal proposal or agreement has been reached. Rubio said the issue has been discussed with both Moscow and Kyiv, including during recent U.S. contacts with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Russian officials. He said a limited ceasefire would not end the war but could ease some pressure caused by the conflict and potentially provide a starting point for broader talks.
7: I think both sides have expressed an interest in some limited ceasefire that involved grain and energy. Obviously, that won't be easy either, but it's something that both sides have expressed an interest in. So that's something we're always open to exploring. It's been a feature of every conversation that we've had with them. It was a feature of the Witkoff-Kushner meeting in Moscow and in Kyiv. It was a feature of our conversation with President Zelensky yesterday. And it's something that if we can play a constructive role in making happen, we'd be very open to. Again, recognizing it doesn't end the war, but it does deal with something, and maybe it can serve as the baseline or a platform for a broader agreement. Ultimately, we all want this war to end. That war is not going to end on the battlefield. That war is going to end, I think everyone acknowledges, with a negotiated agreement.
5: The Saudi-led coalition fighting Yemen's Houthis said that its forces had intercepted 6 ballistic missiles fired by the Houthis. The coalition said the missiles were aimed at the Saudi cities of Taif and Yanbu. In social media posts, coalition spokesman Turki al-Maliki said that further escalations and violations by the Houthi militia would be dealt with firmly. In Yemen, the government forces reportedly repelled overnight Houthi attacks on the Hijr al-Ab mountain pass, a key supply route to Aden. India added 5 medals, including 2 silver and 3 bronze across athletics, wushu, shooting and rowing at Asian Games 2026 at Aichi Nagoya in Japan today. India's mixed 4 into 400 meter relay quartet of Manu T.S., Puvamma M.R., Vishal T.K. and Vidya Ramraj claimed silver in an exhilarating race. Seema Kumari won bronze in the women's 10,000 meter to win India's first Asian Games medal in the event in 16 years. There was further excitement on the track as Animesh Kujur and Gurinderveer Singh advanced to the men's 100-meter semi-finals, setting up another major athletics evening for India tomorrow. Earlier in the day, Roshi Beena Devi claimed silver in the Wushu women's 60kg Sanda event, becoming a 3-time Asian Games medalist. Rowing produced a historic result with Satnam Singh and Salman Khan winning bronze to give India its first ever Asian Games medal in the double sculls event. In shooting, Ananjit Singh Naruka and Parinaz Dhaliwal added another bronze in the mixed team skeet event. The pair became India's first ever Asian Games medalist in the mixed skeet team event. Meanwhile, the Kabaddi teams also continued their strong campaigns with both the Indian men's and women's teams topping their respective groups to reach the semi-finals. In hockey, India's men's team registered a commanding 8-2 win over South Korea in their third Pool A match. Defending champions India will take on host Japan in their next pool match on Saturday. And now before we close, here are the highlights of the bulletin. India affirms commitment to inclusive development, international cooperation and multilateral reforms. Human rights activists urge UN Human Rights Council to set up independent probe and crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. United States and China agree to extend their trade truce until January 10 next year. Federal judge blocks U.S. President Trump's White House media ban, orders access to be restored. And at Asian Games in Japan, India wins silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed ski shooting teams also get bronze. That concludes tonight's World News Bulletin. For more updates, stay tuned to Akashwani. Good night.